आकाशवाणी एफएम केंद्र शिमला का प्रसारण आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे हैं। प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन सम्पन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित

0: to pan out as expected. He said, hopefully this process will work out. If it doesn't, they have the ultimate alternative. The US president also contrasted the proposed agreement with a 2015 Joint Comprehensive Plan of Action. Meanwhile, Iran's foreign ministry spokesperson Ismail Baghaei has said the signing of any agreement is unlikely to take place immediately, stating that it will not happen today and may take place in the coming days. In men's cricket, India defeated Afghanistan by 7 wickets in a rain-affected first one-day international of the three-match series in Dharamshala, Himachal Pradesh last night. Chasing 195 runs, India overhauled the target in 22.5 overs. Indian skipper Shubman Gill scored unbeaten 84 off 66 balls. In the ICC Women's T20 World Cup, India will begin their campaign against arch-rivals Pakistan at Edgbaston in Birmingham today. The match will start at 7 p.m. Indian Standard Time. India holds a strong record against Pakistan in women's T20 internationals, winning 13 of their 16 encounters. In Group B action, Scotland defeated Ireland by 40 runs at Old Trafford in Manchester on Friday. And that is the end of this news bulletin.
1: एक सौ तीन दशमलव सात मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण. आइए अब पेश है भक्ति गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम हिमांजलि. श्रोता साथियों, आस्था, श्रद्धा और भक्ति के मधुर रंगों से सजे इस पावन भक्ति संगीत कार्यक्रम में आपका हम करते हैं स्वागत. जब मन संसार की भागदौड़ से थक जाता है, तब भक्ति के सुर से नई ऊर्जा, नई शांति और नई दिशा प्रदान करते हैं. भजन केवल संगीत नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच संवाद का एक सुंदर माध्यम है. तो आइए कुछ पलों के लिए चिंताओं को विराम दें और ईश्वर के चरणों में अपनी भावनाओं के पुष्प अर्पित करें. भक्ति रस से सराबोर मधुर भजनों की इस संगीतमय यात्रा को शुरू करते हुए करते हैं भगवान श्री गणेश का आराधना.

शमित हो जाए, तब प्रभु का नाम एक दीपक बनकर हमारा मार्ग प्रकाशित करता है। इसी दिव्य भावना को स्वर देता हुआ एक सुंदर भजन अब हम आपके लिए लेकर आए हैं। आइए सुने, आप सुन रहे हैं भक्ति रस पर केंद्रित कार्यक्रम हिमांजलि।

श्रोता साथियों, संत महात्माओं ने कहा है कि इन संसार में यदि कोई सबसे सरल, सबसे सुलभ और सबसे प्रभावशाली साधना है तो वो है प्रभु के नाम का स्मरण। हरि नाम वो अमृत है जो मन की व्याकुलता को शांति में और निराशा को आशा में बदल देता है। कहा भी गया है कि हरि नाम से बढ़कर कोई धन नहीं संसार में, जो इसका जाप करे वो रहे प्रभु के प्यार में। जब जब जीवन की राह कठिन लगे, जब मन

भक्ति रस से सराबोर कार्यक्रम हिमांजलि आप आकाशवाणी एफएम केंद्र शिमला से सुन रहे हैं। श्रोता साथियों, भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व जितना मनमोहक है उतना ही रहस्यमय और प्रेरणादायक भी। वे कभी यशोदा के नटखट काना बनकर माखन चुराते हैं तो कभी अर्जुन के सारथी बनकर जीवन का अमूल्य ज्ञान देते हैं। उनकी बांसुरी की मधुरतान भक्तों के हृदय में प्रेम भक्ति और आनंद का संचार करती है। श्याम की मुस्कान में संसार का सुख समाया है। उनके चरणों में हर भक्त ने अपना ठिकाना पाया है। नाम कृष्ण का जो हृदय से गुनगुनाता है जीवन का हर पल मधुबन बन जाता है। इन्हीं श्री कृष्ण की महिमा सौंदर्य और दिव्यता का गुणगान करता हुआ स्तोत्र अब हम आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं। श्रद्धा से भरे मन और भक्ति से सराबोर भावों के साथ सुनिए कृष्ण अष्टकम।

भक्ति रस से सराबोर कार्यक्रम हिमांजलि में आज के लिए बस इतना ही। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM केंद्र शिमला का प्रसारण 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। 6:40 हुए हैं। एक और भक्तिमय प्रस्तुति लीजिए, पेश है मानस गान।

श्री राम भक्त ऐसा मानते हैं कि चैत्र मास की नवमी तिथि को सभी तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। श्रद्धालुजन पवित्र सरयू में स्नान करते हैं। इस पवित्र नदी के दर्शन, स्पर्श और जल के पान से सभी पाप मिट जाते हैं। श्री राम की नगरी अयोध्यापुरी मोक्षदायिनी है। श्रद्धा की इसी भावना से गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम की निर्मल कथा के लेखन का आरंभ यहां किया। रामचरितमानस को सुनने मात्र से अपूर्व शांति मिलती है। विषय वासना की आग में जलता मन रूपी हाथी यदि इस मानस रूपी सरोवर की शरण आ जाए तो उसे अनंत सुख की प्राप्ति होगी। ऋषि मुनियों के प्रिय इस मानस रूपी कथा की रचना

देवाधिदेव महादेव ने की थी। सो अवसर आने पर मन में रची ये कथा उन्होंने देवी पार्वती को सुनाई। उसी सुखदायिनी कथा का वर्णन तुलसीदास ने रामचरितमानस में किया है। भगवान शंकर की कृपा से उनमें सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप वो एक समर्थ तथा श्रेष्ठ कवि कहलाने के अधिकारी हुए।

मानस गान अभी आप सुन रहे थे। गायक कलाकार थे लता मंगेशकर, मन्ना डे, श्रीकांत पड़गांवकर, संगीत सतीश भाटिया का था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। देशगान, आइए सुनें।

0: समूह स्वरों में देशगान अभी आप सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण। पेश है एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं हेमंत शर्मा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार विकास और सुशासन दोनों मोर्चों पर विफल साबित हुई है। केंद्र सरकार की 12 वर्ष की उपलब्धियों पर शिमला में आयोजित मीडिया संवाद में उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला। इस बीच जगत प्रकाश नड्डा ने शिमला के चौड़ा मैदान में स्वच्छता अभियान में भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को केवल एक सरकारी कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे देशव्यापी जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों को गुमराह करने वाला करार दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश को मिलने वाली विशेष आर्थिक मदद और RDG बंद कर प्रदेश के हितों पर कुठाराघात किया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में प्रदेश नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। शिमला में मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा का आधार लगातार मजबूत हुआ है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन योग और ध्यान परंपरा को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। वे लुधियाना में स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड के दौरे के दौरान बोल रहे थे। केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देशभर में बालिकाओं के सशक्तिकरण का एक बड़ा अभियान बन गई है। महिला व बाल विकास मंत्रालय के अनुसार पिछले 10 वर्षों में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 929 हो गया है। प्रदेश के अधिकांश भागों में पिछले 24 घंटों में वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी रहा। राज्य में कई स्थानों पर हुई हल्की से मध्यम वर्षा से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भी कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है। न्यूज हेडलाइंस में अभी इतना ही। नमस्कार।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। 7 बजने को हैं, समाचार अब आप सुनेंगे जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
3: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने बताया है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। यह लूनर लैंडर को चंद्रमा के बहुत ठंडे मौसम

0: से बचा सकता है। बेंगलुरु में श्री नारायणन ने बताया कि इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने का काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर की शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वर्तमान में वे थलसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने की संभावना व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिन में ऐसा संभव हो। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहुंच गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। अगले 3-4 दिन तक आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, कराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ तेज हवा और बारिश की संभावना है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत ग्रुप ए में अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए 16 में से 13 मुकाबले जीत चुका है। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार वर्षा के कारण मैच की शुरुआत में देरी हुई और इसे 25-25 ओवर का कर दिया गया। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला का प्रसारण 103.7 MHz पर। चिंतन, आइए सुने।
2: क्षण भर का सत्संग कलुषित जीवन को भी परम उज्जवल कर देता है। प्राचीन समय की बात है, एक क्रूर ब्राह्मण डाकू बन गया था। जन्म से ही वो अशिक्षित था। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए उसने घोर मार्ग अपनाया। घोर वन से जाने वाले एक मार्ग के समीप उसका अड्डा था। जो भी यात्री उधर से निकलता उसे वो मार डालता, बिना ये सोचे कि इस हत्या से उसे कितना लाभ होगा। मृत व्यक्ति के पास जो कुछ मिलता उसे लेकर वो शव को कहीं ठिकाने लगा देता। वो मार्ग यात्रियों के लिए मृत्यु द्वार बन गया था। पथिकों की ये विपत्ति देवऋषि नारद से देखी नहीं गई। वे स्वयं उसी मार्ग पर चल पड़े। सदा की भांति शस्त्र उठाए वो डाकू उन पर भी झपटा। देवऋषि को भला क्या भय, उन्होंने कहा, भाई तुम व्यर्थ क्यों क्रोध करते हो? मैंने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, तुम चाहते क्या हो? वो डाकू बोला, मैं चाहता हूँ तेरे प्राण, तेरी ये तुमड़ी और वस्त्र, तेरे पास कुछ और भी निकले तो वो भी। नारद जी बोले, निरंतर जीव हत्या का पाप किए बिना भी तो तुम वन के फल कंद से पेट भर सकते हो। देव ऋषि का तेज और उनके स्वर में भरी दया डाकू को स्तंभित किए दे रही थी। वो बोला, किंतु मेरे माता पिता, स्त्री और पुत्र का पेट कौन भरेगा? नारद जी ने

बड़ी मृदुता से कहा, भाई तुम जिनके लिए नित्य ये पाप करते हो उनमें से कोई तुम्हारे पाप का फल भोगने में भाग नहीं लेगा। अपने पाप का फल तुम्हें अकेले ही भोगना होगा। डाकू विचलित हो उठा और कहने लगा, ये कैसे हो सकता है? जो मेरे पाप से कमाए धन का सुख भोगते हैं वे मेरे पाप के फल में भी भाग तो लेंगे ही। नारद जी ने कहा, तुम बहुत भोले हो भाई, पाप के फल में कोई भाग नहीं लेगा। तुम्हें मेरी बात का विश्वास ना हो तो घर जाकर उन लोगों से पूछ लो। वो डाकू बोला, बाबा जी तू मुझे मूर्ख बनाना चाहता है, मैं घर पूछने जाऊं और तू यहां से खिसकता बने। नारद जी बोले, तुम मुझे इस पेड़ के साथ भली भांति बांध दो। चुपचाप नारद जी स्वयं एक पेड़ से लगकर खड़े हो गए। अब डाकू को उनकी बात सच्ची लगी। उसने उन्हें पेड़ के साथ वन की लताओं से भली भांति बांध दिया। घर जाकर उसने पिता से पूछा। तनिक खांसकर पिता ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा हमने तुम्हारा पालन पोषण किया है, तुम्हें छोटे से बड़ा किया है और अब तुम समर्थ हो गए हो। हमारी वृद्धावस्था आ गई है, तुम्हारा कर्तव्य है हमारा भरण पोषण करना। तुम कैसे धन लाते हो इससे हमें क्या, तुम्हारे पाप पुण्य में भला हमारा भाग क्यों होने लगा? वो डाकू चौंका और फिर माता के पास गया। माता ने भी उसे वही उत्तर दिया। पत्नी और पुत्र ने भी उसके पाप पुण्य में भाग लेने से इनकार किया। डाकू के नेत्रों के आगे अंधकार छा गया। जिनके लिए वो इतने पाप कर चुका वे कोई उस पाप का दारुण फल भोगने में उसके साथ नहीं रहना चाहते। पश्चाताप से वो जलने लगा और वन की ओर दौड़ा। वहां पहुंचकर देवऋषि के बंधन की लताएं उसने तोड़ दी और क्रंदन करता उनके चरणों पर गिर पड़ा। देवऋषि बोले, तुम राम नाम का जप करो, यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा, किंतु हत्या निष्ठुर हृदय पाप कलुषित वाणी ये दिव्य नाम सीधा होने पर भी उच्चारण करने में समर्थ नहीं हुई। देवऋषि भी हारना नहीं जानते थे। वे जिसे मिल जाएं वो भगवान के चरणों से दूर बना रहे, भला ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा, चिंता मत करो, तुम मरा मरा ही जपो। वो डाकू वहीं बैठ गया। उसके उपदेशता कब चले गए उसे पता ही नहीं चला। उसकी वाणी मरा मरा मरा मरा दिन सप्ताह महीनों और फिर वर्ष बीतते चले गए। उसके शरीर में दीमक लग गई, दीमक की पूरी बांबी वाल्मीकि बन गई। डाकू के तप ने सृष्टिकर्ता को आश्चर्य में डाल दिया। वे हंसवाहन स्वयं पधारे और अपने कमंडलू के अमृत जल से उन्होंने उस तपस्वी पर छींटे दिए। उन जल सीकरों के प्रभाव से उस दीमक की वाल्मीकि से जो पुरुष निकल खड़ा हुआ वो अब पूरा बदल चुका था। संसार ठीक नहीं जानता कि डाकू का नाम क्या था, कोई उसे रत्नाकर कहते हैं, किंतु वो जो तपस्वी उठा वाल्मीकि से निकलने के कारण उसे वाल्मीकि कहा गया। वो आदि कवि भगवान श्री राम के निर्मल यश का प्रथम गायक, विश्व उसकी वंदना करके आज भी कृतार्थ होता है।

चिंतन अभी आप सुन रहे थे, प्रस्तुति डॉक्टर हुकम शर्मा की थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में उनके प्रसारण समय के साथ।

अब से कुछ ही देर बाद 7:15 पर सुनिएगा गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम। 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आप सुनेंगे, जिन्हें हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 8:32 पर लोक संगीत सुनवाया जाएगा। फिल्म संगीत का वक्त रहेगा 8:45। प्रादेशिक समाचार 9:20 पर आप सुन पाएंगे। 9:30 से सुनिएगा कुदरत के रंग कार्यक्रम। 10 बजे आज आप सुनेंगे पुरानी और नई फिल्मों पर केंद्रित कार्यक्रम झंकार। 10:30 पर सुनिएगा साहित्य दर्पण कार्यक्रम। 11 बजे प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे। 11:05 पर सुनिएगा पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम। लोक संगीत का लुत्फ उठाइए,

ग्यारह बजकर 30 मिनट पर। दिन में 12:20 पर सुनिएगा महिला सम्मेलन कार्यक्रम। एक 1:10 का समय म्यूजिक मस्ती का रहेगा। 2 सुनिएगा सबरंग। दोपहर हिंदी समाचारों के लिए आकाशवाणी केंद्र दिल्ली आपको लेकर चलेंगे 2:15 पर। लोक संगीत पर केंद्रित शिखरों के स्वर कार्यक्रम का लुत्फ उठाइए 2:30 से। युवा दोस्तों के लिए युवाणी कार्यक्रम 3 बजकर

इंद्र दिल्ली आपको लेकर चलेंगे 2:15 पर। लोक संगीत पर केंद्रित शिखरों के स्वर कार्यक्रम का लुत्फ उठाइए 2:30 से। युवा दोस्तों के लिए युवाणी कार्यक्रम 3:30 पर लेकर आएंगे। फिल्म संगीत 4:00 सुनिएगा। चार बजकर 20 से प्रदेश की विभिन्न बोलियों के कार्यक्रमों के तहत सिरमौरी कार्यक्रम के साथ आगाज किया जाएगा। 4:50 का समय रहेगा महासुई कार्यक्रम का। किन्नौरी कार्यक्रम सुनिएगा 5:20 पर। जी हाँ, और 6:00 का समय प्रादेशिक समाचारों का रहेगा। 6:05 पर सुनिएगा बिलासपुरी कार्यक्रम। 6:35 का समय लाहौली कार्यक्रम का रहेगा। 7:10 पर आज आपको आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप 2026 के एजवेस्टन बर्मिंगम से क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण सुनवाया जाएगा। इस बीच 7:45 पर प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।

0: रात्रि 9:30 पर सुनिएगा दिल की आवाज भी सुन कार्यक्रम, जो कि ईमेल पर केंद्रित रहेगा। गजलें सुनिएगा रात्रि 10:00। और 10:30 का समय रहेगा सदाबहार नगमों का। आकाशवाणी FM शिमला से प्रसारित किए जाने वाले आज के दिन भर के कार्यक्रमों के मुख्य आकर्षण ये रहेंगे, जिन्हें आप सुन पाएंगे 103.7 MHz FM शिमला पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला का प्रसारण 103.7 MHz पर। अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए कुछ पलों का इंतजार।
1: शिमला की वादियों से आपके दिलों तक आ गया है आपका अपना भरोसेमंद साथी 103.7 MHz पर आकाशवाणी FM शिमला। खबरें, संगीत, संस्कृति और मनोरंजन का बेमिसाल

0: पर्यटन की बात हो या संस्कृति की, हर मुसाफिर की जो आवाज बनता है, जुड़िए उस आवाज से जो हिमालय की गूंज जैसी है। आकाशवाणी FM शिमला, शुभवाणी लाभवाणी, ये है जन जन की वाणी, आकाशवाणी। सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
1: हर खुशी अब लगे नमी,
0: मस्त चुनो मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए FM।

botão com a sua data. पहाड़ों की पावन फिजाओं में बिखरी देवदार की दिव्य दुलार भरी महक और रविवार की रमणीय राहत भरी रवानी के बीच आकाशवाणी एफएम शिमला आपके दिन को खास बनाने के लिए तैयार। सूरज की स्वर्णिम सुषमा से सजा है संसार, सनेहिल समीर सुना रही है सुख का सत्कार। मधुर मुस्कानों से महके मन का मधुबन आज रविवार की रम्य रोशनी में रचिए खुशियों का राज। टिक टिक करती घड़ी की हर धड़कन एक ही संदेश देती है, समय चलता रहता है इसलिए हमें भी चलते रहना है। जो समय की कदर करता है समय उसे कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाने का जिम्मा स्वयं उठा लेता है। तभी तो कहा गया वक्त की कीमत जो पहचान गया वो हर मंजिल को पा गया, जो पल को यूं ही गंवाता रहा वो अवसरों से दूर रह गया। समय न रुकता है न झुकता है न लौटकर फिर आता है, जो इसे अपनाता है वही जीवन में मुस्कुराता है। जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम लेकर आया है आपके लिए प्रेरणा की पुकार, सकारात्मक सोच की बहार, बेहतरीन गीत संगीत की झंकार और इस नई सुबह का शानदार उपहार। तो घड़ी की रफ्तार के साथ कदम मिलाइए, सपनों को संकल्प में बदलिए और हर पल को यादगार बनाइए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला पर दैनिक कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त वीरेंद्र शर्मा।

पेश है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। संडे की सुहानी सुकून की सौगात लेकर हाजिर है हमारा दैनिक कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। कार्यक्रम सुनने वाले सभी

0: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
0: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला का प्रसारण 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर और कार्यक्रम चल रहा है गुड मॉर्निंग शिमला।

श्रोता साथियों, कहते हैं कि समय दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक है। ये बिना कुछ कहे हमें बहुत कुछ सिखा देता है। जो व्यक्ति समय की कदर करना सीख जाता है, सफलता उसके कदम चूमने लग जाती है। घड़ी की सुइयां हर पल आगे बढ़ती रहती हैं और हमें ये संदेश देती है कि ठहरना नहीं, निरंतर आगे बढ़ते रहना ही जीवन का नियम है। सफलता किसी एक दिन का चमत्कार नहीं होती, बल्कि समय के साथ किए गए छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है ये। वक्त कहता है कि फिर ना आऊंगा, जो करना है आज कर, कल मैं लौट कर ना आऊंगा। जीवन में हर सफल व्यक्ति के पीछे समय का सही प्रबंधन और अनुशासन छिपा होता है।

चाहे विद्यार्थी हो, किसान हो, खिलाड़ी हो या फिर वैज्ञानिक, हर किसी की सफलता की कहानी में समय का सम्मान एक समान दिखाई देता है। आइए इस भोर में संकल्प लें कि समय को केवल घड़ी में नहीं बल्कि अपनी आदतों और कर्मों में भी महत्व देंगे, क्योंकि समय को जीतने वाला ही जीवन की मंजिलों को हासिल यकीनी तौर पर कर ही लेता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला से दैनिक कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला।

0: है, यानी मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर हिमाचल में कंडक्ट किया जाएगा। और इस बार हमारा स्वगणना का प्रावधान की ऑप्शन दी गई है या विकल्प रखा गया है, आप जरूर स्वगणना पोर्टल sc.census.gov.in पर जाकर अपनी डिटेल भरें। बाद में हमारे प्रगणक आपके पास आकर उसको वेरीफाई करेंगे और फाइनली पोर्टल पर सबमिट करेंगे। मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूँ कि जो हमारा जनगणना का डाटा होता है, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, घरों की स्थिति के बारे में, या फिर हमारी शिक्षा, साक्षरता और इस तरह की जो हमारी मूलभूत जानकारियां होती हैं, वह हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं उनसे हमारी नीति निर्माण और रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए आप सब अपनी जानकारी खुलकर प्रदान करें। आपके जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं यानी गणनाकार हैं, वो आप ही के आसपास के कोई भी सरकारी कर्मचारी होंगे। जब वो आपके घर आए तो आप उनका स्वागत करें और उनको जानकारी दें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, आप उनका आई कार्ड देख सकते हैं जिसपे की एक QR कोड है, उसे स्कैन करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। और आपसे किसी भी तरह का कोई भी OTP या दस्तावेज कभी भी नहीं मांगा जाएगा। आपको सिर्फ अपने 33 प्रश्नों की जानकारी जनगणना के प्रथम चरण के लिए देनी है। धन्यवाद।
1: आकाशवाणी FM केंद्र शिमला का प्रसारण आप सुन रहे हैं, गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम चल रहा है। आज 14 जून है और आज के इतिहास में दर्ज कुछ खास घटनाओं का जिक्र कार्यक्रम में कर लेते हैं। पहले तो ये बताएं कि 14 जून का जो दिन है ये इस वर्ष का 166वां दिन है और अभी साल में कुल मिलाकर 200 दिन शेष बचते हैं इस साल ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। अब बात आज के इतिहास की कर लेते हैं। 1901 में पहली बार गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। 1999 में थाबो मबेकी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए थे। 2004 में आज के दिन पंचशील सिद्धांत की 50वीं वर्षगांठ पर बीजिंग में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। 2007 में चीन के गोवी रेगिस्तान में पक्षीनुमा विशाल डायनासोर के जीवाश्म आज के दिन मिले थे। आज जन्मे व्यक्तियों के बारे में भी जो चर्चित व्यक्ति हैं दुनिया भर में उनका जिक्र कर लेते हैं। १८८० में आज के दिन सतीश चंद्र दास गुप्ता, जो भारतीय राष्ट्रवादी वैज्ञानिक और आविष्कारक थे, उनका जन्म हुआ था। सिखों के छठवें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1595 में आज के दिन हुआ था। किरण खेर, जो कि हिंदी और बांग्ला चलचित्र अभिनेत्री, 1955 में आज के दिन उनका जन्म हुआ था। और जिनका निधन हुआ था आज के दिन, उनका भी जिक्र करें। मैक्स बेवर, प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक एवं इतिहासकार का 1920 में आज के दिन निधन हुआ था। कुर्त वाल्डहाइम, संयुक्त राष्ट्र संघ के चौथे महासचिव थे, 2007 में निधन उनका हुआ था। भारतीय फिल्म अभिनेता, थिएटर और टीवी कलाकार सुशांत सिंह राजपूत का निधन भी आज ही के दिन 2020 में हुआ था।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण 103.7 मेगाहर्ट्ज पर।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं दीपशिखा शर्मा, जनगणना कार्य निदेशक हिमाचल प्रदेश, आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जनगणना का प्रथम चरण

0: आकाशवाणी एफएम शिमला से गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम चल रहा है और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम केंद्र शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर।
1: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
2: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
1: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
2: पंचायत सिफारिश साथ लाए, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: अब शिमला शहर और इसके आसपास की कुछ बातों से तारुफ आपका करवाते हैं। आगामी मॉनसून सीजन को देखते हुए शिमला नगर निगम ने शहर में व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। बरसात के दौरान जल भराव, भूस्खलन और नालियों के अवरुद्ध होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। मॉनसून के दौरान नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए पूरी तरह से जो है वो कार्य की रूपरेखा तैयार की जा रही है। शहर की सभी प्रमुख और आंतरिक नलियों की सफाई समयबद्ध तरीके से पूरी की जाने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है, तैयार की जा रही है। उधर अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव 2026 के तहत हिमाचल प्रदेश सचिवालय सांस्कृतिक क्लब 14 जून को 6:30 बजे गेयटी में नाटक रंगमंच का आखिरी दिन का मंचन करेगा। ये नाटक रूसी साहित्यकार एंटन चेकोव की प्रसिद्ध रचना स्वान सॉन्ग से प्रेरित रहने वाली है।

गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम में अब खेल जगत की ओर भी रुख करते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला कल हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड धर्मशाला में खेला गया। बारिश की वजह से इंटरप्टेड इस मैच को 4.5 घंटे के अंतराल के बाद मैच शुरू होने के अंतराल के 4.5 घंटे के बाद शुरू किया गया। 50 ओवरों से मैच को घटाकर 25 ओवरों का कर दिया गया और पहले बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान की टीम 25वें ओवर में 194 रन बनाकर

ऑल आउट हो गई और अफगानिस्तान के लिए गुरबाज ने 48 गेंदों पर शानदार शतक लगाकर इस टोटल बड़े टोटल को पूरा करने में मदद की। जवाब में भारत ने 195 रन का जो विजयी लक्ष्य है वो 23वें ओवर में ही हासिल कर दिया और भारत की ओर से कप्तान शुभमन गिल 84 रन की अविजित पारी खेलकर मैच को भारत के पक्ष में मोड़ने में सफल होने वाले बल्लेबाजों में शामिल रहे। केएल राहुल ने भी 39 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। भारत अब श्रृंखला में 1-0 से आगे हो चुका है। मैच बहुत शानदार तरीके से हाई स्कोरिंग मैच रहा और अगला मुकाबला भारत और अफगानिस्तान के बीच लखनऊ में खेला जाएगा 17 जून को। उधर ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु का सफर सेमीफाइनल में ही समाप्त हो गया है। शानदार प्रदर्शन करते हुए वो अंतिम चार तक पहुंची थी लेकिन अंतिम चार में सेमीफाइनल में उन्हें जापान की अकाने यामागुची के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इन दिनों फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट खेला जा रहा है और ग्रुप डी के एक मुकाबले में कल मेजबान अमेरिका ने पराग्वे को 4-1 से शिकस्त दे दी। ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया और हर्जेगोविनिया के बीच ग्रुप बी का मुकाबला 1-1 के बराबरी पर छूटा। सातवां अपना वर्ल्ड कप मैच खेल रही कनाडाई टीम ने पहली बार हार टालकर इतिहास रचा। आज फीफा वर्ल्ड कप के जो मुकाबले खेले जाने हैं ऑस्ट्रेलिया और तुर्की के बीच मुकाबला होगा, जर्मनी और कुआराकाओ के बीच भी मुकाबला खेला जाएगा, साथ ही नीदरलैंड्स और जापान के बीच मुकाबला होगा, आइवरी कोस्ट और इक्वाडोर के बीच भी मुकाबला खेला जाएगा। वीमेंस T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट भी खेला जा रहा है और आज भारत अपनी अभियान की शुरुआत ग्रुप ए में बर्मिंघम एजबेस्टन में पाकिस्तान के साथ मुकाबला खेलकर करने वाला है।

0: कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला में चलते चलते मौसम का भी जिक्र कर लेते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रदेश पहुंचने से पहले ही सक्रिय पश्चिमी विक्षोभों ने प्रदेश में बारिश की कमी को जो है वो काफ़ी हद तक दूर कर दिया है। जून के शुरुआती दिनों में हुई लगातार बारिश ने न केवल मौसम को सुहावना बनाया है बल्कि लंबे समय से चली आ रही वर्षा की कमी को भी काफ़ी हद तक पूरा कर दिया है। बीते कुछ दिनों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में रुक रुक कर हुई बारिश ने तापमान में भी गिरावट जो है वो दर्ज की है। मैदानी और मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ गर्मी बढ़ने लगी है, शिमला, मनाली, रामपुर, रोहडू, चौपाल, सराहन और अन्य क्षेत्रों में भी वर्षा से लोगों को काफ़ी राहत मिली है। कृषि एवं बागवानी क्षेत्र के लिए भी ये बारिश जो है वो लाभकारी मानी जा रही है। सेब सहित अन्य फल फसलों के लिए पर्याप्त नमी मिलने से पौधों के साथ साथ पौधों के जो प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, उसमें भी साइज़ में बढ़ोतरी होने की उम्मीद की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार 19 जून तक प्रदेश के विभिन्न भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने का दौर जारी रह सकता है। आज भी कई स्थानों पर अधड़ चलने और येलो अलर्ट जारी किया गया है। आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला सुन रहे थे। कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही।
1: शिमला की वादियों से आपके दिलों तक आ गया है आपका अपना भरोसेमंद साथी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी FM शिमला। खबरें, संगीत, संस्कृति और मनोरंजन का बेमिसाल

पर्यटन की बात हो या संस्कृति की, हर मुसाफिर की जो आवाज बनता है, जुड़िए उस आवाज से जो हिमालय की गूंज जैसी है। आकाशवाणी FM शिमला, शुभवाणी लाभवाणी, ये है जन जन की वाणी, आकाशवाणी।

0: आप सुन रहे हैं एफएम शिमला का प्रसारण, लीजिए पेश है एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं हेमंत शर्मा। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता

0: ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन योग और ध्यान परंपरा को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। वे लुधियाना में स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड के दौरे के दौरान बोल रहे थे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में प्रदेश नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। शिमला में मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा का आधार लगातार मजबूत हुआ है। प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत कार्यरत कॉलेज कैडर शिक्षकों और प्राचार्यों से राज्य शिक्षक सम्मान 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन निर्धारित प्रारूप पर स्वीकार किए जाएंगे, जिन्हें 25 जून तक ईमेल और हार्ड कॉपी दोनों के माध्यम से निदेशालय को भेजा जा सकता है। कांगड़ा जिले में शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के इंडोर स्टेडियम कलियाड़ा में राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता कल शुरू हुई। प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों से करीब 200 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। राज्य सरकार ने ऊना जिले के हरोली में निर्माणाधीन बल्क ड्रग पार्क में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था के लिए 28.5 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। इस राशि से पार्क में स्थापित होने वाले उद्योगों के लिए विश्वसनीय व पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ ने बीसीए प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए सब्सिडाइज्ड सीटों की पहली चयन सूची जारी कर दी है। चयनित विद्यार्थियों को 18 जून साय 5 बजे तक विश्वविद्यालय के ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल पर शुल्क जमा करना होगा। आपदा प्रबंधन की तैयारियों का आकलन करने के लिए प्रदेश में 15 जून को मेगा मॉकड्रिल का आयोजन किया जाएगा। अभ्यास के माध्यम से आपदा से निपटने की तैयारियों में मौजूद कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देशभर में बालिकाओं के सशक्तिकरण का एक बड़ा अभियान बन गई है। महिला व बाल विकास मंत्रालय के अनुसार पिछले 10 वर्षों में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 929 हो गया है। न्यूज हेडलाइंस में अभी इतना ही, नमस्कार।
1: सूचना मनोरंजन शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज के लिए अब हम आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी केंद्र दिल्ली, प्रतीक्षा करें।
2: पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने

0: बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
1: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इको सिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और सीएसआईआर ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल x@AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है, चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल

0: इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
1: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
0: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
2: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
3: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
0: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
5: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
4: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान की इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुँचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व

0: है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ते ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IIMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट।

0: आवाज देगा भारत। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार आईएमए से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब आईसीबीएम मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार, सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असले तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों एंड जॉइंटली इनॉग्रेट भारत इनोवेट्स इवेंट इन नीस टुडे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डेवलपिंग लॉन्ग लाइफ मून लैंडर्स capable of surviving up to 200 days, says ISRO chairman V. Narayanan. IMD says conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh during next 2 to 3 days. US President Donald Trump claims deal to end war with Iran will be signed today and Strait of Hormuz will be opened to all immediately afterwards. India beat Afghanistan by 7 wickets in rain-affected first one-day international cricket at Dharamshala. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin their campaign against arch-rivals Pakistan in Birmingham this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his stay in France, he will join French President Emmanuel Macron in jointly inaugurating Bharat Innovates and hold bilateral talks with him on key areas of cooperation and global issues ahead of the upcoming G7 summit. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. At a community reception held at the iconic Hotel Negresco yesterday, a large gathering of the Indian diaspora accorded a warm and enthusiastic welcome to the Prime Minister. Prime Minister Modi interacted warmly with members of the community and witnessed colourful cultural performances featuring classical Indian dance forms including Kathak, Odissi, Bharatanatyam presented by French and Italian artists.

0: to destroy enemy infrastructure with precision, cites the Hindu. Hindustan Times informs Anthropic has disabled its two most powerful AI models, Fable 5 and Mythos 5, on a US government order under the headline, "In a First, AI Model Pulled Offline After US Government Intervenes." FSS AI bans use of pins, metallic wires in food packaging, reads a front page story in the Times of India. The FIFA World Cup 2026 may be attracting over 5 million strong live audience, but match attendees from India to be only about 30,000, far less than previous edition in 2022. High average costs, travel hurdles, results in tepid interest from Indian travellers, writes the Financial Express. And finally, in a piece titled "Fashion to Furnace, Some Luxe Gold Watches Fail the Test of Time," the Economic Times writes, as yellow metal price hit record high, vintage pieces are being melted down as the gold content value outstrip their resale worth. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates event in Nice today. Indian Space Research Organization developing long-life moon landers capable of surviving up to 200 days, says ISRO Chairman V. Narayanan. IMD says conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh during next 2 to 3 days. US President Donald Trump claims deal to end war with Iran will be signed today and Strait of Hormuz will be open to all immediately afterwards. India beat Afghanistan by 7 wickets in rain-affected first one-day international cricket at Dharamshala. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin their campaign against arch-rivals Pakistan in Birmingham this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:30 में हैं, लीजिए पेश है एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।
3: नमस्कार, एफएम न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हेमंत शर्मा। भगवान शिव के पवित्र धाम किन्नौर कैलाश की वार्षिक यात्रा इस वर्ष 1 जुलाई से 30 जुलाई 2026 तक आयोजित की जाएगी। समुद्र तल से लगभग 6,050 मीटर यानी 19,850 फीट की ऊंचाई पर स्थित किन्नौर कैलाश शिवलिंग देश के प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थलों में से एक है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन अधिकतम 375 यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। राज्य सरकार ने ऊना जिले के हरोली में निर्माणाधीन बल्क ड्रग पार्क में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था के लिए 28.5 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। इस राशि से पार्क में स्थापित होने वाले उद्योगों के लिए विश्वसनीय व पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत कार्यरत कॉलेज कैडर शिक्षकों और प्राचार्यों से राज्य शिक्षक सम्मान 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन निर्धारित प्रारूप पर स्वीकार किए जाएंगे, जिन्हें 25 जून तक ईमेल और हार्ड कॉपी दोनों के माध्यम से निदेशालय भेजा जा सकता है। प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ ने बीसीए प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए सब्सिडाइज सीटों की पहली चयन सूची जारी कर दी है। चयनित विद्यार्थियों को 18 जून साय 5 बजे तक विश्वविद्यालय के ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल पर शुल्क जमा कराना होगा। आपदा प्रबंधन की तैयारियों का आकलन करने के लिए प्रदेश में कल 15 जून को मेगा मॉकड्रिल का आयोजन किया जाएगा। अभ्यास के माध्यम से आपदा से निपटने की तैयारियों में मौजूद कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देशभर में बालिकाओं के सशक्तिकरण का एक बड़ा अभियान बन गई है। महिला व बाल विकास मंत्रालय के अनुसार पिछले 10 वर्षों में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 929 हो गया है। प्रदेश के अधिकांश भागों में पिछले 24 घंटों में वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी रहा। राज्य में कई स्थानों पर हुई हल्की से मध्यम वर्षा से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भी कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एडमिंस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। आज के अन्य मैच में नीदरलैंड्स का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय

0: अनुसार सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। न्यूज हेडलाइंस में अभी इतना ही, नमस्कार।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
2: एक 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला का प्रसारण। लोक संगीत आइए सुनते हैं। युवा शर्मा और कुमारी सुमन को इस लोकगीत में आइए सुने।

श्रोता साथियों, लोक संगीत की रंग बिरंगी दुनिया बेहद आकर्षक होती है। लोकगीत समाज की भावनाओं, प्रेम, विरह, हंसी मजाक और जीवन के अनगिनत रंगों का आईना होते हैं। अगला लोकगीत कार्यक्रम में सुनवाते हैं आपको गीत में प्रेम, उत्सुकता और हल्की फुल्की छेड़छाड़ का सुंदर संगम है। आधी रात की खामोशी में उठे सवाल और प्रेम की जिज्ञासा इस गीत को आकर्षक बना रही है।

दोस्तों, रिश्तों की खूबसूरती केवल प्यार में नहीं बल्कि एक दूसरे की बातों को समझने और दिल से स्वीकार करने में भी होती है। कभी कभी हंसी मजाक में कही गई बातें, छेड़छाड़ या प्यार भरी नोकझोंक रिश्तों में मिठास घोल देती है। लोकगीतों की दुनिया में भी ऐसे भाव बड़ी सहजता और खूबसूरती से व्यक्त किए जाते हैं। अगला लोकगीत सुनते हैं, प्रेम, अपनत्व और रिश्तों की मधुरता को समर्पित है ये लोकगीत, जिसमें एक प्यारी सी अर्जी है कि दिल से कही गई बातों को गलत ना समझा जाए और मुस्कुराते हुए स्वीकार किया जाए।

0: इसी लोक संगीत के साथ फिलहाल लोक संगीत में इतना ही, आप बने रहें एफएम शिमला के साथ।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम केंद्र शिमला का प्रसारण 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब पेश है फिल्म संगीत।

FM शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 MHz पर और फिल्म संगीत सुनवाया जा रहा है। कार्यक्रम का अगला गाना आपको कसूर फिल्म से सुनवा रहे हैं। कुमार सानू की आवाज है, समीर के बोल है और नदीम श्रवण की तर्ज। खूबसूरत नगमा, एंजॉय कीजिए।

0: फिल्म संगीत में अभी के लिए फिलहाल इतना ही।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
0: एक सौ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला का प्रसारण। आइए अब आपको जानकारी देते हैं हमारे प्राइमरी चैनल से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में उनके प्रसारण समय के साथ। प्रातः 9:30 पर सुनिएगा सुरबेला कार्यक्रम। लाइव फोन इन कार्यक्रम रिमझिम का समय रहेगा 10:00। 10:30 पर सुनिएगा साहित्य दर्पण कार्यक्रम। 11:05 पर समूह गान शिक्षा पाठ पेश किया जाएगा। बाल सभा का समय रहेगा 11:30। 12:20 पर प्रसारित किया जाएगा। सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम लेकर आएंगे 1:10 पर। सुनहरी किरणें कार्यक्रम का प्रसारण समय 2:00। लोक संगीत पर केंद्रित हिम गुंजन का समय रहेगा 2:30। प्रादेशिक बोलियों के कार्यक्रम आप सुनेंगे 4:20 से। से आज आप सुनेंगे आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप का एजबेस्टन बर्मिंगम से क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण। 7:10 पर आप सुनेंगे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम। 8:15 पर सुनिएगा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हिम बीट्स। 8:30 से भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी 2020 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल जारी रहेगा। ये थे हमारे प्राइमरी चैनल के आज के कुछ मुख्य आकर्षण और उनका प्रसारण समय। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला का प्रसारण 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

0: एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प।
0: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: समाचार जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर व धर्मशाला केंद्रों के साथ ही एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप और रेडियो की डीटीएच सेवा पर भी सुना जा सकता है।
1: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
2: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
1: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
2: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
1: जानकारी लें, अधिकार जाने।
2: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। विश्व रक्तदान दिवस आज, देश सहित प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। भगवान शिव के पवित्र धाम की किन्नौर कैलाश यात्रा इस वर्ष 1 से 30 जुलाई तक। धर्मशाला में एक दिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराया। 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे। और प्रदेश के अधिकांश भागों में पिछले 24 घंटों में हुई वर्षा से लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरदर शाखा के बीच शुरू की गई है। ये पहल केंद्रीय मंत्री की ग्रामीण डाक सेवकों और डाक सहायकों के साथ बातचीत में मिली प्रतिक्रिया पर आधारित है, जिसमें दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में तेज संपर्क पर जोर दिया गया था। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मंत्रालय ने बताया कि मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित रेहरदर शाखा तक पहुंचने में वर्तमान में 2 घंटे से अधिक समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। 5 दिवसीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में कल सम्पन्न हो गया। सम्मेलन में घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा, किसान कल्याण, जलवायु अनुकूल कृषि, कृषि व्यापार और डिजिटल कृषि पर निर्णयों को शामिल किया गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ब्रिक्स देश दुनिया की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं और वैश्विक कृषि उत्पादन में तकरीबन 42% का योगदान ब्रिक्स देशों का है। सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
1: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। आज विश्व रक्तदान दिवस है। ये दिन अमूल्य मानव जीवन बचाने और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने में रक्तदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। इस वर्ष की थीम है मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें जीवन बचाएं। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने विश्व रक्तदान दिवस पर देशवासियों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्त की एक बूंद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नया जीवन दे सकती है और किसी परिवार में फिर से खुशी ला सकती है। उन्होंने लोगों से

0: मानव जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आग्रह किया। भगवान शिव के पवित्र धाम किन्नौर कैलाश की वार्षिक यात्रा इस वर्ष 1 जुलाई से 30 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। समुद्र तल से लगभग 6050 मीटर यानी 19850 फुट की ऊंचाई पर स्थित किन्नौर कैलाश शिवलिंग देश के प्रमुख धार्मिक व साहसिक तीर्थ स्थलों में से एक है। ये यात्रा भगवान शिव के प्रति आस्था का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें देश विदेश से हजारों श्रद्धालु कठिन पर्वतीय मार्ग पार कर पवित्र शिवलिंग के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: समुद्र तल से लगभग 6050 मीटर यानी 19850 फीट की ऊंचाई पर स्थित किन्नौर कैलाश शिवलिंग देश के प्रमुख धार्मिक एवं साहसिक तीर्थों में से एक है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन अधिकतम 376 यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति दी जाए। प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिए। इस यात्रा से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और जिले में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आकाशवाणी के लिए
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in, DTH सेवा और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य NTA परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। धर्मशाला में भारत ने कल रात 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने 66 गेंदों पर नाबाद 84 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 24 ओवर 5 गेंद में 194 रन बनाए थे। शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अफगानिस्तान के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज ने शानदार शतक बनाया। उन्होंने 51 गेंद पर 102 रन बनाए। भारत के लिए नए खिलाड़ी हर्ष दुबे और गुरनूर बराड़ ने 3-3 विकेट लिए। लगातार बारिश के कारण मैच की शुरुआत में देरी हुई और इसे 25-25 ओवर का कर दिया गया। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इधर ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। टूर्नामेंट के मैच इंग्लैंड और वेल्स में खेले जा रहे हैं। फाइनल मैच अगले महीने की 5 तारीख को लॉर्ड्स में होगा। आपदा प्रबंधन की तैयारियों का आकलन करने के लिए प्रदेश में कल मेगा मॉकड्रिल का आयोजन किया जाएगा। कांगड़ा जिले के विभिन्न उपमंडलों में भी ये अभ्यास सुबह 9:30 बजे से रात 9:30 बजे तक चलाया जाएगा। उपायुक्त हिमराज बैरवा ने बताया कि अभ्यास के माध्यम से आपदा से निपटने की तैयारियों में मौजूद कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वहीं लाहौल स्पीति जिला प्रशासन और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कल आयोजित होने वाले मॉकड्रिल के सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उपायुक्त किरण भड़ाना ने लोगों से मॉकड्रिल के दौरान सायरन, एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन गतिविधियों को देखकर न घबराने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
2: लाहौल स्पीति जिला प्रशासन और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 15 जून को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बहु आपदा मॉक ड्रिल आयोजित करेगा। उपायुक्त किरण भड़ाना ने बताया कि सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक विभिन्न काल्पनिक आपदा परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों का अभ्यास किया जाएगा। मॉक ड्रिल के तहत सिसु में ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड, चाकसनाला में भूस्खलन, जहलमा नाला में फ्लैश फ्लड, उदयपुर और काजा में भूकंप तथा व्हीलिंग वन क्षेत्र में रात्रिकालीन वनाग्नि से निपटने की तैयारियों का परीक्षण किया जाएगा। इसमें पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड, NDRF, SDRF और स्थानीय समुदाय की भागीदारी रहेगी। उपायुक्त किरण भड़ाना ने लोगों से अपील की है कि मॉकड्रिल के दौरान सायरन, एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन गतिविधियों को देखकर घबराए नहीं और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दे। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: मॉनसून से पहले सक्रिय हुए

0: पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में लोगों को भीषण गर्मी और तपिश से राहत मिली है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कुछ स्थानों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार राज्य में प्री मानसून की ये सक्रियता 15 से 19 जून तक बनी रहेगी, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून के 20 से 25 जून के बीच हिमाचल में दस्तक देने की अनुकूल संभावनाएं हैं। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के हवाले से सुर्खी दी है, दिल्ली से चल रही हिमाचल सरकार। दिव्य हिमाचल का शीर्षक है, यूपीएस लागू करेगी भाजपा सरकार। शिमला में बोले नड्डा, पेंशन के मामले में भाजपा की नीति पहले से ही स्पष्ट। जबकि अमर उजाला के मुताबिक, मैं दिल्ली में ही करूँगा काम, पेंशन स्कीम पर जयराम व प्रदेश के नेता लेंगे फैसला। पंजाब केसरी का शीर्षक है, मंडी मनाली एनएच पर 20 किलोमीटर लंबा जाम। हिमाचल दस्तक लिखता है, धर्मशाला वनडे में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। मौसम पर दैनिक भास्कर के शब्द हैं, मॉनसून से पहले चोटियों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में झमाझम बारिश। अमर उजाला का शीर्षक है, रोहतांग धौलाधार में बर्फबारी, शिमला मंडी व कांगड़ा में बारिश। जबकि दिव्य हिमाचल की सुर्खी है, हिमाचल में बारिश से तापमान में गिरावट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। विश्व रक्तदान दिवस आज, देश सहित प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। भगवान शिव के पवित्र धाम किन्नौर कैलाश यात्रा इस वर्ष 1 से 30 जुलाई तक होगी आयोजित। धर्मशाला में एक दिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराया 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे। और प्रदेश के अधिकांश भागों में पिछले 24 घंटों में हुई वर्षा से लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर व धर्मशाला केंद्रों के साथ ही FM बैंड 103.7 MHz, मोबाइल ऐप और रेडियो की DTH सेवा पर भी सुना गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
2: शिमला की वादियों से आपके दिलों तक आ गया है आपका अपना भरोसेमंद साथी 103.7 MHz पर, आकाशवाणी FM शिमला। खबरें, संगीत, संस्कृति और मनोरंजन का बेमिसाल

0: पर्यटन की बात हो या संस्कृति की, हर मुसाफिर की जो आवाज बनता है, जुड़िए उस आवाज से जो हिमालय की गूंज जैसी है। आकाशवाणी FM शिमला, शुभवाणी, लाभवाणी, ये है जन जन की वाणी, आकाशवाणी।
1: ১০৩.৭ मेगाहर्ट्ज पर आप आकाशवाणी FM केंद्र शिमला का प्रसारण सुन रहे हैं। ये वक्त है कुदरत के रंग कार्यक्रम का। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके दर्शन हम करवाते हैं प्रदेश के किसी एक चुनिंदा स्थान की, जहाँ की महत्वता बहुत खास रहती है, चाहे वो प्राकृतिक पहलू हो या फिर किसी धार्मिक कड़ी से जुड़ा हुआ पहलू। आज इस कार्यक्रम में आपको हम लेकर चलेंगे जिला सिरमौर में हरिपुर धार स्थित माता बंगाइणी के दर्शन करवाने के लिए। गीत संगीत तो चलता रहेगा हर बार की तरह, इस कार्यक्रम में पहले रुख गीत संगीत की ओर ही कर लेते हैं।

श्रोता साथियों, सफर कोई भी हो, अगर गीत संगीत की सुकून भरे सुरमई तरंग के साथ हो तो उसे वो महका ही देती है। आप आकाशवाणी एफएम शिमला से इस समय सुन रहे हैं कुदरत के रंग कार्यक्रम। बादलों से बातें करती ऊंची चोटियां, देवदार के वृक्षों की सरसराहट और आस्था से भरा एक दिव्य धाम। जी हाँ।

बात कर रहे हैं सिरमौर जिले के प्रसिद्ध हरिपुर धार की, जहां विराजमान है माता भंगायणी देवी। यहां की वादियों में केवल प्रकृति की सुंदरता ही नहीं बल्कि सदियों पुरानी लोक आस्था की गूंज भी सुनाई देती है। मंदिर परिसर के नैसर्गिक स्वरूप की अगर बात करें तो परिसर से हिमालय की मनोरम पर्वत श्रृंखलाओं का दृश्य दिखाई पड़ता है। बरसात और सर्दियों के मौसम में यहाँ का नजारा और भी आकर्षक हो जाता है। नवरात्रों के दौरान यहाँ हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। जी हाँ दोस्तों, भंगायणी मंदिर जो सिरमौर जिले की ऊंची पहाड़ियों पर समुद्र तल से लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, ये केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि श्रद्धा, संस्कृति और प्रकृति का अद्भुत संगम है। यहाँ जैसा हमने जिक्र किया, चारों ओर फैली हरियाली और ठंडी हवाएं, दूर दूर तक दिखाई देने वाली पर्वत श्रृंखलाएं, सब कुछ मन को शांति प्रदान करते हैं। मान्यता है कि माता भंगायणी देवी शिरगुल महाराज की बहन है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार माता अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध न्याय की देवी मानी जाती है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति किसी प्रकार के अन्याय का शिकार हुआ हो और सच्चे मन से माता के दरबार में प्रार्थना करे, उसे न्याय अवश्य प्राप्त होता है। इसी कारण माता को कई श्रद्धालु न्याय की देवी के रूप में भी पूजते हैं।

सिरमौर के हरिपुरधार स्थित माँ मंगाइनी माता के दर्शन आज कार्यक्रम में आपके करवा रहे हैं। कुछ उन रोचक किस्सों का भी जिक्र कर लेते हैं जिनका समावेश अनछुए किस्सों के तौर पर है मंदिर से जुड़ा हुआ। शिरगुल महाराज को कैद से छुड़ाने की कहानी आती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार शिरगुल देव की आध्यात्मिक शक्तियों से भयभीत होकर तत्कालीन मुगल शासक ने उन्हें कैद कर लिया था। उस समय शिरगुल देवता को मुक्त कराने के लिए माता भंगाइनी ने एक साधारण सेविका यानी भांगण का रूप धारण किया था। अपनी बुद्धि और चतुरता से माता ने उन्हें मुगल बादशाह की कैद से आजाद करवा लिया था। मुगल बादशाह की कैद से मुक्त होने के बाद शिरगुल देवता ने अपनी बहन भंगाइनी के इस उपकार के बदले उन्हें सबसे ऊंचा स्थान हरिपुर प्रदान किया। तब से माता यही निवास करती है और शिरगुल देव चूड़धार में अपना स्थान उन्होंने सुनिश्चित किया। सिरमौर में ही नहीं पूरे हिमाचल के साथ उत्तर भारत में शिरगुल महादेव की बहन के तौर पर माँ भंगाइनी देवी के मंदिर की और माँ देवी की आराधना की जाती है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम केंद्र शिमला का प्रसारण 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, और चल रहा है कार्यक्रम कुदरत के रंग। जहां श्रद्धा सिर झुकाती है वहां कृपा बरसती है, जहां विश्वास की ज्योति जलती है वहां हर राह संवरती है। माता के चरणों में जो सच्चे मन से शीश नवाता है वो जीवन में नई आशा और नया उत्साह पाता है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपसे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं। एक गाने के साथ आपको छोड़े जाते हैं, इस दुआ के साथ कि माता भंगायणी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास हो।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुदरत के रंग। कार्यक्रम में आज इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण। वक्त हो चला है एफएम न्यूज हेडलाइंस का, आइए सुने।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं हेमंत शर्मा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और हरिहर घर शाखा के बीच शुरू की गई है। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। आज विश्व रक्तदान दिवस है। ये दिन अमूल्य मानव जीवन बचाने और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने में रक्तदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। इस वर्ष की थीम है मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें जीवन बचाएं। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने विश्व रक्तदाता दिवस पर देशवासियों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत कार्यरत कॉलेज कैडर शिक्षकों और प्राचार्यों से राज्य शिक्षक सम्मान 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन निर्धारित प्रारूप पर स्वीकार किए जाएंगे, जिन्हें 25 जून तक ईमेल और हार्ड कॉपी दोनों के माध्यम से निदेशालय भेजा जा सकता है। लाहौल स्पीति के प्रसिद्ध शाशुर बौद्ध मठ में 24 जून को पारंपरिक शाशुर सेचू महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव का मुख्य आकर्षण बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला पारंपरिक छम यानी मुखौटा नृत्य होगा, जिन्हें शांति, समृद्धि और नकारात्मक शक्तियों के निवारण का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव के पवित्र धाम किन्नौर कैलाश की वार्षिक यात्रा इस वर्ष 1 जुलाई से 30 जुलाई 2026 तक आयोजित की जाएगी। समुद्र

0: से 19,850 फुट की ऊंचाई पर स्थित किन्नौर कैलाश शिवलिंग देश के प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थलों में से एक है। ये यात्रा भगवान शिव के प्रति आस्था का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें देश विदेश से हजारों श्रद्धालु कठिन पर्वतीय मार्ग पार कर पवित्र शिवलिंग के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य NTA परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम में एजस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। मॉनसून से पहले सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में लोगों को भीषण गर्मी और तपिश से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। न्यूज हेडलाइंस में आज बस इतना ही, नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी एफएम केंद्र शिमला का प्रसारण आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। 10 बजे का समय, संगीत की सुरमई दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। शुरू हो चुका है पुराने और नए फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम झंकार, एक ऐसा संगीत सफर जहां पुराने गीतों की मधुर यादें और नए गीतों की ताजगी एक साथ मनोरंजन करती हुई नजर आती है। पुराने गीत दिल के किसी कोने में बसी सुनहरी यादों को ताजा कर देते हैं, तो नए गीत जीवन में नई उमंग और ऊर्जा का संचार करते हैं। इस खूबसूरत सफर में लेकर आए हैं सुरों, भावनाओं और यादों का अनोखा संगम। कुछ नगमे बीते कल की कहानी कहते हैं, कुछ गीत नए सपनों की रवानी कहते हैं। सुर चाहे पुराने हो या नए जमाने के, दिल तक पहुंचने वाले गीत ही सुहाने लगते हैं। तो तैयार हो जाइए संगीत के इस सतरंगी कारवां के साथ जुड़ने के लिए, जहां हर धुन में होगा एक एहसास और हर गीत में एक नई बात। झंकार कार्यक्रम का आगाज पुराने इस तराने के साथ।

श्रोता मित्रों, कभी कभी जीवन की भागदौड़, चिंताओं और शोर शराबे के बीच मन ऐसी जगह जाने को करता है जहां कोई तनाव ना हो, न कोई शिकायत, बस सुकून ही सुकून हो। एक ऐसी दुनिया जहां सपनों को खुला आसमान मिले और उम्मीदों को पंख मिले। ऐसे ही सुनहरे ख्यालों और खूबसूरत कल्पनाओं से सजा कार्यक्रम का अगला तराना आपके लिए। ये हमें उस दुनिया की सैर कराएगा जहां प्रेम है, शांति है और जीवन की हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती है।

श्रोता साथियों, प्यार में रूठना और मनाना एक ऐसा खूबसूरत एहसास है जो रिश्तों को और भी गहरा बना देता है। कभी एक छोटी सी नाराजगी तो कभी प्यार भरी शिकायत, और फिर उसी शिकायत को मुस्कान में बदल देने की कोशिश। हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर के गीतों में ऐसे भावों को बड़ी खूबसूरती से पिरोया गया है। कार्यक्रम का अगला नगमा प्रेम की उसी प्यारी सी मनुहार का गीत है, जहां दिल अपने हमदम से कहता है, नाराजगी छोड़ दो, अब मान भी जाओ। शब्दों में प्यार है, सुरों में अपनापन, और धुन में ऐसी मिठास जो सीधे दिल तक पहुंच जाए। रफी साहब की आवाज जो है। फिल्म का नाम मेरे सनम, मजरू सुल्तानपुरी की शब्द रचना और ओपी नैयर साहब का संगीत। सुन लें हम।

पुराने और नए फिल्मी तरानों पर केंद्रित कार्यक्रम झंकार आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर अपने दोस्त वीरेंद्र शर्मा के साथ। श्रोता साथियों, पुराने गीतों की महक कुछ ऐसी होती है जैसे किसी पुराने खत से आती हुई खुशबू, जो बीते पलों को फिर से जीवंत कर देती है। लेकिन संगीत की खूबसूरती यह है कि समय बदलता है, सुर बदलते हैं, अंदाज बदलते हैं, फिर भी दिल की भावनाएं वही की वही रहती है। पुराने दौर के गीतों में जहां इंतजार, प्यार और तड़प को सादगी से व्यक्त किया जाता था, वहीं आज के गीत उसी एहसास को नए संगीत और नए अंदाज में सामने लेकर आते हैं। संगीत बदला है, दौर बदला है, लेकिन प्यार का तरन्नुम, प्यार का एहसास आज भी उतना ही गहरा है। सुनिए और महसूस कीजिए दिल की इस प्यारी सी खूबसूरत सी पुकार को। फिल्म का नाम है राबता, अरिजीत सिंह की आवाज, अमित भट्टाचार्य का बोल

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला का प्रसारण 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। पुराने और नए फिल्मी तरानों पर केंद्रित कार्यक्रम झंकार चल रहा है। शेष भाग कार्यक्रम का एक अंतराल के बाद आप सुनेंगे।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
2: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प।
1: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला का प्रसारण 103.7।

0: मेगाहर्ट्ज पर।
1: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
2: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
1: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण बारहवीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
2: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
1: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
2: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
3: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: झंकार कार्यक्रम का यह अगला गाना फिल्म हिचकी से।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं।
2: अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी

0: हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में पीजी की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
1: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
2: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ। सुखू सरकार, स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार। सुखू सरकार, सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे थे कार्यक्रम जनकार। कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहे आकाशवाणी FM शिमला के साथ। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

0: अभी आप सुन रहे थे। साहित्य दर्पण श्रोताओं, साहित्य दर्पण के अंतर्गत आप सुनेंगे काव्य पाठ अंशुमन कुठियाला और वीरेंद्र शर्मा का।
1: नमस्कार, साहित्य दर्पण कार्यक्रम के आज के संग में आप सभी का स्वागत है। कभी पंछियों की उड़ान में, कभी तितलियों के रंग में, कभी बच्चों की मुस्कान में, कभी प्रकृति के अजूबों में, किसी माँ की ममता में, किसी असहाय के दर्द में, मन से निकली हूक में, शब्दों से पिरोई माला में रची बसी खुशबू कविता है। तो आइए आज सुनते हैं अंशुमन कुठियाला और वरेंद्र शर्मा से उनकी रचनाएं। तो आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं अंशुमन कुठियाला से उनकी रचनाएं।
2: नमस्कार, मेरा नाम अंशुमन कुठियाला है। आज मैं आप सभी के समक्ष अपनी पुस्तक शहर में शायर की शादी की सालगिरह से कुछ रचनाएं आपके समक्ष रखूंगा। पहली रचना है, ये कविता है, श्रुति की स्मृति। श्रुति की स्मृति में अब क्या लिखूं मैं, उसकी आकृति में अब क्या लिखूं मैं, क्या भूलूं याद करूं, क्या त्यागूं या वरूं, ऐसी विस्मृति में अब क्या लिखूं मैं। मन भर गया है और गला तर गया है, ऐसी मनोस्थिति में अब क्या लिखूं मैं। सपना वो टूट गया, अपना जो छूट गया, अथ कर ही इति में अब क्या लिखूं मैं। धर्म है तो कर्म है, अधर्म और विधर्म है, धारणा की धृति में अब क्या लिखूं मैं। याद कर भूल गया, भूल कर याद किया, निवारण निवृत्ति में अब क्या लिखूं मैं। अगली रचना है, काले हिरन। किसी शिकारी के शिकार होने वाले हिरन, हमें मिले जंगल में वही दो काले हिरन। अब इसमें शेर का है आखिर दोष कहाँ, उसके तो हैं मुंह के बस निवाले हिरन। ओ बिश्नोइयों, तुम भी बड़े अजीब हो, तुमने क्यों कर जंगलों में पाले हिरन। इससे पहले ये मरे किसी की गोली से, मेरी बोली से ही ऐ खुदा उठा ले हिरन। जो शख्स खा जाए एक जिंदा आदमी, क्या हैरत अगर वही खा ले हिरन। उस गोली को ही चढ़ा दो फांसी पर, जिस गोली ने चल के मार डाले हिरन। यहाँ आदमी मर जाए तो कोई नहीं पूछता, क्या हुआ जो मर गए दो साले हिरन। अगली रचना है, प्रिया। एक नई उमंग जगाने के लिए तुम आई हो मुझे उठाने के लिए, चीर दे जो कि सन्नाटा मन का, एक ऐसा गीत गुनगुनाने के लिए। भुजा हुआ था जो मेरे अंदर दिया, ओ प्रिया उसे जलाने के लिए, साथ देकर और अपना हाथ देकर, फिर झटके से उसे छुड़ाने के लिए। टूटा हुआ था कहीं छूटा हुआ था, बहुत शुक्रिया मुझे जुड़ाने के लिए। मरे हुए को जैसे फिर जिंदा कर दिया, थोड़ा हंसाया बहुत रुलाने के लिए। अभी तो आई मेरे जहन पे छाई थी, अब हो गई तैयार दूर जाने के लिए। इतना उड़ना इतना जुड़ना ठीक नहीं, थोड़ा झुको रुको ये बताने के लिए। अगली कविता है, बहन और भाई के ऊपर। साथ छूटे ना राखी और कलाई का, नाता ये टूटे ना बहना और भाई का, चावल टीके का मौली मीठे का, मान रख लेना तुम अक्षर ढाई का। ये शगुन सगुन जो दिया है तुमको, बचा के एक हिस्सा मेरी कमाई का, ये जो डोरी है यही कमजोरी है मेरी, ध्यान रहता है बस तेरी भलाई का। मेरी बहने तो हैं जैसे गहने हो मेरे, लाख शुक्राना है इस खुशनुमाई का। अब मैं अपने कुछ मुक्तक आपके साथ साझा करूंगा। मुझे बनाकर

पर फिर ढाने वाली, बहुत याद आती है जाने वाली। अब वो मुझसे बोलती भी नहीं, वो आवाजें बदल के गाने वाली, कहीं खो गई, देर तक सो गई, वो मुझे हर सुबह जगाने वाली, अब ख्वाब में ही मिलती है मुझे, थोड़ा हंसा के बड़ा रुलाने वाली। अगला मुक्तक है, ना प्रेम सधा ना ही वासना, अब किसकी करूं उपासना, एक तेरी ही तो आस थी, अब वो भी मुझे आस ना, एक दर्द था हमदर्द मेरा, अब वो भी मेरे पास ना, तेरा भी एक दिन आएगा, ऐ दिल तू हो उदास ना। अगला मुक्तक है, आप अपना अवशेष हूं मैं, एक अनभेजा संदेश हूं मैं, परेशान हूं अपने आप से, जैसे कि कष्ट कलेश हूं मैं, एक सवाल हूं बवाल हूं, द्रौपदी का खुला केश हूं मैं, न मुजरिम हूं ना ही गवाह, क्यों अदालत में पेश हूं मैं। अगला मुक्तक है, इतना सब कुछ हुआ और हम खामोश रहे, तलवार बेरोक चले जब कलम खामोश रहे, हमारा कत्ल हुआ तुम्हारे ही सामने, मगर तुम मेरे सनम क्यों एकदम खामोश रहे, कितने ही जन्मों तक ना चुकेगा हिसाब, अगर हम इस घड़ी इस जन्म खामोश रहे, जब देश खड़ा हो डूबने की कगार पर, तब मुनासिब नहीं दैरो हरम खामोश रहे। इसके बाद एक मैं नज़्म सुनाना चाहूँगा, खोए हुए कागजात। कागजात संभालना बड़ी मशक्क़त का काम है और इनका खो जाना भी एक मसला आम है। ऐसे ही एक कागज़ पर हमने कुछ लिखा देखा, जिसे चाह कर भी हम ना कर सके अनदेखा। लिखा था कि वालिद जो थे हमारे अब्बा, उनके कागजात का डब्बा खा गया एक बकरा समझकर मुरब्बा, और उस बकरे को भी एक दिन वो खा गए और अपनी आई पर इंतकाल फरमा गए। ये देखकर तो हम कल्पनाओं में खो गए और इस बारे में सोच सोच कर सो गए। अचानक हमारे सपने में वही बकरा आया, फरमाया कि मैंने कोई कागज नहीं खाया। हमने कहा, नामाकूल बकर, कागज तू गया चर, अब रहा है मुकर, तू बकरा है या नर, दे उत्तर। इस पर उसने दुहाई दी और ये सफाई दी कि वो खाता है घास और मालिक की मार पर है वफादार। हमने कहा, अच्छा तो फिर बता, वो कागज है कहाँ? इस पर उसने मारी ये डींग, वैसे पुराने कागजात भी अजायब हो जाते हैं। इसके बाद कुछ गजलें मैं आपके साथ सुनाना चाहूँगा। पहली गजल है, इंतजार में चांद के जागते तारे रह गए, इंतजार में चांद के जागते तारे रह गए, जाल सभी ने बिछाया मछली पकड़ने को, पर खाली हाथ ही कुछ मछुआरे रह गए, एक तुम हो जो हुए नहीं कभी किसी के, और एक हम हैं जो होके तुम्हारे रह गए। कॉलेज के आखिरी दिन मैं सोच रहा हूँ कि किन दोस्तों पे मेरे पैसे उधारे रह गए, हमने पूरी कोशिश की मिठास लाने की, पर वो समंदर थे खारे के खारे रह गए, जो मिट्टी की पुकार सुनकर भी ना आए, न जाने कहाँ वो माँ के दुलारे रह गए, इंसानियत के सब दरवाजे बंद हो गए और खुले मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे रह गए। अगली जो गजल है, अब मोहब्बत का किसी पे असर नहीं रहा, वो मिट्टी के घर बनाने का हुनर नहीं रहा, अब क्यों ढूंढे हम वो हम सफर वो हम नवा, जब पहले जैसा वो सुहाना सफर नहीं रहा, अब खरीदना चाहते हैं लोग हर चीज को, जमीर बिकने का किसी को डर नहीं रहा, ये दुनिया मुनासिब नहीं आशिकी के लिए, अब लोगों के पास यहाँ जिगर नहीं रहा, अब कौन इसे उठाएगा जुल्म के खिलाफ, जब किसी के पास अपना सर नहीं रहा, बाप भी लगे भागने अपनी जिम्मेदारी से, बेटों के लहजे में भी अब आदर नहीं रहा। अगली गजल है, झूठ सच को दबाने लगे ये तो हद है, झूठ सच ही कहने लगे ये तो हद है, मजहब थे खुदा को पास लाने के लिए, मजहबी दूरी बढ़ाने लगे ये तो हद है, हमें तो उम्मीद थी राहत की तुमसे, तुम ही दिल दुखाने लगे ये तो हद है, हमें लगा था कि बांटोगे तुम दर्द अपना, तुम तो लतीफे सुनाने लगे ये तो हद है, आदमी रोटी खाए ये समझ आता है, आदमी कोयला खाने लगे ये तो हद है, आपने कहा कि आप गरीबी हटाओगे, आप गरीबों को हटाने लगे ये तो हद है। अगली गजल, हकीकत कुछ और है मंजर, असल में सहरा से प्यासा है समंदर, यूं तो सारी दुनिया से जीत गया था, पर खुद से तो हार गया था सिकंदर, और कुछ नहीं तो जख्म ही कुरेद देगा, आखिर कुछ तो कर जाएगा ये बवंडर, इंसाफ अदालत में भला कैसे हो सकेगा, जहां गवाही देंगे बापू के वही तीन बंदर, तुम्हारी बादशाहत हो तुम्हें ही मुबारक, अपने हाल में बड़े मस्त हैं हम कलंदर, पूरी तरह मुझ में से रुखसत नहीं हुई, अभी भी तुम कहीं बाकी हो मेरे अंदर। अगली गजल पेश कर रहा हूँ, लोग मिलते हैं फिर छोड़कर जाते हैं मुझे, अकेला देखकर ही तो सब चिढ़ाते हैं मुझे, तुझे खोना ना होना तेरा पहचान है मेरी, लोग

तेरे ही नाम से अब बुलाते हैं मुझे, तेरा जाना सिर्फ जाना नहीं जाने जाना, ये जान जान के ही तो सब सताते हैं मुझे। वो किस्से हिस्से ताल्लुक के टूटे हुए, जुड़ जुड़ के मुड़ मुड़ के ढाते हैं मुझे। गिरता हूँ घिरता हूँ तेरी याद के साए में, ये गीत बनकर मीत फिर उठाते हैं मुझे। मैं हूँ वो लाल दी जाए जिसकी मिसाल, ये लोग खास मौक़ों पर भुनाते हैं मुझे। पहुँचते हैं जहाँ आशिक मर के बिखर के उस मुकाम पर खड़ा अड़ा पाते हैं मुझे। अगली गज़ल पेश कर रहा हूँ कि तुम्हारे लिए जो उजाले दिन थे, मेरे लिए वो बहुत काले दिन थे, जो ख़त्म होने का नाम ना लेते, मैंने किस तरह निकाले दिन थे। एक पैर निकलता दूसरा फंसता, जैसे कि मकड़ी के जाले दिन थे। एक दिन अकेले मुझे घेर लिया, मैंने बहुत दिनों से टाले दिन थे। रात की मांग से लाया निकाल, किसी भूखे मुंह के निवाले दिन थे। हाथ बढ़ाकर दबोच लिया मैंने, किसी ने हवा में उछाले दिन थे। आखिर वो दिन भी आ ही गया, मैंने जिसके लिए पाले दिन थे। अगली गज़ल सुना रहा हूँ कि मुसाफिर हूँ यारों बहुत चलना है मुझे, आराम मयस्सर एक पलना है मुझे। बोए हैं संजोए हैं कुछ सपने और यादें, उन बीजों की तरह ही फलना है मुझे। धूप में मचकर चले हम साए में बचकर, पर शाम में रचकर नहीं ढलना है मुझे। राह को हमराह किया पर ना आह किया, खुद को आगाह किया संभलना है मुझे। सफ़र से क्या मिला इसका ना हमें गिला, ख़त्म कर ये सिलसिला निकलना है मुझे। कि कोई बरसाती झरना जैसे फूटता है, तुझे याद कर कुछ मुझ में टूटता है। दिल का हाल तो ऐसा है जैसे कि सिलबट्टे में कोई मसाले कूटता है। उजाले का ही किया होता लिहाज, सिखर दोपहर कोई ऐसे लूटता है। मनाऊं तुझे मनाने जश्न बर्बादी का, क्या ना मानने को भी कोई रूठता है। ये कौन है जो मेरे दिल की जमी पर जवाब बोता है और सवाल पूटता है। अगली गज़ल सुना रहा हूँ कि जो ना चार दिन की जिंदगी में अक्षर ढाई लेके पल रहे हैं जल रहे हैं हम पीड़ पराई लेके। यार मिले तो फिर कुछ बात बने, वरना ए खुदा क्या मिलेगा मुझे ये खुदाई लेके। ये रोग जो बढ़ता है जोग से संजोग से, ठीक होगा ना जाने कौन सी दवाई लेके। इस आशिक को अपनी पनाह में ही रखो, वरना पगला जाएगा कैद से रिहाई लेके। ये आलम दर्द मौसम सर्द कट जाएगा, सो जाओ अपने गम की ही रजाई लेके। मैं अकेला होकर भी आखिर अकेला नहीं, हर जगह जाता हूँ साथ में तन्हाई लेके। झूठा तेरा वादा पर सच्चा मेरा इरादा, थोड़ी अच्छाई दे दूँ तुझसे कुछ बुराई लेके। मैं रात भर बैठा रहा सुबह के इंतजार में, और वो उठ के चल दी एक अंगड़ाई लेके। अगली गज़ल सुना रहा हूँ। दिए जीवन की गाड़ी ने कई झटके, पर बैठे रहे हम भी किसी तरह सट के। जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर आधे हो गए हम तो घट घट के। दूर जाने वाले फिर पास आते गए, तार दिल के जुड़ गए फिर कट के। जिंदगी में बस दो ही सिलसिले रहे, आसमां से गिरे और खजूर में अटके। कभी हर शख्स बोलता था मेरी जबां, आज बैठा हूं मैं खुद में ही सिमट के। मैंने किताब में तेरा सफा पलटा नहीं, और तूने देखा नहीं मुझको पलट के। अभी कुछ और काम निपटाने दे मुझे, फिर निपटा दूंगा मैं तुझको निपट के। अभी कुछ और मसले सुलझाने हैं मुझे, पेच खोलूंगा मैं कभी और तेरी लट के। आज हम भी कूदते फिरते हैं वैसे ही, जैसे देखा करते थे तमाशे हम नट के। मेरी स्मृति पटल पर है अंकित अटल, मुकाबला करूंगा मैं भी पूरा डट के। आंख का तारा जो कभी था हमारा, आज वही शख्स ही नजरों में खटके। अगली गजल पेश कर रहा हूँ। मुझसे व्याई तेरी परछाई, ये विरे वेदना है, जैसे एक अजय किला है जो मुझे भेदना है। ये जहन है रहन जैसे कि तेरी ही मुट्ठी में, काम इसका तो बस मेरे जख्म कुरेदना है। सांस का अलाव है दबाव बड़ा इस कदर, निकासी के लिए कोई द्वार कोई छेद ना है। मेरा दिल तोड़ा है मुझे तन्हा छोड़ा है तूने, और इसका तुझे अफसोस कोई खेद ना है। सूनी राह है और स्याह है ये सुबह ऐसी, कोरा कागज भी लगता जैसे सफेद ना है। हसी शाम है जाम है और कोई काम नहीं, मयस्सर अरुण तो है पर साथ वेदना है। ये मेरे अभिन्न मित्र अरुण कुमार गौतम, जो खुद एक कवि हैं, और वेद प्रकाश सिंह जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें समर्पित है। अगली रचना सुना रहा हूँ कि दिल की सुन ली आंख बंद करके कर दी

0: गलती तुझको पसंद करके, खेल था मेल था कुछ दिन का, फिर बिछड़ गए बातें चंद करके। अब तो बेआवाज सा हो गया वो जो दहाड़ता था लहजा बुलंद करके। मैंने कोशिश की कि रोऊं सुर में, तभी पीड़ा को गाया छंद करके। अपने मन के जीते ही जीत है, मिलती है खुद से द्वंद करके। भाव थे, शब्द थे, स्वर थे मेरे, वो ले गया तुझे रजामंद करके। अगली गजल सुना रहा हूं। अव्वल तो उनसे मुलाकात नहीं होती, अगर हो भी जाए तो कोई बात नहीं होती। उन्हें देख लिया, सेक लिया ये भीगा बदन, किसी और की दीद से ये करामात नहीं होती। दिल रोता है, चुभोता है कोई तीर सीने में, है सबके साथ वो जो मेरे साथ नहीं होती। ना चढ़ता है सूरज, ना चहकती है चिड़ियां, ऐसा नहीं कि तेरे बिना प्रभात नहीं होती। मुंह खोलते हैं, घोलते जहर फिजाओं में, बड़ा बोलते हैं जिनकी औकात नहीं होती। दिल उदास ना हो, हाथ में गिलास ना हो, मैं बहकूं ना जब तक निजात नहीं होती। और अगली गजल सुना रहा हूँ। मेरा जिंदा रहना जरूरी कर दे, ये अधूरी सांसें पूरी कर दे, जा इस बात की मशहूरी कर दे। तप रहा हूँ मैं दिल्ली की गर्मी में, तू आके मौसम को मसूरी कर दे। जुदाई का तोड़ खुदाई में नहीं, है कोई नहीं जो दूर ये दूरी कर दे। अंतिम गजल है, इसके बाद अपने वाणी को विराम दूंगा। कि दिल की बात जुबा पे लाके कर दी, एक गलती मैंने तुझे चाह के कर दी। काश मैं रोकता उठते अरमा, भूल मैंने चिंगारी सुलगा के कर दी। तूने ये किया, ये दे दिया एक दर्द नया, मैंने कसर पूरी मौका भुना के कर दी। मैं सोचता था खोजता तुझे खुद में, तूने बात पूरी ख्वाब में आके कर दी। इस जुदाई से ही तो जुड़ाव है मेरा, तूने ये प्रीत पक्की दूर जाके कर दी। मैं चुप था, घुप था, अंधेरा दिल का, मैंने हिमाकत दिया जला के कर दी। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे अंशुमन कुठियाला से उनकी रचनाएं। तो आइए अब सुनते हैं वरेंद्र शर्मा से उनकी रचनाएं।
2: मेरी कविता का शीर्षक है पहाड़ पर खुश्क ठंड। धीरे धीरे पसर गई ठंड पहाड़ की रगों में, सरसर बहती हवा भी उसके साथ हो गई। ठिठुरन में कंप कंपाते पेड़ों ने कह दिया अलविदा पत्तों को, सूरज ने जल्दी छुट्टी ले ली। बहने लगी नाक पहाड़ की, शर्मशार पहाड़ नाक छुपाता छुप रहा खुद के आगोश में। पानी जमने लगा, कुरकुरी बर्फ बन भूल बैठा रहा अपनी। पहाड़ के जंगल की सूखी लकड़ियां तलाशती माचिस की तिली, ताकि जल सके पहाड़ को गर्मी दे सके। दूर सुदूर में ठहर गए बादल, इंसान रोज पुकारता बादलों को, पहाड़ के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए। उसे पहाड़ से कभी सरोकार नहीं था, उसे क्या मतलब पहाड़ की ठिठुरन से। लेकिन बादल भी ढीठ हैं, वो भी इंसान के रंग में रंग गए हैं। उनको भी पता है कि जब पहाड़ से टकराएंगे तो बरस जाएंगे। खोना नहीं चाहते वजूद अपना वो भी, उन्हें क्या पता कि पहाड़ हैं तो ही है वजूद बादल का और इंसान का भी, अगर पहाड़ नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरी अगली कविता का शीर्षक है शहर छोड़ जा चुका है कौवा। आज घर की छत पर साल बाद आए कौवे ने चौंका दिया, मुझे लगा कि किसी के आने की अग्रिम सूचना लाया होगा। फिर याद आया कि अब आने जाने की प्रथा तो लुप्त हो चुकी है, चूंकि पितृपक्ष तो जा चुका है और पितृपक्ष की सारी रोटी तो शहर के बंदर खा गए हैं, तो सोचा कि ये किस लिए आया होगा। कुछ ही देर में इंसान के फेंके दानों को चुगते कबूतर उड़ने लगे और कौवे के पीछे हो लिए। तब याद आया पिछले साल आया था तो गोरैया और मैना को ले गया था, अब कबूतर ही तो बचे थे, वो भी शहर छोड़ने लगे। मेरी अगली कविता का शीर्षक है विचार कहे अनकहे। उठती है कुछ संकल्पनाएं कभी कभी दिल में और कभी कभी दिमाग में, फिर तैर कर पहुंच जाती हैं जुबान पर, दब जाती हैं तरंगे रसिका पर ऊपर नीचे, वाणी पर दबे दबे चुपचाप निकलती हैं तरंगे आंखों से, होंठ बुदबुदाते कुछ बातें, कुछ दांत चबा जाते और फिर जीभ घूंट घूंट पी जाती, पेट में दफन हो जाते कुछ एहसास कहे कुछ अनकहे। मेरी अगली कविता का शीर्षक है पुरानी किताबें।

कहानी किताबों की एक अलग दुनिया होती है, उसमें छपी रहती है समय की धूल, बदलते वक्त का पीलापन, उदासी की उमस, प्रेम के सूखे फूल, सिल्वर फिश का जीता जागता संसार। पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते रहते हैं इनके मालिक, इनकी अलमारी, इनके घर। पुरानी किताबों में रहते हैं लेखकों के अनवरत प्रयास, पाठकों की अनव्यक्त मानसिक प्रतिक्रिया, किताबों की साल दर साल बढ़ती उम्र। पुरानी किताबों की होती है एक भयानक मौत, जब वे बेची जाती हैं कबाड़ी को और सरे बाजार नोची जाती हैं पन्ना दर पन्ना। मेरी अगली कविता का शीर्षक है रास्ता कहाँ जाता है। रास्ता कहाँ जाता है अक्सर पूछते हैं लोग, रास्ते कहीं नहीं जाते, लोगों को ही जाना पड़ता है। मंजिलें तय करनी हो तो रास्ता ढूंढना पड़ता है, जबकि रास्ता तो हमेशा से ही वहाँ था, फिर भी रास्ता ढूंढना पड़ता है। कुछ रास्ते मंजिलों से पहले ही बंद हो जाते हैं, फिर भी मंजिल पानी हो तो रास्ते बनाने पड़ते हैं। रास्तों की कोई सीमा नहीं होती, पगडंडी भी रास्ता है और हाईवे भी। कुछ रास्ते दिखाई नहीं देते, फिर भी वो रास्ते होते हैं, जैसे हवाई रास्ता, समुद्र का रास्ता। इसलिए रास्ते कहीं नहीं जाते, केवल इंसान ही जाता है, रास्ता कहीं नहीं जाता। मेरी अगली कविता का शीर्षक है जंगल की आग। बुझ गई जंगल की आग पहले बारिश के आने से, धधक रही थी जो महीनों से जंगलों में, निगल गई ये आग सब कुछ। हरे भरे पेड़ पौधे, गीत गाते पशु पक्षी, रेंगते कीड़े मकोड़े, उन्मुक्त उड़ते कीट पतंगे, तड़ तड़ जलते रहे चीड़, देवदार बुरांस और बांझ के पेड़, और अब अधमरे घायल डरे डरे से, काले अधजले ठूंठ से खड़े हैं खुद से शर्मसार। कोई नहीं जानता किसने सुलगाई चिंगारी दबे पांव, किसने माचिस जलाई, किसने हवा दी आग को। आग छिपी रहती है माचिस की तिली में या जगमग पत्थरों के दिल में। आग का कोई अस्तित्व नहीं होता, जब तक हाथ ना हो इंसान का तो आग तांडव फैला नहीं सकती। क्या फर्क पड़ता है इंसान को, जब तक आग नहीं घेर लेती उसका घर, उसके खेत खलियान या उसके परिवार के सदस्यों को। जंगल जीवंत है, पशु पक्षी उसकी आ जला देगी इंसान को, बस एक उम्र चाहिए असर होने तक। मेरी अगली कविता का शीर्षक है घुट घुट मरता शहर। बिखरी हुई बोतलें, टूटा हुआ कांच, चिप्स कुरकुरे के खाली रह, शहर की दुर्दशा बयान कर रहे हैं। धीरे से सरकता ट्रैफिक, चटकती धूप का कहर, पीने के पानी की किल्लत, पार्किंग का खचाखच भरना, शहर की दुर्दशा बयान कर रहा है। मर रहा है शहर, मर रहा है शहर, और तुम पसर गए हो इसके सीने पर। मर रहा है शहर और तुम पसर गए हो इसके सीने पर, दम घुट जाएगा इसका, दम घुट जाएगा इसका, और तुम आते रहना और बिखराते रहना कांच की बोतलें, चिप्स के रैपर, कार का गंदा धुआं, और हम मौन देखते रहेंगे घुट घुट मरते शहर को। मेरी अगली कविता का शीर्षक है रिश्ते। मिलते रहो बातचीत करते रहो, मिलते रहो बातचीत करते रहो, तो जवान रहते हैं रिश्ते, अन्यथा धीरे धीरे टूटने लगते हैं रिश्ते। रिश्ते मरते नहीं, रिश्ते मरते नहीं, दबे रहते हैं दिलो दिमाग की किसी अंधेरी कोठरी में। रिश्ते मरते नहीं, दबे रहते हैं दिलो दिमाग की किसी अंधेरी कोठरी में, जैसे शीत में दफन रहती है पेड़ों की जड़ें, और पेड़ अकड़े रहते हैं ठूंठ से। रिश्तों में भी ऐसे ही तनाव के चलते पनप नहीं पाते रिश्ते, जब जब छटते हैं अहम के बादल तो नई नवेली दुल्हन से खिल उठते हैं रिश्ते। मेरी अगली कविता का शीर्षक है परिवर्तन। कुछ परिवर्तन दर्द भरे होते हैं परंतु आवश्यक होते हैं, कुछ परिवर्तन दर्द भरे होते हैं परंतु आवश्यक होते हैं, जैसे सृष्टि में नवजात का आना और पृथ्वी से बूढ़े इंसान का चले जाना। कितने दर्द सहकर तितली तितली बन पाती है, लार्वा दर्द के जाले बुनता है, तब कहीं जाकर रेशम बनता है। तपाए जाने के बाद ही सोना कुंदन होता है, और तराशने के बाद पत्थर हीरा। वस्तुतः दर्द ना हो तो परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन तो संसार का नियम है, निश्चित है, तभी तो हर आवश्यक परिवर्तन दर्द भरा होता है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है नारी मन। पल पल संजोता

अपने रंग बिरंगी धागों से बुनता गरम स्वेटर, ताकि मन के किसी कोने में रख सके गरम। गुड्डे गुड़ियों में देखता भविष्य, नित झाड़ू पोंछा लगाता, ताकि उड़ा सके सपनों की धूल। झटक झटक कर पानी खंगालता कपड़ों संग, ताकि रख सके उजला। सजाता बिंदी सुर्खी काजल और आभूषणों से, और फिर एक दिन खुद ओढ़ता ओढ़नी, और फिर पिता के घर की देहरी को सौंप कर चल देता नए सपनों की खोज में। मेरी अगली कविता का शीर्षक है सरसराहट हवा की। ए हवा अल सुबह से घूम रही हो, सर सर साएं साएं इधर से उधर, सहमे सहमे बादल भी डरे डरे घूमते फिर रहे इधर उधर। देवदारों की फैली शाखाएं झूलती डोलती, चटक चटक कर टूटती बिखरती गिर जाती। हवा के रक्त के बेलगाम घोड़े सर पर तोड़ते, उखाड़ फेंकने को आतुर। घरों की छतें खिड़की और दरवाजे, लोहे के बिजली के खंभे, खेतों की लहलाती फसल। कौन हो तुम, कौन हो तुम, कहाँ जाना है तुम्हें, कोई नहीं जानता। किसने भेजा तुम्हें पूरब से पश्चिम से। चलते रहना तुम, चलते रहना तुम धीरे धीरे, तूफान न बनना। तूफान बन तुम मिट जाओगी, चलती रहोगी तो धीरे धीरे महाप्राण कहलाओगी। मेरी अगली कविता का शीर्षक है नए ख्वाब। बुनता हूँ कुछ नए ख्वाब, पुराने टूटे ख्वाबों की टूटी नींव पर, कभी ना पूरे होने वाले ख्वाब। ख्वाब रेत की ढेर से होते हैं, ख्वाब रेत की ढेर से होते हैं, कभी भी टूट जाते हैं, बस यादों में बसते हैं। कुछ कहे कुछ अनकहे, केवल यादों में ही बसते हैं टूटे बिखरे ख्वाब। मेरी अगली कविता का शीर्षक है प्रकृति प्रेमी। उसने काट दिए पेड़ अपने आंगन के, उसने काट दिए पेड़ अपने आंगन के और खरीद लिए कुछ गमले, उसने काट दिए पेड़ अपनी आंगन के और खरीद लिए कुछ गमले, अब वो गमलों में पौधे लगाएगा, वह प्रकृति प्रेमी बन गया है। उसने उजाड़ दिए घरौंदे परिंदों के जंगल में, उसने उजाड़ दिए घरौंदे परिंदों के जंगल में और बना दिए आलीशान बंगले, बंगलों में लगा दिए लकड़ी और प्लास्टिक के कृत्रिम घोंसले, वो पक्षी प्रेमी बन गया है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है दूसरी आवाज। अक्सर हर किसी के मन में छिपी रहती है दूसरी आवाज, अक्सर हर किसी के मन में छिपी रहती है दूसरी आवाज। डरी सहमी बंद तहखानों में निकल नहीं पाती, वह भी जानती है कि अगर निकल गई तो अस्तित्वहीन हो जाएगा वो व्यक्ति, मगर जब खुद से बात करती है तो द्वंद की लहरों में डूबती खुद का बचाव करती नजर आती है, और फिर खुद ही मन के तहखाने में डरी सहमी बंद हो जाती। मेरी अगली कविता का शीर्षक है मेरी जीवन यात्रा। उतर आई है सांझ फिर से, सूरज भी कुछ लाल है, उतर आई है सांझ फिर से, सूरज भी कुछ लाल है, लौट रहे पंछी नीड़ों में दिन भर की थकान लिए। याद है तुम्हें कुछ, जब तुमने भरी उड़ान जीवन की, मंजिल पाने को सहलाए थे पंख, कोमल कभी धूप कभी बारिश ने नित उठाए बोझ सभी। साथी संगी कितने ही मिले इस यात्रा में, साथी संगी कितने ही मिले इस यात्रा में, शायद छूट जाएंगे आज पीछे सभी। खुश होकर तो कभी झुंझला कर, कभी ढूंढे हल प्रश्नों के सही, निरंतर बहते बहते जीवन नदी में आ जा पहुंचे हो मंजिल पर। मुड़ पीछे देखो, मुड़ पीछे देखो तो उभर रहे प्रतिबिंब जीवंत जीवन के, चलचित्र से यादों के साए बन जाएंगे कल, जीवन भर गुदगुदाएंगे तुम्हें। याद रखना कुछ ही देर में उभर आएगा चांद शरद का, याद रखना कुछ ही देर में उभर आएगा चांद शरद का, रात भर उड़ेगा चादर चांदी की और फिर नया सवेर आएगा, कल फिर उठोगे सपना एक नया लिए। मेरी अगली कविता का शीर्षक है कैद में है जल। कैद में है जल पानी प्लास्टिक की बंद बोतलों में, कैद में है जल पानी प्लास्टिक की बंद बोतलों में, साधारण नहीं सील बंद, कुछ छोटी कुछ बड़ी और कुछ बहुत बड़ी, कुछ छोटी कुछ बड़ी और कुछ बहुत बड़ी। गुजर चुका है मशीन की तंग नालियों से, बन गया है साफ सुथरा पीने लायक। कभी बहता था उन्मुक्त अल्लड़ नदी नालों और नहरों में, कभी गंदा होता भी दूर तक बहकर फिर शुद्ध हो जाता। किसने कैद किया इसे, किसने कैद किया इसे, शायद उसने जिसने इसके घर में डाल दी गंदगी अपने घरों की बंदी।

0: बना ये जल बन गया है बेहद कीमती, बंदी बना ये जल बन गया है बेहद कीमती, और विडंबना ये कि जिसने किया है इसे गंदा वो चुका रहा है कीमत बंद बोतलों में जल की। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे वरेंद्र शर्मा से उनकी रचनाएं। इसी के साथ साहित्य दर्पण कार्यक्रम का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। आगे लेते हैं, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साहित्य दर्पण। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे जिन्हें आप आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला, DTH सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरदर शाखा के बीच शुरू की गई है। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मंत्रालय ने बताया कि मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित रेहरदर शाखा तक पहुंचने में वर्तमान में 2 घंटे से अधिक समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। आयुष मंत्रालय ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयोजित कार्यक्रमों के तहत वैश्विक ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया। 130 से अधिक देशों ने इस कार्यक्रम में भागीदारी की। इस आयोजन का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर यूट्यूब लाइव योग स्ट्रीम पर सर्वाधिक दर्शकों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। आज विश्व रक्तदान दिवस है। ये दिन अमूल्य मानव जीवन बचाने और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने में रक्तदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। इस वर्ष की थीम है मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें जीवन बचाएं। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने विश्व रक्तदान दिवस पर देशवासियों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्त की एक एक बूंद किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को नया जीवन दे सकती है और किसी परिवार में फिर से खुशी ला सकती है। उन्होंने लोगों से मानव जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आग्रह किया। आपदा प्रबंधन की तैयारियों का आकलन करने के लिए प्रदेश में कल मेगा मॉकड्रिल का आयोजन किया जाएगा। कांगड़ा के उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि अभ्यास के माध्यम से आपदा से निपटने की तैयारियों में मौजूद कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वहीं लाहौल स्पीति जिला प्रशासन और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कल आयोजित होने वाले मॉकड्रिल के सभी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
1: लाहौल स्पीति जिला प्रशासन और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 15 जून को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बहु आपदा मॉक ड्रिल आयोजित करेगा। उपायुक्त किरण भ्राना ने बताया कि सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक विभिन्न काल्पनिक आपदा परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों का अभ्यास किया जाएगा। मॉक ड्रिल के तहत सिसु में ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड, चाकसनाला में भूस्खलन, जहलमा नाला में फ्लैश फ्लड, उदयपुर और काजा में भूकंप तथा व्हीलिंग वन क्षेत्र में रात्रिकालीन वनाग्नि से निपटने की तैयारियों का परीक्षण किया जाएगा। इसमें पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन होमगार्ड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय समुदाय की भागीदारी रहेगी। उपायुक्त किरण बढ़ाना ने लोगों से अपील की है कि मॉकड्रिल के दौरान सायरन, एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन गतिविधियों को देखकर घबराए नहीं और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दे। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: भगवान शिव के पवित्र धाम किन्नौर कैलाश की वार्षिक यात्रा इस वर्ष 1 जुलाई से 30 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। समुद्र तल से लगभग 6050 मीटर यानी 19850 फुट की ऊंचाई पर स्थित किन्नौर कैलाश शिवलिंग देश के प्रमुख धार्मिक व साहसिक तीर्थ स्थलों में से एक है। ये यात्रा भगवान शिव के प्रति आस्था का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें देश विदेश के हजारों श्रद्धालु कठिन पर्वतीय मार्ग पार कर पवित्र शिवलिंग के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर।

0: जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: समुद्र तल से लगभग 6,050 मीटर यानी 19,850 फीट की ऊंचाई पर स्थित किन्नौर कैलाश शिवलिंग देश के प्रमुख धार्मिक एवं साहसिक तीर्थों में से एक है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन अधिकतम 376 यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति दी जाए। प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिए। इस यात्रा से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और जिले में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आकाशवाणी के
0: आईसीसी महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंगम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। टूर्नामेंट के मैच इंग्लैंड और वेल्स में खेले जा रहे हैं। फाइनल मैच अगले महीने की 5 तारीख को लॉर्ड्स में होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन है आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। मैं नितिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और हमेशा की तरह हमारे प्रोग्राम्स इंजॉय कर रहे हैं। ग्यारह बजकर 5 मिनट हुए हैं और ये वक्त रहता है कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। पुरानी फिल्मों में हम सबसे पहले बात करेंगे ईयर 1976 में रिलीज हुई फिल्म लैला मजनू की। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं हरनाम सिंह रावेल। बतौर कलाकार इसमें नजर आए ऋषि कपूर, रंजीता और डैनी। फिल्म का संगीत जो है वो दिया है मदन मोहन ने और लिखा है जयदेव ने। इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो फिल्म है ना, ये फिल्म ऋषि कपूर की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्मों में से मानी जाती है, क्योंकि इस फिल्म ने उन्हें रातों रात जो है वो शोहरत का मुकाम दिला दिया था, दिखा दिया था अगर हम यूँ कहें तो। क्योंकि उनकी जो पहली फिल्म थी जिससे उन्होंने डेब्यू किया था वो थी बॉबी, और बॉबी से जो है उनको कुछ खासा जो है नाम नहीं मिला, शोहरत नहीं मिली, लेकिन लैला मजनू ने तो उनके लिए सक्सेस के जो हैं वो दरवाजे खोल दिए थे। तो आप इंजॉय करेंगे फिल्म लैला मजनू का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

बावरा ने लिखे थे। इस फिल्म में बतौर कलाकार नजर आए ऋषि कपूर, नीतू सिंह और राकेश रोशन। इन कलाकारों ने फिल्म में जो भूमिका अदा की थी वो

ये गीत आपने सुना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में। आप सुन रहे हैं पुरानी फिल्मों से। इन्जॉय कीजिए ये गीत रूना लैला की आवाज़ में।

0: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
0: दो दीवाने शहर में।

0: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
0: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी, चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।

पुरानी फिल्मों में आपने इंजॉय किया फिल्म डॉन का गीत, ये 1978 में रिलीज़ हुई थी और फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर इसने धूम मचा दी थी। इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड्स भी इसने अपने नाम किए थे। 11:30 हुए हैं, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ट्यून इन हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। आप सुनेंगे पहाड़ी संगीत। पहाड़ी संगीत में सबसे पहले लीजिए पेश है सुभाष गुप्ता की आवाज़ में ये लोकगीत।

लोक संगीत में अगला लोकगीत आप सुनेंगे अनमोल की आवाज में। सुन रहे हैं FM शिमला, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। आप सुन रहे हैं पहाड़ी संगीत। लीजिए पेश है ये लोकगीत चंद्रलाल की आवाज़ में।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप ट्यून इन हैं FM शिमला के साथ। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों के स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। उन्हें रोजगार, श्रम, गरीबी और विकास से जुड़े विषयों पर 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में रांची के 2 और गढ़

0: जिले के दो लोग हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी है। कनाडा के वैंकूवर में फीफा विश्व कप में अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केरलम माहे ओडिशा तमिलनाडु पुदुचेरी और कारैकाल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Modi has arrived in Nice, France, on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his stay in France, he will join French President Emmanuel Macron in jointly inaugurating Bharat Innovates and hold bilateral talks with him on key areas of cooperation and global issues ahead of the upcoming G7 summit. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. At a community reception held at the iconic Hotel Negresco yesterday, a large gathering of the Indian diaspora accorded a warm and enthusiastic welcome to the Prime Minister. Prime Minister Narendra Modi has said that India has worked to make quality healthcare more affordable and accessible over the last 12 years. In a social media post, Mr. Modi said that the nation feels proud when it is known as the nation with the world's largest healthcare program, Ayushman Bharat, which provides top quality healthcare to the most vulnerable. He said that efforts like PM Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana have made medicines affordable. The Prime Minister said that prices of stents and knee implants have become affordable, and this has helped many people. Mr. Modi highlighted that medical education has become more accessible to people due more institutions and seats being available. The Prime Minister expressed hope that the government will keep building on this ground covered so far in order to build a healthy India. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari today said that India's healthcare sector has witnessed a transformative change over the past decade under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, with a strong focus on ensuring accessible and affordable healthcare for all citizens. In a social media post today, Mr. Gadkari said the government's flagship healthcare initiatives have significantly strengthened the country's health infrastructure and advanced the vision of a Swasth Bharat. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal also emphasized that India today leads several of the world's largest healthcare initiatives. In a social media post, Mr. Goyal highlighted how this transformation is rooted in a deeply compassionate thought that a medical emergency should never turn into a financial crisis for any family. Indian Space Research Organization ISRO Chairman V. Narayanan has informed that they've collaborated with the Department of Atomic Energy to develop an advanced artificial heating system that can protect lunar lander from the freezing weather of the moon. Addressing the CSIR RISE conclave in Bengaluru, the ISRO chief explained that Chandrayaan 3 lander Vikram, fueled by solar energy, operated only for 14 days on moon. ISRO will now work

शुभ वाणी लाभ वाणी जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी। माटी की महक है जहां, खेतों खलियानों की वही आवाज घाटियों में गूंजती है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। FM

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। 12:10 हुए हैं, आप इन्जॉय करेंगे म्यूज़िक, म्यूज़िकल गीत जो कि हम आपके लिए लेकर आए हैं। और आपको क्या करना है, आपको बस इसी तरह हमारे साथ बने रहना है। ये जो गीत है वो आप इन्जॉय करेंगे मोहित चौहान की आवाज़ में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: स्वागत है, अभिनंदन है आज के कार्यक्रम महिला सम्मेलन में। आज के इस सफर में मैं हूँ हर्षा शर्मा
1: और मैं हूँ साक्षी शर्मा।
0: आप सभी को हमारा
1: नमस्कार।
0: मैंने जीवन एक नदी की तरह है, नदी हमेशा चलती रहती है, कभी तेज तो कभी धीमी। ये सुख दुख के पहाड़ों से रास्ता बनाती है और हर परिस्थिति का सामना करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ती है।
1: बिल्कुल।
0: और अगर हम जीवन के साथ बहना सीख लेते हैं तो हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। जिस प्रकार नदी के जल को स्वच्छ रहने के लिए उसका बहना ज़रूरी है ना, ठीक उसी प्रकार बेहतरीन जीवन के लिए परिवर्तन भी ज़रूरी है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और कभी कभी हमारे जीवन में जो मुश्किलें आती हैं, अगर हम उन मुश्किलों से लड़ते ही रहते हैं ना, तो हम थक जाते हैं।
0: जी जी बिल्कुल।
1: मतलब एक पड़ाव पे आके हमें लगता है कि बस अब बहुत हो गया, हमें इनसे नहीं लड़ना है। परंतु अगर हम उन्हें समझकर आगे बढ़ते हैं तो हम और मजबूत बनते हैं, और जो हमारा जिसे बोलते हैं एक्सपीरियंस, वो बढ़ता है जो हमारा जो मुश्किलों के साथ लड़ने का है।
0: जी बिल्कुल। जीवन के साथ बहने का मतलब है हर परिस्थिति को स्वीकार करना। अच्छा समय आए तो खुश रहना, और अगर बुरा समय आए ना तो धैर्य रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, साक्षी, है ना। और हर अनुभव में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। ये नहीं कि हमें दुख ही मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हम कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं।
1: बिल्कुल सही बात। परंतु परेशानी ये हो जाती है कि लोगों को दिन तो अच्छा लगता है, पर जब रात आने लगती है तो उनको लगता है कि ये दिन ख़त्म ही नहीं होना चाहिए।
0: जी जी
1: परंतु जैसा कि प्रकृति का नियम है कि अगर दिन है तो रात भी आएगी, वैसे जब अच्छी परिस्थितियाँ आई हैं तो कई कभी बुरी परिस्थितियाँ भी आएगी। तो ऐसे में जैसे कि आपने कहा कि बहना बहुत ज़रूरी है, तो हमें भी जो हमारे जीवन है उसमें नदी की तरह बहते जाना है। जब खुशियाँ आए तो खुशियों को ले लो, जब गम आए तो गम को साथ ले लो, परंतु जीवन में निरंतर आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है।
0: जी बिल्कुल। हम जीवन को आसान तरीके से जीते हैं तो हमारा मन शांत रहता है। हर छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढ लेते हैं हम।
1: जी
0: इसलिए हमें हमेशा जीवन के साथ बहना सीखना चाहिए, क्योंकि यही हमें सच्ची खुशी और समझ देता है।
1: बिल्कुल।
0: हमने पहले भी कहा कि जीवन एक बहती हुई नदी के समान है, तो जीवन के साथ बहना सीखने का अर्थ है परिस्थितियों को स्वीकार करना, उससे सीखना और आगे बढ़ते रहना।
1: बिल्कुल। और सबसे पहले जीवन हमें धैर्य रखना सिखाता है।
0: जी जी
1: जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं ना, तो हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, मतलब बिल्कुल निराशा हमारे सामने आ जाती है। लेकिन समय के साथ हमें ये समझ में आता है कि हर कठिनाई एक सीख लेकर आती है और हर समस्या का एक समाधान अवश्य होता है।
0: जी कहते हैं ना कि सभी दरवाजे बंद नहीं होते हैं, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो बहुत से दरवाजे हमें खुले नज़र आते हैं।
1: जी
0: और जैसे नदी अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करके आगे बढ़ती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करना ज़रूरी होता है। यदि हम रुक जाएँ और हम ठहर जाएँ कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, या हार मान लें, तो हम आगे तो बढ़ ही नहीं सकते।
1: बिल्कुल सही बात आपने कही। और इसके साथ ही दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, हम भी स्थायी नहीं है, कोई भी स्थायी नहीं है, कोई परिस्थिति भी स्थायी नहीं है। समय के साथ हर चीज़ बदलती रहती है, तो जो व्यक्ति बदलाव से डरता है वो कहीं ना कहीं पीछे रह ही जाता है। लेकिन जो व्यक्ति बदलाव को अपनाता है वो हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेता है और आगे बढ़ता है।
0: जी बिल्कुल। हम हमेशा ये सोचते हैं

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर. आप ट्यून इन हैं FM शिमला के साथ. कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें.

0: नहीं रहेंगी हमेशा, तो हमें जीवन एक समय के बाद बोर करने लग पड़ेगा। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि कुछ उतार चढ़ाव आएंगे तभी हमें पता चलेगा, यदि बुरा वक्त आएगा तभी अच्छे वक्त क्या हमें जो कदर होगी तभी हमें पता चलेगा कि ये अच्छा वक्त है। कभी बुरा वक्त आएगा ही नहीं तो अच्छे वक्त की कदर भी कहाँ कर पाएंगे हम।
1: जी बिल्कुल, वैसे ही जीवन में हमें

0: भाव है उसे खत्म कर देता है।
1: जी, क्योंकि हम समझते हैं कि अकेले आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, एक समय
0: जी
1: में हमें ऐसा लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है ना,
0: जी
1: लेकिन जब मुश्किलें साथ में आती हैं और हमारे मित्र, जैसे तुमने कहा, आपने कहा, और हमारे जो परिवार वाले हैं, है ना, और समाज है, जब ये हमारे साथ खड़े होते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, ये सभी हमें, हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और जीवन हमें आत्मनिर्भर बनना भी सिखाता है साक्षी। वो
0: बिल्कुल
1: कैसे, जब हम अनुभव से सीखते हैं और अपने निर्णय खुद लेते हैं, मजबूत बनते हैं, दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद पर विश्वास करते हैं, तो ये हमें सिखाता ही है कि हमें किस तरह से जो है आत्मनिर्भर बनना है।
0: जी हाँ बिल्कुल। और अक्सर हम या तो अपने अतीत की गलतियों पर पछताते रहते हैं या भविष्य की चिंता करते रहते हैं कि कल क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा,
1: जी
0: उनके
1: जी
0: बच्चों का क्या होगा। तो जीवन के साथ बहना हमें ये भी सिखाता है कि वर्तमान में जीना ही जीना है, और यदि आप सही तरीके से जीवन जीना चाहते हैं तो आपको वर्तमान में ही रहना होगा।
1: जी बहनों, जो जीवन है एक यात्रा है जिससे हर मोड़ पर हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हमें इस यात्रा का आनंद लेना चाहिए और हर अनुभव को स्वीकार करना चाहिए।
0: जी हाँ, और जीवन के साथ बहना हमें मजबूत बनाता है, हमें समझदार बनाता है, और हम खुश रहते हैं यदि हम जीवन के साथ बहते रहते हैं। जीवन हमें हर दिन कुछ ना कुछ सिखाता है, बस हमें क्या करना है कि खुले मन से उसे स्वीकार करना है और आगे बढ़ते रहना है। तो यही जीवन का असली अर्थ है और यही सफलता की कुंजी भी है।
1: जी
0: तो बहनों, आपको भी यही करना है कि जीवन में कभी भी आप अपने जो अतीत की चिंता ना करें, कभी वर्तमान की चिंता ना करें, कभी वर्तमान में रहें और भविष्य की चिंता ना करें।
1: जी जी
0: और वर्तमान में यदि आप बहते रहेंगे तो आपका जो जीवन है वो और भी अधिक आनंदमय हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल।

0: मैं ना योग जिसने हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है और जिसने स्वस्थ जीवन का मार्ग हमें दिखाया है, उसकी सही तकनीकें, लाभ और आसन जानना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि योग करना। तो इसी पर आज हम बात करेंगे, पर उससे पहले हम जानते हैं थोड़ा योग के बारे में।
1: जी, योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जो शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाता है। आज के व्यस्त जीवन में योग का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि ये हमें स्वस्थ, शांत और ऊर्जावान बनाता है। और योग केवल व्यायाम ही नहीं है बहनों, बल्कि जीवन जीने की एक कला भी है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और योग की प्रमुख तकनीकों में प्राणायाम, ध्यान और आसन शामिल है।
1: जी
0: बहनों, प्राणायाम के द्वारा हम अपनी श्वास को नियंत्रित करते हैं, जिससे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। ध्यान की बात करें तो ध्यान से मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है।
1: जी योग के विभिन्न आसनों में ताड़ासन, भुजंग आसन, वज्रासन और पद्मासन बहुत प्रमुख है। और ताड़ानासन के से शरीर का संतुलन सुधरता है, भुजंगासन से रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, वज्रासन से पाचन तंत्र को ये जो है बेहतर बनाता है।
0: जी हाँ, बिल्कुल। और जो पद्मासन होता है वो ध्यान करने के लिए सर्वोत्तम आसन है। तो बहनों, जो ये आसन होते हैं योग में हमारी कोई भी बीमारी हो हमारे शरीर में, योग में हर एक परिस्थिति के लिए आसन अवश्य है। और योग के अनेक लाभ हैं। जैसे कि हम शारीरिक लाभों की बात करें तो शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाता है योग, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, इसी के साथ ही शरीर में लचीलापन भी बढ़ाता है।
1: जी बहनों, शारीरिक लाभ के साथ साथ इसके मानसिक लाभ भी बहुत हैं। जैसे कि तनाव और चिंता को ये कम करता
0: जी
1: है ना। आजकल तनाव और चिंता हमें लगी रहती है अपने
0: बिल्कुल,
1: जीवन के लिए, तो ये तनाव और चिंता को भी कम करता है, एकाग्रता बढ़ाता है। जैसे कि आजकल हम बहुत से काम एक साथ करते हैं, तो हमारा जो एकाग्रता है वो हमारी मतलब नहीं रही है इंसान में
0: बिल्कुल
1: ना, वो इधर उधर जो है हमारा दिमाग लगा रहता है। तो इसके लिए भी ये योग जो है बहुत ज़रूरी है, मन को शांत और स्थिर भी योग बनाता है।
0: जी हाँ, बिल्कुल। और इसके साथ ही शारीरिक लाभ और मानसिक लाभ के साथ भी आध्यात्मिक लाभ भी हैं योग के। जो योग है वो हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। जीवन में जो हमारी सोच है उसको कहीं ना कहीं योग सकारात्मक करता है। और जो हमारी आंतरिक शांति है वो हमें योग करने से प्राप्त होती है, यदि हम उसे सही तकनीक से करते हैं, सही तरीके से करते हैं।
1: जी, योग समग्र स्वास्थ्य में सुधार करता है और एक स्वस्थ जीवन शैली को ये बढ़ावा देता है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है बहनों, बल्कि ये स्वस्थ शरीर, शांत मन और सकारात्मक आत्मा का एक अद्भुत संगम है।
0: जी हाँ, बिल्कुल। और इसे हमें अपनी दिनचर्या में शामिल ज़रूर करना चाहिए, जो हमें जीवन भर उत्तम स्वास्थ्य और मानसिक स्थिरता का लाभ देता है। मैंने आज आज जो योग है वो हमारे जीवन का अतुल्य हिस्सा बन चुका है। तो आप लोग भी जो योग को है अपने जीवन का

0: एक हिस्सा बनाएं, रोज योग करें और एक संतुलित और खुशहाल जीवन की ओर अपने कदम बढ़ाएं।
1: जी, और साक्षी हमें पता है कि योग हमारे लिए जो है इसके बहुत से लाभ है, लेकिन हम भी फिर भी ये सोचते हैं कि हम सुबह जल्दी कैसे उठें,
0: जी
1: कैसे हम इसके लिए समय दें। लेकिन बहनों, अगर हमें अपने शरीर को मन को स्वस्थ रखना है, तो हमें अगर हम थोड़े 15 मिनट भी अगर सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारे लिए बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि जब हम योग करते हैं तो हमारा जो दिन है वो बहुत ही ऊर्जावान जाता है और बहुत ही हमारा दिन शांतिपूर्ण से निकलता है। तो इसके जब इतने सारे लाभ हैं, तो थोड़ा हमें जो है समय इसके लिए ज़रूर निकालना चाहिए।
0: जी हाँ बिल्कुल। और इसके साथ ही जब आप योग करें, तो जैसे जिम जाते हैं हम तो वहाँ पे एक्सरसाइज होती है, पर जो योग होता है ना उसको जब उसमें हम कोई भी आसन करते हैं तो हमारा ध्यान जो होता है वो पूरा श्वासों पे रहता है। जब आप श्वासों पे ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको थकान कम होती है और आपके शरीर को फायदा ज़्यादा होता है। तो बहनों हमेशा योग किसी न किसी जिसको योग आता है किसी अच्छे जो आपके गाइड है उसके अंदर ही योग करें और इसको रोज की दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें।
1: जी।

0: अपॉइंटमेंट सब कुछ इसी फोन से होता है, लेकिन परेशानी तब होती है जब कुछ बहनों को फोन का अच्छा प्रयोग नहीं करना आता और उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि हमने कहीं कुछ गलत बटन दबा दिया तो क्या होगा।
1: जी बिल्कुल, पर डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ आसान टिप्स जो है हमें अपनाने हैं, जिससे जो ये परेशानी है दूर हो सकती है।
0: जी
1: जैसे कि अनजान क्लिक पर कभी भी लिंक पर कभी भी क्लिक नहीं करना है।
0: जी
1: बैंक OTP या पासवर्ड किसी को फ़ोन पर नहीं बताना है, और
0: बिल्कुल
1: अपने पासवर्ड जो है किसी से शेयर करने भी नहीं चाहिए, है ना।
0: जी जी जी
1: और गूगल असिस्टेंट से ठीक है, गूगल अलार्म लगाओ जैसे काम भी हम करवा सकते हैं।
0: जी हाँ। और सबसे बढ़िया, अगर आपको मतलब लिखना नहीं आता मोबाइल पे, आप टाइपिंग नहीं कर पाते
1: जी
0: हैं, तो
1: जी
0: आजकल वॉइस टाइपिंग का इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। बस एक वॉइस टाइपिंग आप ऑन कीजिए और मुंह से बोलिए आपने जो लिखना है मैसेज, तो फ़ोन अपने आप आपका मैसेज लिख देगा।
1: जी
0: यानी कि आप जो लंबा मैसेज टाइप करने का झंझट है वो भी ख़त्म हो चुका है।
1: जी बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे रसोई की, यानी हमारे घर के सबसे प्यारा जो एक जगह होती है ना, वो
0: बिल्कुल
1: रसोई ही होती है, जहाँ रोजाना मेहनत भी होती है और प्यार भी पकता है। और
0: जी
1: ख़ास बात यह है कि हम कुछ छोटे छोटे स्मार्ट गैजेट्स हैं जो रसोई को और भी स्मार्ट बना सकते हैं। और सबसे पहले सवाल किचन गैजेट्स की ज़रूरत क्या
0: जी हाँ
1: है ना।
0: बिल्कुल। तो इसका जवाब यही है बहनों, कि हमारी मेहनत कम करने, समय बचाने और खाना बनाने को आसान बनाने के लिए हमें किचन गैजेट्स की ज़रूरत पड़ती है। देखिए आजकल बच्चों का होमवर्क ही इतना लंबा होता है कि रात रात भर माँ बाप को बैठना पड़ता है।
1: जी
0: ऐसे में जब माताओं को खाना बनाना पड़ता है, साथ में किचन के बाकी सब काम करने पड़ते हैं, तो उन्हें जो काम कराने का समय कहीं ना कहीं वो बहुत लंबा चला जाता है। तो उस समय को बचाने के लिए और बच्चों को अधिक से अधिक समय देने के लिए हमें इन किचन गैजेट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें यदि हम अपनी किचन में रखेंगे तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा और थोड़ा समय हमारा बच जाएगा।
1: और सबसे अच्छी बात ये भी है बहनों कि ये गैजेट्स चलाना मुश्किल नहीं होते हैं, बस
0: जी
1: थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत होती है। जैसे जब पहले पहले मोबाइल आए थे ना,
0: जी
1: तो सबको लगता था कि ये बहुत टफ है, आसान नहीं है, लेकिन जब धीरे धीरे इसका प्रयोग हम करते रहते हैं तो आज बहुत सी चीज़ें हम उस पर प्रयोग
0: जी
1: करते हैं ना। उसी तरह से ये गैजेट्स भी हैं। अब
0: जी
1: सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रिक कुकर की, जो
0: जी
1: हमारे किचन में हमें ज़रूर रखना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: इसमें सिर्फ चावल नहीं पकते हैं, इसमें खिचड़ी पकती है, दाल, यहाँ तक कि स्टीम इडली तक भी इसमें बन सकती है ना।
0: जी
1: बस सामग्री डालिए, पानी डालिए, ढक्कन लगाइए और बटन दबा दीजिए। इसके बाद आप चाहे तो आराम से बच्चों का होमवर्क कराए, या वो समय जो बच रहा है वो खुद के लिए कर सकते हैं, अपने शौक जो आप हैं वो भी आप
0: पूरे कर
1: पूरे
0: सकते
1: कर सकते हैं, और चाय पीजिए, जो भी आप करना है वो कर सकते हैं। और अच्छा ये है कि खाना जलता नहीं है, यानी ओवर कुकिंग का झंझट ही खत्म है।
0: जी हाँ बिल्कुल। और इसके बाद अगला कमाल का गैजेट है एयर फ्रायर।
1: जी।
0: देखिए बहनों, किसे मन नहीं करता कि वो समोसे खाए, आलू टिक्की खाए, पकोड़े खाए, और खासकर जब बरसात का मौसम होता है या थोड़ी सी बरसात हो जाती है तब तो बहुत ही ज़्यादा मन करता है। और हमें पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा तेल होता है जिसकी वजह से काफ़ी लोग इसे खा नहीं पाते हैं। तो ये जो एयर फ्रायर है ना, ये बहुत कम तेल में आपके समोसे, आलू टिक्की, पकौड़े और बहुत कुछ बना सकता है।
1: जी
0: और मज़े की बात यह है कि वो कुरकुरे भी बनते हैं और सेहतमंद तरीके से बनते हैं, यानी कि स्वाद भी है और सेहत भी है दोनों साथ में।
1: और इसके साथ इसमें ये भी है कि जैसे कोई चीज़ें हमें सुखाते हैं ना, धूप में सुखाते हैं, उसमें 2-3 दिन लग जाते हैं, तो
0: जी
1: इसमें वो एकदम 1 मिनट में ही वो चीज़ सूख जाती है।
0: जी
1: और स्मार्ट चाय मेकर की अगर हम बात करें, तो सुबह 6 बजे का अलार्म बजने से पहले चाय जो है हमें तैयार करनी होती है ना, जब
0: जी
1: बच्चों के स्कूल होते हैं या मेहमान आ जाते हैं, जल्दी जल्दबाजी लगी रहती है, तो उसके लिए भी डिजिटल किचन जो है, ये स्मार्ट चाय मेकर भी बहुत काम की चीज़ है।
0: जी हाँ बिल्कुल। ये एक ऐसी मशीन है स्मार्ट चाय मेकर, जिसमें आपको बस क्या करना है, पानी डाल के रखना है, चीनी डालनी है, पत्ती डालनी है, और अगर आप कोई चाय मसाला डालते हैं तो उसके लिए भी जगह दे रखी होती है, और आपने उस पर टाइमर सेट करना है। जैसे ही आपका वो टाइम होगा, आपके लिए चाय बनकर खुद ही आपकी तैयार हो जाएगी और एक अलार्म बज जाएगा जिससे आप फटाफट से जाकर अपनी गर्मा गर्म चाय पी सकते हैं। मतलब कोई झंझट नहीं, टाइम का, आप जितने बजे चाय पीते हैं उतने बजे ही आपकी ये मशीन चाय

0: हाजिर कर देगी।
1: जी अब बारी है डिजिटल किचन स्केल की। जैसे कि रेसिपी में लिखा होता है ना 100 ग्राम बेसन, अब
0: जी
1: अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, स्केल पर रखिए, स्टिक नापिए और इससे खाना परफेक्ट बनता है और हेल्थ भी कंट्रोल में रहती है।
0: जी हाँ बिल्कुल। और सबसे ये तो बहुत बड़ी समस्या होती है आजकल, तो आपने देखा है कि हम सारी यूट्यूब से रेसिपीज़ देखते हैं काफ़ी लोग,
1: जी
0: जो
1: जी
0: नई जनरेशन है उनको तो खाना मुझे लगता है माँ से ज़्यादा यूट्यूब सिखाता है। तो ऐसे में ये जो स्मार्ट किचन स्केल होता है ये जो है हमारी बहुत मदद करता है। उसमें बताया होता है 1 कप आपको पानी लेना है, आधा कप, टीस्पून,
1: जी जी जी
0: टेबल स्पून। तो ये जो डिजिटल किचन स्केल होता है ना, ये हर तरीके का जो स्केल होता है जो किचन में यूज़ होता है, वो हमें जो सुविधा है वो हमारी किचन में प्रदान करता है।
1: और कई बार ऐसा होता है ना कि सब्जी जल जाती है ना, और क्योंकि हम किसी और काम में लग जाते हैं सब्जी को गैस पर चढ़ा के, और फिर अचानक से महक आती है कि कुछ जल गया है, बहुत बार ऐसा होता है। तो इसके लिए जो है स्मार्ट किचन टाइमर जो है बहुत फ़ायदेमंद है। टाइम सेट कर दीजिए, अलार्म बज जाएगा और ये इतना छोटा सा होता है कि कहीं भी आप इसको रख सकते हैं।
0: जी हाँ बिल्कुल। और अब आपको बताते हैं एक ऑटोमेटिक चपाती मेकर के बारे में।
1: जी जी
0: ये इसमें ये एक मशीन है जिसमें आप आटा डालिए, आप पानी डालिए, सेटिंग कीजिए और कुछ ही मिनटों में गोल गोल रोटियां आप तैयार होके आपके सामने आ जाएंगी।
1: जी जी
0: बहनों ये होते तो थोड़े महंगे हैं, पर ये जो पार्टियां होती है ना, जो आप बड़े बड़े हम आयोजन करते हैं उसमें ये बहुत काम आता है, या कोई बुजुर्ग इंसान हो जाता है जो अब इतना काम नहीं कर
1: जी
0: पाता
1: जी
0: है, उनके लिए भी ये गैजेट्स है बहुत ही अच्छा काम करता है। तो हमें इससे डरना नहीं है बहनों, बहुत सी बहनों को डर लगता है कि कहीं ये खराब ना हो जाए, ये टूट ना जाए। तो हमेशा याद रखिए कि हर गैजेट के साथ एक यूज़र मैनुअल आता है, उसे पढ़िए। बच्चे या किसी घर के किसी सदस्य की मदद लीजिए, उसे पहली बार समझिए। आपने देखा होगा कि जीवन में कोई भी काम जब हम पहली बार करते हैं ना, तो वो मुश्किल लगता है, पर उसके बाद वो बिल्कुल आसान हो जाता है। और यही बात हमारे गैजेट्स के साथ भी लागू होती है।
1: जी गैजेट्स इस्तेमाल करने के बस कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि हमेशा सूखे हाथों से इस्तेमाल करें,
0: जी
1: पानी से दूर रखना होता है,
0: जी
1: हर बार इस्तेमाल के बाद उसको साफ करना ज़रूरी होता है ना,
0: बिल्कुल
1: और ज़्यादा वोल्टेज वाली जो प्लग से है उसे उससे बचना चाहिए।
0: जी हाँ बिल्कुल। तो बहनों टेक्नोलॉजी से डरने की ज़रूरत नहीं है, इसे बस दोस्त बनाना है आपने अपना। ये हमारे लिए काम करती है, हमें आराम देती है, तो हमें वो आराम ज़रूर लेना है यदि हम हमारे को उसकी ज़रूरत है।
1: जी

0: बहनों देखिए, चलते चलते हम आपको बताते हैं कि जो नशे का प्रभाव है ना, वो आजकल जगह जगह हमें देखने को मिल रहा है। आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे आसपास के लोग हैं, कहीं ना कहीं इस नशे के जाल में फंसते जा रहे हैं और उन्हें इसके प्रभाव के बारे में जानकारी नहीं है कि ये केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। जो नशा होता है वो परिवार की आर्थिक, सामाजिक और मानसिक संकट का भी सामना करना पड़ता है जब एक इंसान नशा करता है।
1: जी बिल्कुल। और घरों में जो है कलह बढ़ती है, बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है और समाज में अपराध तथा असुरक्षा की भावना का विस्तार होता है बहनों। इसीलिए नशे के विरुद्ध लड़ाई केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे समाज का ये दायित्व है।
0: जी हाँ बिल्कुल, यदि कोई व्यक्ति नशे की जो लत से जूझ रहा है तो उसे समाज का सहयोग चाहिए होता है। उसे आजकल हम क्या करते हैं कि समाज उसे तिरस्कृत कर देता है कि ये नशेड़ी है, इसे दूर करो, इससे दूर रहो, परंतु उसे समाज से तिरस्कार की नहीं बल्कि सहयोग और संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है।
1: जी, समय पर परामर्श, चिकित्सा सहायक और पुनर्वास सेवाओं के माध्यम से अनेक लोग सामान्य जीवन में सफलतापूर्वक लौटे हैं। तो इसीलिए हमें नशा ग्रस्त व्यक्तियों की को अपराधी नहीं, बल्कि सहायता और उपचार के पात्र के रूप में देखना चाहिए।
0: जी।

0: बहनों, इसी के साथ ही घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है, हमारे जाने का समय हो गया है। तो सभी बहनों को साक्षी शर्मा और
1: हर्षा शर्मा का नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला सम्मेलन कार्यक्रम मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। बस कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप, निवेशक और टेक्नोलॉजी लीडर्स शामिल होंगे। कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा ऐसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग और वस्त्र परीक्षण सहित प्रमुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। ये केंद्र उन्नत विनिर्माण सुविधाएं, तकनीकी सहायता और उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो

0: प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक नर्तक नर्तकियों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की। इस सामूहिक प्रस्तुति को गिनीज विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और सांस्कृतिक विरासत के इस उत्सव का आयोजन भारत की संगमम ग्लोबल अकादमी और श्रीलंका की संगमिज लिया ने किया। फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने एक एक गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया। आईसीसी महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Bharat Innovates in Nice, France in a short while from now alongside French President Emmanuel Macron. The flagship event being held under the India-France Year of Innovation will bring together more than 120 Indian startups, global investors, technology leaders and entrepreneurs, showcasing India's rapidly expanding innovation ecosystem. Later in the day, Prime Minister Modi and President Macron will hold bilateral talks to review progress in the India-France Special Global Strategic Partnership and discuss key regional and global issues. Prime Minister Modi yesterday reached Nice in France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. Prime Minister Narendra Modi says India has worked to make quality healthcare more affordable and accessible over the last 12 years. In a social media post, Mr. Modi said that the nation feels proud when it is known as the country with the world's largest healthcare program, that is Ayushman Bharat, which provides top quality healthcare to the most vulnerable people. He said efforts like PM Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana have made medicines affordable. The White House has said that U.S. President Donald Trump will meet Prime Minister Narendra Modi and other world's leaders during next week's G7 summit in France. A senior administrative official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships, and a range of global security challenges. In Jharkhand, 7 people, including 3 women and a 10-year-old boy, have died in separate lightning strike incidents across the state over the past 24 hours. Police said 2 people lost their lives in Ranchi and 2 people died in Garhwa district. The other fatalities were reported from Chatra, Giridih and Saraikela Kharsama districts. Authorities have sent the bodies for post-mortem examination. Indian Space Research Organization ISRO Chairman V. Narayanan has informed that they have collaborated with the Department of Atomic Energy to develop an advanced artificial heating system that can protect lunar lander from the freezing weather of the moon. Addressing the CSIR RISE conclave in Bengaluru, the ISRO chief explained that Chandrayaan 3 lander Vikram, fueled by solar energy, operated only for 14 days on moon. ISRO will now work with the Atomic Energy Department to develop a lunar lander that can survive on the moon for up to 200 days. A case has been registered against a US-based organization and 6 others following a complaint by the Enforcement Directorate ED alleging the illegal utilization of foreign funds through a network of foreign debit cards, including in left-wing extremism-affected areas of the country.

0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
1: वन जीरो 3.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ट्यून इन हैं FM शिमला के साथ। 1:10 हुए हैं और आप इंजॉय करेंगे म्यूजिक मस्ती। जी हाँ, हमेशा की तरह बेहतरीन सॉन्ग्स लेकर आए हैं हम। और आपको क्या करना है, आपको बस हमारे साथ यूं ही बने रहना है, सुनते रहना है, गुनगुनाते रहना है, इंजॉय कीजिए। सबसे पहले SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में फिल्म साजन का गीत। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

छुट्टी का दिन हो और शिमला का मौसम, साथ में गर्मा गर्म चाय और 90s के सॉन्ग्स, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और ये सोचकर ही मदहोश हो जाइए और इन्जॉय कीजिए प्रोग्राम में ये अगला गीत, जो आप सुनेंगे अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में फिल्म राजा से। बोल हैं समीर के, म्यूज़िक दिया है नदीम श्रवण ने।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है।

0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण

0: डाटा होता है जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, घरों की स्थिति के बारे में, या फिर हमारी शिक्षा, साक्षरता और इस तरह की जो हमारी मूलभूत जानकारियां होती हैं, वह हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं उनसे हमारी नीति निर्माण और रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए आप सब अपनी जानकारी खुलकर प्रदान करें। आपके जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं यानी गणनाकार हैं, वो आप ही के आसपास के कोई भी सरकारी कर्मचारी होंगे। जब वो आपके घर आए तो आप उनका स्वागत करें और उनको जानकारी दें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, आप उनका आई कार्ड देख सकते हैं जिसपे की एक QR कोड है, उसे स्कैन करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। और आपसे किसी भी तरह का कोई भी OTP या दस्तावेज कभी भी नहीं मांगा जाएगा। आपको सिर्फ अपने 33 प्रश्नों की जानकारी जनगणना के प्रथम चरण के लिए देनी है। धन्यवाद।
1: आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर और एंजॉय कर रहे हैं म्यूजिक मस्ती। लीजिए पेश है अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में फिल्म बरसात का ये गीत।

0: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जानें।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। कहते हैं म्यूज़िक इज़ अ थेरेपी, एंड आई अग्री टोटली। स्पेशली ये जो 90s के सॉन्ग्स हैं ना, ये आपको ना किसी और ही दुनिया में ले जाते हैं। आप खो जाते हो, नो मैटर आप किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, आप कितनी मुश्किल में हो या आप कितनी खुशी में हो, जैसे ही ये सॉन्ग्स प्ले होते हैं ना, आप अपनी ही दुनिया में खो जाते हो। और आई थिंक ये जो 4-5 मिनट्स, एक सॉन्ग ज़्यादा से ज़्यादा 4-5-6 मिनट का जो ये चलता है, दिस इज़ द बेस्ट थेरेपी द पर्सन कुड एवर हैव। आई होप आप इन्जॉय कर रहे हो और साथ ही साथ अपनी ही दुनिया में आप कहीं खो भी रहे। कई बार ना खो जाना चाहिए हमें, क्योंकि मुश्किलें और परेशानियाँ, या फिर यूँ कह लें कि खुशी भी है ना, ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती रहती हैं। लेकिन खुशी में तो चलो बात ही कुछ और होती है ना, तब तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन मुश्किलें जो याद रह जाती हैं, जो जहन में रह जाती हैं, तब अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए और टाइम निकाल के आप खो जाइए, म्यूज़िक में खो जाइए। एक ऐसी थेरेपी लीजिए जिसके जिस जो आप थेरेपी ले रहे हैं ना,

आपको किसी और की ज़रूरत ना पड़े। समटाइम्स हमें ऐसा लगता है ना कि बात नहीं करनी थी, बस अपने में अकेले में रहना था। तो अकेले मत रहिए, साथ में लेकर चलिए किसी को। और किसको साथ में लेकर चलना है? जी हाँ, गीत संगीत और क्या। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इंजॉय कीजिए सोनू निगम की आवाज़ में फिल्म संघर्ष का ये गीत।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं।
2: अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
3: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
4: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: जब कभी कुछ समझ ना आए तो कुछ समय के लिए शटडाउन होना बहुत जरूरी है। शटडाउन मतलब अपने दिमाग को थोड़ा आराम दें, अपने दिमाग को शट डाउन कर दें 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, और खुद को ले जाएं एक अनोखे सफ़र में। किसके साथ? गीतों के साथ। जी हाँ, तो अगर इन केस अभी ऐसा कुछ है और आप सोच रहे हैं दैट यू आर इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन और यू आर समवेयर जहाँ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो सुनिए, गीत सुनिए। जी हाँ, और अगर आप हमारे साथ हैं तब तो आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। एक से बढ़कर एक बढ़िया गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं और अगला गीत भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। कुमार सानू की आवाज़ में सुनेंगे आप, बोल हैं आनंद बख्शी के, म्यूज़िक दिया है जतिन ललित ने, फिल्म का नाम जब प्यार किसी से होता है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए FM शिमला के साथ।

0: गोलियां। ये क्या कर रही हो तुम?
1: मच्छी पकड़ रही हूँ डिनर के लिए।
2: ट्यून इन है आप एफएम शिमला के साथ, सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती। सोनू निगम की आवाज में आप सुनेंगे फिल्म दिल मांगे मोर का गीत। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया।

गीत आप सुनेंगे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। गीतकार हैं सुधाकर शर्मा और संगीतकार हिमेश रेशमिया। फिल्म का नाम ये है जलवा।

आप सुन रहे थे म्यूजिक मस्ती 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर. आप ट्यून इन हैं एफएम शिमला के साथ. 2 बजे का समय है, आप इंजॉय करेंगे सबरंग. पेश है लकी अली की आवाज़ में ये गीत.

ये सॉन्ग आपने सुना शान की आवाज़ में, सबरंग में। ये आखिरी गीत आप सुनेंगे फाल्गुनी पाठक की आवाज़ में। ट्यून इन है एफएम शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

सब रंग में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ट्यून इन हैं एफएम शिमला के साथ। दोपहर हिंदी समाचार सुनेंगे आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया रिले की

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में

0: जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
1: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
2: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराई जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुँच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में

0: पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायोग संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मानसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
2: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, आरिसा पीठा, चकुली पीठा और मस

0: तो रजा पान की खुशबू फैली हुई है। रजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज FM शिमला। हंसने हंसाने, आपको गुदगुदाने और कुछ गुनगुनाने के लिए
1: हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना। आज

आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। 2:30 हुए हैं और आप सुनेंगे शिखरों के स्वर। पेश है राजपाल की आवाज में ये लोकगीत।

ये लोकगीत आपने सुना निशा बाला की आवाज में, शिखरों के स्वर में। लीजिए पेश है अगला लोकगीत लेखराम पाल की आवाज में। आप ट्यून इन है FM शिमला के साथ।

ये लोकगीत आपने सुना कृष्णा शर्मा और साथी की आवाज़ों में। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ट्यून इन हैं FM शिमला के साथ और सुन रहे हैं शिखरों के स्वर। पेश है अंकुश संदल की आवाज़ में ये लोकगीत।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
1: ये आकाशवाणी शिमला है। अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला, डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी सुना जा सकता है।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ नागरिक ही देश की सबसे बड़ी ताकत है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि देश में एम्स की संख्या 1 से बढ़कर 23 हो गई है। वहीं ई संजीवनी, कोविन और यूविन जैसे प्लेटफॉर्म से लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल रही हैं। कांगड़ा जिला को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में नव निर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों को कल 15 जून को शपथ दिलाई जाएगी। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार कांगड़ा जिले में 18 जून को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रधानों व उप प्रधानों को शपथ दिलाएंगे। कल शपथ समारोह जिला स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया चंबा, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ऊना, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल सोलन और कृषि मंत्री चंद्र कुमार कुल्लू में पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इसी तरह उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सिरमौर, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी किन्नौर, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर शिमला, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह मंडी, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी बिलासपुर, जबकि आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा हमीरपुर में शपथ दिलाएंगे। जिला स्तर पर होने वाले शपथ समारोह कार्यक्रमों के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस का विषय मानवता की एक बूंद रक्तदान करें जीवन बचाएं रखा गया है।

0: सुरक्षित रक्त के महत्व के बारे में जागरूकता लाने और स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से हर वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस अवसर पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी ने कहा है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सोलन जिले के अर्की में विशाल दंगल कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को सम्मान व प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने पुरस्कार राशि में ऐतिहासिक वृद्धि की है। संजय अवस्थी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने और उनके शारीरिक विकास में खेल गतिविधियां अहम भूमिका निभा रही हैं। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की है। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाना है। लाहौल स्पीति के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शांशा के एक छात्र व प्रतिभाशाली खिलाड़ी ऋषिक रायांग का चयन प्रदेश की 18 वर्ष से कम आयु वर्ग की एथलेटिक्स टीम में हुआ है। उन्होंने बिलासपुर के लुहणू मैदान में हुए राज्य स्तरीय ट्रायल में जेवेलियन थ्रो प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
1: सितंबर माह में देहरादून में होने वाली नॉर्थ जोन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले भी वे अंडर 17 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की ओर से खेल चुके हैं। ऋषिक की इस उपलब्धि पर उनके अभिभावकों, प्रशिक्षकों और क्षेत्रवासियों ने खुशी जताते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी है। उनकी सफलता को लाहौल स्पीति के युवाओं के लिए प्रेरणादायक माना जा रहा है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: ऊना जिला में पिछले 3 वर्षों में 9,393 किसान राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं। उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जिले में किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर प्रोत्साहित करने की दिशा में तत्परता से प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्पादों की सरकारी खरीद सुनिश्चित करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य में निरंतर वृद्धि की नीति ने जिले में सकारात्मक बदलाव की नींव रखी है। उपायुक्त के अनुसार प्राकृतिक खेती के बढ़ते दायरे से जल, मिट्टी और पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिल रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:00 PM। नमस्कार।
2: सामयिक चर्चा के बाद समाचार के बाद अब पेश है सामयिक चर्चा। विषय है सशक्त युवा सशक्त राष्ट्र 2047 तक विकसित भारत के लिए भारत का दृष्टिकोण। वाचक स्वर नविता चौहान।
0: केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं पर केंद्रित कई पहल शुरू की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और युवाओं के नेतृत्व वाले विकास के विजन के आधार पर सरकार ने शिक्षा तक पहुंच बढ़ाई, उच्च शिक्षा को मजबूत किया और कौशल विकास व रोजगार के अवसर बढ़ाए। भारत के स्टार्टअप तंत्र में भी इजाफा हुआ, जिसमें 2,03,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप शामिल हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म, समावेशी कार्यक्रमों और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से देश के युवा अमृत पीढ़ी के रूप में उभरे हैं और विकसित भारत 2047 के विजन में योगदान दे रहे हैं। अपनी लगभग 65% आबादी के 35 वर्ष से कम उम्र के होने के कारण भारत अपने इतिहास के एक अहम मोड़ पर है। सरकार इस जनसांख्यिकी लाभांश की अपार क्षमता को पहचानती है। पिछले 12 वर्षों में देश ने युवाओं के साथ ही सरकार के जुड़ाव के तरीके में एक बुनियादी बदलाव देखा है। ये दौर भारत के युवाओं को राष्ट्रीय विकास की ताकत में बदलने के लिए किए गए व्यवस्थित और परिवर्तनकारी प्रयासों को दर्शाता है। ये बदलाव शिक्षा, कौशल विकास, खेल और उद्यमिता सहित हर क्षेत्र में दिखाई देता है। युवाओं को अब केवल निष्क्रिय लाभार्थी नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें अमृत पीढ़ी के रूप में पहचाना जाता है। वे विकसित भारत 2047 के मुख्य निर्माता और सह रचनाकार के रूप में उभरे हैं। पिछले दशक में युवाओं के विकसित होने में भारत के नजरिए में काफी बदलाव आया है, जो युवा और गतिशील आबादी की बदलती आकांक्षाओं और जरूरतों को दर्शाता है।

0: राष्ट्रीय युवा नीति 2014 ने देश में युवाओं के विकास के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया। इसमें 15 से 29 साल के लोगों को युवा माना गया और शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, स्वास्थ्य, खेल, सामाजिक भागीदारी और सशक्तिकरण जैसे अहम क्षेत्रों की पहचान की गई। इसका मुख्य जोर पहुंच, समावेश और संस्थागत मजबूती पर था। इसी बुनियादी को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने हाल के वर्षों में युवाओं के नेतृत्व वाले विकास का विजन पेश किया है। इसमें युवाओं को सिर्फ सरकारी कार्यक्रमों का लाभार्थी के तौर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में सक्रिय साझेदार के तौर पर देखा गया है। हाल ही में प्रस्तावित राष्ट्रीय युवा नीति 2025 का ढांचा भविष्य के लिए जरूरी कौशल, उद्यमिता, नेतृत्व, नागरिक भागीदारी, डिजिटल भागीदारी और टिकाऊ विकास जैसी उभरती प्राथमिकताओं पर और जोर देता है। हाल ही के वर्षों में शिक्षा के प्रति भारत का नजरिया काफी बदला है। अब ध्यान सिर्फ पहुंच बढ़ाने से हटकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित हो गया है। शिक्षा अब शहरों तक ही सीमित ना रहकर दूर दराज के इलाकों तक पहुंच रही है ताकि सभी को समान अवसर मिल सकें। भारत के युवाओं के लिए सर्वांगीण और भविष्य के लिए तैयार करने वाली शिक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी बदलाव का मुख्य आधार है। ये देशभर के हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार की गई पहली व्यापक शिक्षा नीति है। नई शिक्षा नीति ने उच्च शिक्षा तक पहुंचने और उसे देने के तरीके में बुनियादी बदलाव किए हैं। भारतीय युवा अब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था के जरिए सशक्त हो रहे हैं जो ज़्यादा सशक्त, डिजिटल रूप में सक्षम और नवाचार पर आधारित है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार ने एक मजबूत डिजिटल लर्निंग व्यवस्था बनाई है। स्वयं प्रभा, पीएम ई विद्या और दीक्षा टेलीविजन, रेडियो, डिजिटल कंटेंट और ई संसाधनों के जरिए सीखने के अवसरों को और बढ़ाया है। अकेले दीक्षा में 135 भाषाओं में 3,66,000 से ज्यादा ई कंटेंट संसाधन मौजूद हैं। उच्च शिक्षा के स्तर पर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल ने 7,414 संस्थानों में अकादमिक और शोध संस्थानों तक पहुंच बढ़ाई है जिससे लगभग 99,00,000 लोगों को फायदा हुआ है। नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन ने 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब बनाए हैं जिनसे 1,01,00,000 से ज्यादा छात्रों को मदद मिली है और उभरती तकनीकों में 16,00,000 से ज्यादा परियोजनाओं के विकास में मदद मिली है। इसके अलावा 72 अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स ने 6,700 से ज्यादा स्टार्टअप्स को समर्थन किया है और 32,000 से ज्यादा नौकरियां पैदा करने में मदद की है। 2014 से युवाओं के लिए भारत की उच्च शिक्षा से जुड़े मूलभूत ढांचे का भौतिक विस्तार काफी बड़ा और रणनीतिक रूप से किया गया है।
1: अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: MHz पर आप ट्यून इन हैं FM शिमला के साथ। 3:10 हुए हैं और आप इंजॉय करेंगे ओल्ड हिट्स। जी हाँ, फिल्म संगीत में हम आपके लिए लेकर आए हैं ओल्ड सॉन्ग्स जो कि आप हमेशा इंजॉय करते हैं। और सबसे पहले लीजिए पेश है राजकुमारी और मुकेश जी की आवाज़ों में फिल्म बावरे नैन का ये गीत। बोल है केदार शर्मा के और म्यूजिक दिया है रोशन ने।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म अलबेला से। गीतकार है राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार सी रामाचंद्रा। सी रामाचंद्रा ने इस फिल्म के गीत को लता मंगेशकर के साथ अपनी मधुर आवाज़ों में पिरोया था। तो पेश है ये गीत, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए FM शिमला के साथ।

फिल्म संगीत में अगला गीत आप इंजॉय करेंगे लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और मुकेश की आवाज़ों में फिल्म श्री 420 से। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन। ट्यून इन है FM शिमला के साथ, सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

ओल्ड हिट्स में ये आखिरी गीत आप इंजॉय करेंगे लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ों में फिल्म चोरी चोरी से। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन।

फिल्म संगीत में फिलहाल इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। 3:30 होने को हैं। आप सुनेंगे युवाओं के लिए कार्यक्रम युववाणी।

सभी युवा साथियों को दिव्या का नमस्कार। आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी एफएम शिमला। मैं फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी लेकर, जहां बातें होती हैं नए सपनों की और नए जज्बों की। और आज का विषय है म्यूजिक दैट डिफाइंस आर जनरेशन। कहते हैं हर पीढ़ी की पहचान उसके संगीत से होती है। कुछ गाने हमें हमारी दोस्ती याद दिलाते हैं, कुछ माँ बाप का प्यार, कुछ पहली मोहब्बत और कुछ वो सपने जिन्हें हम जीना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक खूबसूरत शेर के साथ। सुरों में छुपी होती है यादों की कहानियाँ, सुरों में छुपी होती है यादों की कहानियाँ, कुछ धुनें बन जाती है उम्र भर की निशानियाँ।

अब सुनिए ये सूचना। जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्यों में निर्धारित तिथियों के अनुसार 16 जून 2026 से 15 जुलाई 2026 तक किया जाएगा। इससे ठीक 15 दिन पूर्व यानी 1 जून 2026 से 15 जून 2026 तक स्वगणना का विकल्प भी सभी हिमाचल वासियों को उपलब्ध रहेगा। निवासी sc.census.government.in पोर्टल पर जाकर स्वयं अपनी जानकारी भर सकते हैं। जनगणना 2027 का कार्य डिजिटल माध्यम से संपादित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रगणक एवं पर्यवेक्षक मोबाइल डिवाइस अथवा निर्धारित एप्लीकेशन के माध्यम से सूचनाएं संकलित करेंगे।

प्रथम चरण में मकानों की स्थिति, परिवार को उपलब्ध सुविधाएं तथा परिसंपत्तियों से संबंधित कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत जनगणना में दी गई सभी जानकारी गोपनीय होती है तथा इसका उपयोग केवल नीति निर्माण एवं अनुसंधान कार्यों हेतु किया जाता है। धन्यवाद। युवा साथियों, अब बात करते हैं दोस्ती की, वो रिश्ता जिसे हम खुद चुनते हैं, स्कूल की बेंच से लेकर कॉलेज के कैंटीन तक, और फिर जिंदगी की भागदौड़ में जो साथ खड़े रहे वही दोस्त होते हैं। हमारी जनरेशन ने दोस्ती को सिर्फ महसूस ही नहीं किया बल्कि गानों में जिया भी है। दो पंक्तियां पेश करना चाहूंगी साथियों। दोस्ती वो नहीं जो तस्वीर में दिखाई दे, दोस्ती वो है जो मुश्किल वक्त में सुनाई दे। और ऐसे ही दोस्तों को समर्पित है हमारा अगला गीत।

दोस्तों, अब बात करते हैं माता पिता के प्यार की। अगर हमारी ज़िंदगी एक किताब है तो उसके पहले लेखक हैं हमारे माता पिता। उनकी दुआएं अक्सर हमारे सपनों से बड़ी होती हैं। हमारी जनरेशन शायद अपनी भावनाएं कम जताती है, लेकिन जब भी कोई ख़ास गीत बजते हैं, दिल अपने आप माता पिता के लिए भर आता है। अगर आप इस वक्त अपने माता पिता के साथ हैं तो उन्हें बस एक बार मुस्कुरा कर देख लीजिए। भावनाओं से भरे इस सफर में अब वक्त है एक और गीत का।

दोस्तों, अब बात करते हैं प्यार और मोहब्बत की। और मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हर किसी की कहानी अलग होती है। किसी के लिए प्यार एक मुस्कान से शुरू होता है, तो किसी के लिए एक दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदल जाती है। हमारी जनरेशन ने प्यार को चिट्ठियों से लेके चैट तक और इंतज़ार से लेके वीडियो कॉल तक हर रूप में महसूस किया है। लेकिन दिल की धड़कने आज भी वही है जो पहले हुआ करती थी। शुरू के सिलसिले को जारी रखते हुए सुनते हैं ये प्यार भरा गीत।

दोस्तों अब चलते हैं अपने सपने और जुनून की तरफ। हर जनरेशन की अपनी एक पहचान होती है और हमारी पहचान है बड़े सपने देखने की। इसीलिए हमारी पीढ़ी को ड्रीमर्स भी कहा जाता है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां लोग अपने जुनून को ही अपना करियर बना रहे हैं। कई बार रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन हर छोटी जीत हमें मंजिल की ओर ले जाती है। और जब हौसला कम पड़ने लगते तो कुछ गाने हमें फिर से खड़ा करना सिखा देते हैं। और अब वक्त है ऐसे ही एक मोटिवेशन से भरे गाने का।

दोस्तों, कुछ गाने सिर्फ टाइम मशीन होते हैं। हमारी यादों का हिस्सा, हमारी भावनाओं की आवाज़ और हमारी जनरेशन की पहचान भी होते हैं। उम्मीद है इन गानों ने आपको आपकी ज़िंदगी के कुछ खास पलों से दोबारा मिला दिया होगा। अब मैं दिव्या ठाकुर लेती हूँ आपसे विदा। नमस्कार।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ट्यून इन हैं एफएम शिमला के साथ। 4 बजे का समय है और आप सुनेंगे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में लीजिए सबसे पहले एंजॉय कीजिए कुमार सानू की आवाज में फिल्म दिल का क्या कसूर। जी हाँ, इसी का गीत सुनेंगे आप। गीतकार हैं नवाब आरजू और संगीतकार नदीम श्रवण।

फिल्म संगीत में ये आखिरी गीत आप सुनेंगे कुमार सानू और अनु मलिक की आवाजों में फिल्म बाजीगर से। गीतकार हैं देव कोहली और संगीतकार अनु मलिक।

इसी के साथ समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। अपनी रेडियो दोस्त नितिका को दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, आप बने रहिए AIRFM शिमला के साथ। एक सौ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन हैं FM शिमला के साथ। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। अब हमारे कार्यक्रम FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुने जा सकते हैं। आकाशवाणी शिमला से अब प्रस्तुत है हिमाचली कार्यक्रम। आरंभ में आइए सुनते हैं सिरमौरी कार्यक्रम।

तू सभी सिरमौरी कार्यक्रम सुनने वालों के मेरी राम राम। तू लिया सुनी इस समय आकाशवाणी केंद्र शिमला दा सिरमौरी कार्यक्रम। हाँ मनीषा, तुम्हारी लिए अब बात करूँगी। जनगणना और आयुष्मान भारत योजना और गर्मियों में बच्चों की देखभाल कैसे करें के बारे दे। इंद्रे साथ साथ में लोकगीत रा भरपूर आनंद लोंगे। तो सबसे पहले बात करूँगे जनगणना रे बारे दे। जैसे तुम्हें सुबिया पता हो जे जनगणना होने लगी आज कल, तो जनगणना 2027 रे प्रथम चरण मकान सूचीकरण और मकानों री जनगणना रा आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा निर्धारित समय रे अनुसार 16 जून 2026 से 15 जुलाई 2026 तुड़ी के जाले। इंद्रे ठीक 15 दिनों पहले या 1 जून 2026 15 जून 2026 तुड़ी तू अपना जनगणना ऑनलाइन पोर्टल गाय कर सुख दियो सो। ऑनलाइन डी जो वेबसाइट ओसो से ओसो c.sins.government.in

तो ये लोकगीत सुनो मैं देवेंद्र ठाकुर जी रो। अब बात कर दी आयुष्मान भारत योजना रे बारे दे। आयुष्मान भारत योजना री शुरुआत 23 सितंबर 2018 दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रांची रे झारखंड दे के गए थे। यह योजना शुरू करने रा मुख्य उद्देश्य ऐसा थी आजे जो गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार और गंभीर बीमारियों रे इलाज के ज़्यादा खर्चा बचाने के यो योजना री शुरुआत किए गए थे। इन्हें फ्री स्वास्थ्य सुरक्षा प्राप्त करने थे। भारत जो आधे से ज़्यादा लोग हस्पताल और खर्चे के कारण कर्ज दी डूब जाती ओसो जो बहुत ज़्यादा गरीब ओसो तेनों कर्ज देशी बचाने के आयुष्मान भारत योजना री शुरुआत की। इन्हें फ्री इलाज री सुविधा प्राप्त ओसो जे कोसी गरीब परिवार दे बड़े या गंभीर बीमारी लागो जैसी कैंसर दिल री बीमारी किडनी री समस्या आदि ऐसी बीमारी के सरकारी हस्पताल दे एक परिवार के हर साल एक एक साल के 5 लाख तुड़ीरा मुफ्त इलाज मिटलाइंदा। आयुष्मान भारत योजना गरीब और जरूरतमंद लोगों के फ्री स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं प्राप्त करने ओसो और जो बड़ी बड़ी गंभीर बीमारी जैसी बीमारी रा इलाज के आर्थिक बोझ कम करना और सभी लोगों के अच्छी स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने थे। गांव और दूरदराज के क्षेत्रों के स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करनी थी और स्वास्थ्य क्षेत्र दी समानता और सामाजिक सुरक्षा के इंदा बढ़ावा देना थिया। आयुष्मान भारत योजना दा हर परिवार के हर साल 5 लाख रुपए तोड़ी इंदा इलाज फ्री होला और इंदी परिवार रे सदस्य री संख्या या आयु री कोई सीमा न थी। देश दी तुई कुत्थी बे सरकारी हस्पताल दी अपनी अपना इलाज इलाज री सुविधा प्राप्त कर सक दियो सो। आयुष्मान भारत योजना रा देश भर दा करोड़ लोग के इंदरा लाभ उठाया और गरीब परिवार है वे बिना आर्थिक स्थिति री चिंता वगैरह हस्पतालों दा अपना उपचार करा। ये योजना विशेष रूप से हृदय रोग कैंसर किडनी और अन्य भी गंभीर बीमारियों रे इलाज के सहायता प्रदान करो सो। यो योजना रे कारण लाखों परिवार है कर्ज लौनो और अपनी जमीन बिकनो री जरूरत पड़ी थी। इंदिरा वो का महत्वपूर्ण हिस्सा है दर्शक जे स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र ओसो एनो केंद्र रे माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं जैसे टीकाकरण और माँ और छोटू री स्वास्थ्य सेवाएं तथा बीमारी री रोकथाम संबंधी सुविधाएं प्रदान की जाती। इन्हें नए लोग को अपने क्षेत्र की बुनियादी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध होंगी सो। आयुष्मान भारत योजना भारत री एक ऐतिहासिक और जन कल्याण पहल सो। यही योजनाएं करोड़ों गरीब और जरूरतमंद लोगों के स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की। यूँ योजनाएं स्वास्थ्य सुविधा आसान बनाए और गरीब परिवारों के राहत मेटे इलाज करने दे। आयुष्मान भारत योजना भारत स्वस्थ और सशक्त राष्ट्र बनाने दे महत्वपूर्ण भूमिका निभाओ सो। आयुष्मान भारत योजना देश के स्वास्थ्य क्षेत्र दी एक क्रांतिकारी कदम ओसो जो स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत रे लक्ष्य साकार करने दे सहायक सिद्ध हुई रहे। यो योजना गरीब और असहाय लोगों के वरदान सिद्ध हुई ओसो। इंदेरे कारण गरीब लोग के अपनी बीमारी ठीक के और कर्ज लोनों से बची। ये बात क्यों है आयुष्मान भारत योजना रे बारे दे अब सुन दी एक लोकगीत चर्चा रोली जारी।

एब समय होए रा सिरमोरी कार्यक्रम रे समाप्ति रा, गिरी मिटियोंगे अगले शुक्रे मुख दे हुई इजाजत, तुओ सोबिक मेरी राम राम।

सिरमौरी कार्यक्रम अभी आपने सुना। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। हिमाचली कार्यक्रम के अंतर्गत अब पेश है महास्वी कार्यक्रम।

आकाशवाणी शिमला 24:51 टोगा और श्रोताओं आज 1200 अवतार और हर अवतारे इसी वक्त चालो तुम्हारा अपना पसंदीदा कार्यक्रम नाव सो महास्वी कार्यक्रम। महास्वी कार्यक्रम सुनने वाले बद्दे श्रोताओं के सभी दुपोले देविंदर शर्मा दीपोई शिलूरी धांधु हाथों जोड़े और ढाल श्रोताओं हमें सब दुपोले एज उम्मीद आज भी करो कि हर माच ठीक होने चाहिए, खास करके जो हमारा हमारे जो श्रोता हो से बढ़िया होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, तंदुरुस्त होने चाहिए, मस्त होने चाहिए, क्योंकि जो हमारे श्रोता हो तेनोरी प्रतिक्रिया तेनोरी कार्यक्रम सुनने की चाहना इच्छा ही आमों भी प्रेरित करो जे हमें कार्यक्रम केरा और बढ़िया तरीके साथ पेश कर सको है। फिलहाल श्रोताओं हमें सब जने जानो यो कि हमारी इति सभ्यता संस्कृति हो जे इथा हर देशोरा कोई खास महत्व रो यो है और आज सो 14 तारीख मीना जून रा 14 जून रा मनाया जाओ विश्व रक्तदाता दिवस। 2026 रा थीम त्यो भी छाड़ छाड़ आओ से सो वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स, यानी कि मानवतारी जो एक बूंद खून देओ जीवन बचाओ। ऐसा देश स्वैच्छिक रक्तदाते सम्मानित करने तो सुरक्षित रक्त री आपूर्ति री आवश्यकता गाए जागरूकता फैलाने के मनाया जावे। और जो 14 जून रा देश हो इंद्री का खास से तो कई मनाया जाओ और कोसी का इंद्र पसरा महत्वपूर्ण बिंदुओं है। तो 14 जून दा एक कार्ल लैंडस्टीनर तेनोरा जन्मदिन हुआ था जेनिए ए बी ओ जो रक्त समूह हो इं प्रणाली री

खोज की थी। आज जो मैं अपन हॉस्पिटल डे हो अपना रक्त चेक कराओ, खून चेक कराओ, जो मारा कौन सा ग्रुप हो तीन तो बोलो जाओ ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ओ फलाने फलाने कोई ग्रुप समूह हो। तो जो इन देरी शुरुआत हो से ए बी ओ री खोज करो कार्ल लैंडस्टीनर एनए की थी और एनोरा आज के दिन से ही जन्म देश मनाया जाओ है। तो सब जो बोले तो विश्व रक्तदाता देश और जो से बाध्य श्रोताओं के हमें शुभकामनाएं दे। और यहीं दू अलावा श्रोताओं हमें सब जो जान रही हो कि यूँ भाई जो हमारे देश दियो जनगणने का काम भी चल रहा हो और खास करके हमारे जो हिमाचल प्रदेश दियो इन देरी ज़्यादा ही महत्व सोए और जो भारत और सो भी जनगणना हो इन देर ये दुई चरण दियो लागियो और हिमाचल से बर्फीले राज्य के जे हम हिमाचल विशेष तरह बात करते हैं बर्फीला प्रदेश हो ये देखे अलग ही शेड्यूल ओसो है। हिमाचल का पोल का जो चरण से 16 जून 2026 से चला 15 जुलाई 2026 तक के आयोजित किया जाता हो। पोल के चरण दी हाउस लिस्टिंग तो यो हाउसिंग जनगणना की जाती हो। इंदर जो उद्देश्य से गौर और स्थिति सुविधा संसाधनों तो यो संपत्ति का विवरण दर्ज करना सो है। मोबाइल ऐप तो यो डिजिटल पोर्टल के माध्यम में डेटा संग्रह किया जाता हो। जनगणना रा हिमाचल का जो दूजा चरण से 11-30 सितंबर ताई बर्फीले क्षेत्र का आयोजित किया जाता हो जबकि रेकी जागे 9-28 फरवरी 2027 ताई के किया जाना हो। नागरिक 1-15 जून 2026 ताई ऑनलाइन स्वयं गणना भी कर सको है। सेंसिस एक्ट 1948 तहत नागरिक को सही जानकारी देनी भी जरूरी हो सो गलत जानकारी देने या प्रक्रिया दा बाधा उत्पन्न करने के जुर्माना भी लग सको और सजा ताई भी हो सको है। तुम्हारे सोई सोई जो से जानकारी भी देनी हो। थोड़ी बातचीत भारतीय जनगणना 2026-27 बारे दी थी। अब हमारे शुरुआत दो एक बढ़िया जो लोकगीत सुन लो तो श्रोताओं तुम्हें भी सुनो और मारे भी इतने बुठ्यो यो नाटी साथ झूमने।

ढोले जा मेरे बोलो टीलुआ। श्रोताओं, एजी आवाज थी विजय शर्मा री। और मारे जो पूर्वजों से खेचो दो होल चलाओ थे, और जो आसमान और इधां देखे बोलो थे भगवान बरसात भेज। लेकिन आज का जो किसानों से खेचोरी मेंढो का से सोलर पैनल लायो, आसमानो दू बोलो हे भगवान हे सूर्य देव बिजली भेज। ऐजाई बदलाव बोलो जे सोलर एबे भविष्य नहीं वर्तमान री भी जरूरत बन गुआओ। तो श्रोताओं, आज मारे कार्यक्रम दी भी बात करनी जे सोलर संयंत्र भविष्य री जरूरत कह रहे सोए। आज की दुनिया ऊर्जा संकट तो ही पर्यावरण प्रदूषण जैं गंभीर समस्या दू जूझ लागियो। एरे दी सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य और जो शक्तियों से अमोखे सभी दू बोड़ा समाधान बोण्यो उभर लागियो। सोलर संयंत्र भविष्य री जरूरतों ऐजा विचार ना केवल तकनीकी दृष्टि दू सही हो, बल्कि पर्यावरण तो ही आर्थिक दृष्टि दू भी हदई महत्वपूर्ण असो। कोयला पेट्रोल खत्म हो लाग्यो, बिजली री जो मांग से बढ़ लागियो, और जो प्रदूषण ने तो सांस लोना भी मुश्किल कर पाओ। एरेदा सोलर संयंत्र यानी सौर ऊर्जा प्लांट एबे विकल्प ही नहीं, आईने आए वक्त री जरूरत भी बन गई हो। सोलर संयंत्र सेजी जागाओ जेथे सोलर पैनल लायो, सूरज री रोशनी करो बिजली बनाई जाओ। गौर रे छतोगाए स्कूलों दफ्तर री छतोगाए एक ही दू 200 किलोवाट ताई रे पैनल लाए जा सको। हजारों एकड़ जमीनों दे लाखों पैनल लाए जा सको, जे रे कि राजस्थानों रा भड़ला सोलर पार्क ओसो जू दुनिया रा सभी दू बड़ा सोलर पार्क ओसो है। श्रोताओं, सौर ऊर्जा भविष्य री जरूरत कह रही हो कुछ बिंदु इंदे रहे हो, जे रे कि अक्षय तोई असीमित स्रोत हो। सूरजों दू मिलने वाली जो ऊर्जा से असीमित असो मुफ्त असो है। जेती ताई सूरज अस्तित्व दाओ तेती ताई एजी ऊर्जा भी मिलते रहो दियो, तो एजी बात तो ध्यान दे छाड़ो, आमे यही भविष्य की जरूरत भी मान सको, यानी कि हमारा जो भविष्य हो से सुरक्षित हो सको, अगर आमे सोलर सिस्टम प्रयोग दे कर ले। रेका बिंदुओं जे पर्यावरण रे अनुकूल भी असो। सौर ऊर्जा रे उत्पादन दा क्यों ही प्रकारों रा हानिकारक धुआं या गैस नहीं निकल दियो, जैसे करो प्रदूषण नहीं होता। ए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों कम करो, और जो जलवायु परिवर्तन दू लड़ने दा भी सहायक हो। अगला बिंदु बिजली बिलों दी भी बचत। सोलर पैनल लाने बस ये बिजली रे बिलों दी भारी कमी आ जाओ, एक ही भी इन्वेस्टमेंट करने बस ये ए सालों ताई मुफ्त ऊर्जा प्रदान करो है। अगला बिंदु न्यूनतम रख रखाव। सोलर पैनलोरी जो रख रखाव लागतों से हद कम हो, यही सालों दी सिर्फ कुछ भी साफ करने की जरूरत हो। और जो इंद्र एक अगला बिंदु से हो ऊर्जा आत्मनिर्भरता।

देशो तोई मछो ऊर्जेखे रेके स्त्रोतों का निर्भर नहीं रोना पड़ता। खासकर ग्रामीण तोई दूर दराजोरे इलाके दी सौर ऊर्जे को यो बिजली पहुंचाई जा सको है। निष्कर्ष रे तौर दो बोलो जा सको जे सौर ऊर्जा बिजली रा एक टिकाऊ तोई किफायती स्त्रोत सो। ए आमोखे उपलब्ध नवीकरणीय ऊर्जा रे सोबिदु महत्वपूर्ण स्त्रोत मुझे दु एक ओसो ओजो आईने आए सालोदा इंदिरा महत्व और भी ज्यादा बढ़ने री उम्मीद सो है। वास्तव दी 2050 ताई सौर ऊर्जा री संसारोरा प्रमुख बिजली स्रोत बनने री संभावना ओसो है। सही निवेशो साथे आमे एई और भी शिगा हासिल कर सको ओजो एजा भी सुनिश्चित कर सको जे आमे आईने आई पीढ़ी खे बिजली रा एक टिकाऊ तोई विश्वसनीय स्रोत प्रदान कर दे लाग रो। मारे पूर्वजे भी बोलो थो जे सूर्य देवता खे अर्घ्य देओ। आज सजाई सूर्य देवता आमो खे फ्री दी बिजली देंदा लाग रहा हो। कोयले धुआं देओ तेले तेले जो से लड़ाई दी थी पर सूरज सिर्फ रोशनी देओ है। अगर आज आमे सोलर नहीं अपनाऊ ले तो आईने वाली पीढ़ी जरूर पूछली जे वर्षों रे लगभग 300 देशों ताई तो दो वाले देशों दू ही ना रोके ही हो तबे तो सोलर संयंत्र लाने शौक नहीं आईने वाली पीढ़ी के मारी जिम्मेदारी सोए। ऐसी बात याद छाड़ियो सोलर अपनाओ भविष्य बचाओ। जे सूरज चमकला तो भारत भी जरूर दमकला।

छोतेरे छिड़को बेंतोरे डांडे भाणजिए बेंतोरे डांडे। श्रोताओं, भाणजीरी एजी नाटी तुए सुनी और आवाज थी शारदा चौहान जी। इजो गीत जे काफ़ी प्रसिद्ध भी हो तो काफ़ी गाओ भी जाओ तो पोल के बोक तो दो। और एबे जो मारे बातचीत सुन कौनियो से कौनियो भारत सरकार और धांधु चलाई गई हद सारी योजना मुझ दू एक खास योजना हमें कार्यक्रम दे शामिल कर छाड़े तिन्हरे बारे दे। आज़ादी पाने बस ये हमारे देशे हर क्षेत्र दे काफ़ी उन्नति की हो। वक्त वक्त दे हर सरकारें मच्छोरे कल्याण के तेनोरे फायदे के हद सारी योजना चलाई हो जैसे करो मच्छो के काफ़ी फायदे मिलते रहो। तेनो हद सारी योजना मुझे दू एक योजना आज हमें कार्यक्रम दे शामिल कर छाड़े जिंदरा नाव सो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जेरा कि नाव कर पता चालो जे यो योजना रा संबंध सालो फसल साथे जुड़ा हंदा सो है। क्योंकि भारत किसानों रा देश माना जावे, भारत रे 70% माछो किसानों सो है जो खेचो दी खूब मेहनत करो देशों रे माछो रे पेट बोरो है। अफसोसरी बात तो एजो जे आज़ादी रे एट्टे वर्ष उबासी भी मारे देशों रा किसान आत्महत्या करने के मजबूर हो जाओ। आत्महत्या करो मांडो जोबे स्कीम जोबे एक योधा नीनो लोन पूरी सालों कोने खेचो दे खूब मेहनत बस ये यानी मिलने डोंगरे रेट या होने फसल खराब। फसल खराब होने बस ये जोबे तीसरे छेड़ू छोटू भूखे मोने रे नौबत आ जाओ रे क्यों धा उदार नियो होंदो कर्जा बढ़ दे रो तो से किसान मजबूर हो आत्महत्या करो है। तब तो किसानों री फसलों रे संबंध दी अनिश्चितता दूर करने री ताई नरेंद्र मोदी री सरकार 13 जनवरी 2016 दी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मंजूरी दी। इो योजना रे अंतर्गत किसानों री फसलों के प्राकृतिक आपदे करो जे कोई नुकसान होला तो किसानों थोड़ा ज्या प्रीमियम दे यो सरकार तेसी नुकसानों काफ़ी हद ताई कम करने दी मदद करो। एजी योजना भारत रे हर राज्य दी तेथेरी सरकारों साथे मिलियो लागू की जा लगियो। योजना रे अंतर्गत किसानों खरीफ री फसल के 2% और जो रबी री फसल के 1.5% प्रीमियम भुगतान करना पड़ता। सरकारों री धांधू सब्सिडी दी उबेरी सीमा कुछ भी नहीं होती, मतलब बोचा होंदा जो प्रीमियम सेवाओं 90% के नहीं होला तई सरकार आप ही दे दियो या बीमा कंपनी दे दियो। यो योजने करो किसानों रा मनोवैज्ञानिक दबाव भी काफ़ी कम हो जाता हो। खास बात तो एज भी हो जे अगर फसल के नुकसान होला तो नुकसानों री भरपाई जो बीमा कंपनी सरकारों के दिली

पहुंचे कंपनी या सरकार किसानों रे खाते दे ऑनलाइन पांदे हो, तेनो कोई फॉर्मेलिटी कोनेरी जरूरत नहीं होंगी। तो हमें सीधो सीधो बोल सको जे एबे किसानों आत्महत्या कोनेरी जरूरत नहीं पड़ी। तो एजी हमारे भी उम्मीद हो जे एबे जो हमारे किसान बागवान गोरो गांव दे खेती बाड़ी के कामों दे लागे दे हो, और से थोड़े एजे जियो दो जीरो सोचो है कि भाई पता नहीं कितनी है नुकसान नहीं चाहिए, साल फसल खेवा मारे छिड़ छूट भूखे नहीं मरनी चाहिए। तो यो योजना साथ तुम्हें जरूर जुड़ियो, अगर कितनी मानव ज़्यादा ओले पड़ गए, तूफान आ जाओ, सूखा पड़ो, या किए रेके कौन जी भी आप दे करो, अगर मारे फसल खराब होले तो यूँ योजना साथ अगर तुम्हें जुड़े दे वाले थोड़ा सा प्रीमियम ध्यान डाला, तो बाकी जो नुकसान होती देरे भरपाई सरकार या कोई कंपनी कर दियो। श्रोताओं एबे हमें कार्यक्रम रे आखिरी पड़ाव गए पहुँच लागे हो, और जेती ताई कार्यक्रम दे खबरसार पेश नहीं की गए, कार्यक्रम आधा अधूरा ही माना जावे। तो खबर भी हमारे जरूर सुनानी हो, क्योंकि खबर भी बिल्कुल आमो देश विदेश साथे रूबरू करो जुड़ाओ। पोल के खबरों जे कांगड़े दू छोड़ो प्रदेश रे बदे जिले दे हे भी जो प्रधानों उप प्रधानों निर्वाचित किए गए हो, तेनोरी दोत यानी कि 15 जून दी शपथ दिलाई जाती हो। संशोधित कार्यक्रम रे अनुसार कांगड़े जिले दी 18 तारीखों दी इसी महीने 18 जून दी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू प्रधानों तोई उप प्रधानों दू शपथ दया दो। दोत शपथ ग्रहण समारोह जिला स्तर गए आयोजित किए जाते हो। अगले खबर हो आयुष मंत्रालय आज यूट्यूब गए आयोजित एक ही लाइव सत्र रे जरिए नवा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड चढ़ा। ऐसी ऑनलाइन योग कार्यक्रमों दे 4,35,000 ज्यादा माछे भाग लोआ। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधवे बोलो जे एजी उपलब्धि दुनिया दी योग री बढ़ती लोकप्रियता दर्शाओ, तेनिये माछो दू योग अपनी दैनिक दिनचर्या रा हिस्सा बनाने री अपील भी करियो। एक खबर तो यों जे कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी बोलो जे सरकार ग्रामीण क्षेत्र दी खेल गतिविधि के बढ़ावा देने के प्रतिबद्ध असो है। सोलन जिले री अर्की दा विशाल दंगल कार्यक्रम दा तेनिये बोला जे खिलाड़ियों के सम्मान तोई प्रोत्साहन देने रे उद्देश्य करो राज्य सरकार पुरस्कार राशि दी ऐतिहासिक बढ़ोतरी करियो। तेनिये बोलो जे युवे नौशे दूर छाड़ने तोई तेनोरे शारीरिक विकास और दी खेल वाली गतिविधि अहम भूमिका निभांदी लाग रही हो। ये थी खबर साथ श्रोताओं, डेंदे डेंदे एक क्षेत्र वाला तो ही हो तो।

महाश्वी कार्यक्रम अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी के शिमला के इंद्र से बोल रहे हैं। हिमाचली कार्यक्रम में आइए अब सुने किन्नौरी कार्यक्रम।

प्रोग्राम रचित भाई सही नमस्कार जो आकाशवाणी शिमला के अंदर तो जो प्रोग्राम कल्पा रंगकुल्लू रिले के अंदर संग एफएम शिमला जेरे लिया जो तो उनके प्रेम काश ने की तो रुसु की नोरिंग प्रोग्राम लिखी साज तो ने भाई से दुख आशा तो के किना चाहिए कि राजेश खुशी निर्देश मान यहाँ दुख खेता दुख तोरोता जो विश्व जो रक्त दाता दिवस धुने हो यानी कि पुलाच दान लाने से दिवस मना धुने तोरो बोसो कोमो खेता तोरो दारो यानी कि सब जून में जो हर बोसो सब जून में जो जो विश्व रक्तदान दिवस मनावनी हो जो कशा न्यू मीगानो से कु मीगानो को जो जागरूक कराया होता ऐसी मनाया कि भाई ताकि पोला चरण तेता धर्म का उंगनी हो पोला चरण जेता महादान दो का बोधी थिति दान वा दुनियो थुनो ना कशो सांदा पोला चरण मीऊ जान बचनी हो दोक आर कशा पोला चू दान लन्ना तक मा है मजा सा कि भाई अग्नि तक घटो पोला तो गता है जो हाथों पोला गई गई शीतोक हरे माँ जितने हो ई हफ्ता हो या ई गोलू कुमो हे न्यू पोला छ जितने हो इत स्वस्थ मी पंग अगर सारे बशंका या निजा बशंका थोड़ा मी स्वस्थ मी तो दोगानू खेता बोसो शुम शुम गोल बोसो कुमो खेल निश्चय शुम पोलटंग कशा पोला दान लन्ना दो थी मा फरक मा पड़े हो आई है नि तो कशा आस्था लो खेता दो इत स्वस्थ मी गो पोला दान है रे मारे कि भाई कशा टोटो तो ने दो कशा पुला गटो रे कशा दान रनो तो ले हमले दान रनो विशोधन के अंदर डॉक्टर पहले जान जान चित कशानो कशानो पुला रन लायक नहीं मातंग मा दोखी पुला तो अन्यो दोखे मतलब सा कि भाई कशा भाई पुला हला रन से आने मारे तो ले जांच जान जांच पड़ताल रन नहीं दो पुला जो जे तक कशा दाने उन चाहे दाने रन बाकी चीज़ों मी दिंग से ही चीज़ों ने जो पोलाचन हो उनका एक किस्म ग्रुप ग्रुप नहीं हो ए बी पॉजिटिव रहो ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ओ पॉजिटिव बाकी ए बी नेगेटिव ओ नेगेटिव बी नेगेटिव ओ दुख ओ नेगेटिव है ले पोलाच माओ ग्रुप है दूर नहीं हो तो ई पा जो खेता तो खुन जो ग्रुप से जे से चीज़ों नीच दुख पोलाच होते हैं इस कशा जो कशा इत बदंग दो कि भाई हाथे नो खेनता तो ओ पॉजिटिव क्या करनी दंग कई बार आस्थालो मनी हुआ तक वहाँ माँ अगर ओ पॉजिटिव से आनी हुआ ठीक नहीं हुआ तक वहाँ या तक नो ए बी नेगेटिव क्या करनी माँ माँ अगर ए ए नेगेटिव माओ पुलाद नहीं हुआ तक वहाँ दंग बी रन तेता धर्म का वंग कि भाई यहाते मी नो जान बचन ना तक वहाँ तेता धर्म तो वैसे तो जो धर्म काम लनु बेरंग कशा जो संतंग स्वांगो बीबिया शू रंग खेता मी गा हुन गता हुन गीता उसे दुख उसे दुख

रामायण सो जुन मन्दिरमा बि तु खता पूजा पाठ लन् दुख दुख दो दे त म जगह दो जगह त ठिक दो दो कथा नि इत कसान हो दुख पोला तु दान लङले दो इत वाल सेवा वा सेवा लिन्दो दोले इत पुण्य कमाङ निन्दो दोले नि दो वैसे आई जुरंग साथी कसा तोरो बत्यासे कि भाई जु निसदा निजौ सित तिस म्या खेन्दा जु इत जनगणना अचिदा दुन्यो न्युग जन डिजिटल भारत को मोदो इत जनगणना जरा दू दोस्तों में जो कहता है चेपी जो बताया शुरू दुखी देश हो पूरा जनगणना निश्चितार सताईस नो दुख जो चर्चा दू कि भाई जो जनगणना कई मायनो जो ऐतिहासिक हची जा दू थोड़ो ना जोर कहता भारत जैन ओम जो बेरंग यानी जैन ओम सु बेरंग जो पहली बार मतलब कि जो जनगणना पूरा तरह डिजिटल माध्यमिस लानो दुछ जनगणना कर्मी मोबाइल एप रंग डिजिटल तकनीकी उपयोगी सी जो जानकारी एक इकट्ठा लानती जो बेरंग नारिकों कसानो खेद मीगर कसानो कसानु ऑनलाइन जानकारी पंगमो सके तो यानी कि जो सेल्फ एन्यूमेरेशन रो दुख जो इत सुविधा कैसी दुनियो दुख जो माध्यमिक कसानो जो जानकारी पंगमो ज्ञान छा दुनियो जो प्रख्यो बोधि दुख दाम ले दू दुख आय हासिल लिया चो जोर पारदर्शिता ले दूनी हो जो जनगणना जनगणना निश आधार निजाओ तीस म्या इत जो विशेषता जो दू कि भाई जनते इत जो विशेषता दू कि जोर इत जातिगत जनगणना ले शामिल ना सीधू जोर थूलो ना कसान देश प्रदेश हो मुलुक प्रकार जाति गानी हो दुख दोगा नोले दुख दो जो जनगणना हाथ जो पता रहे हज जाति सेगा गरीब तबका दक शिशु हज जाति सेगा बोधी थोड़ा शिशु तो हाथे खेद युवाई जग शिशनीमा तकमा दोगा नो तई स्थित सिक्किमो जो रहा हूँ तई सी दुख जो जातिगत जो जो जाति गणनाले जगत जननाले शुरू लाइन सी दुनो जोर कसा थे पंक्षो जल्दी जानकारी रखो दो मामांग जोर ईमानदारी जो चे दंग थूल ना दुख दुख में ख्या ख्या दुख सरकारी जो बच्चा तैयार हो चू दुख जो जो जनगणना निशदा सदाई छू पंख्या ख्या दुख आगे बच्चा तैयार हो चू दुख कहता सिक्किमो जरा दिन दुख देश तई सुख मी तई सुख चेक तई सुम जरा दिन कसानु जुले जो ज्ञान की जो जनगणना निशदा सदाई छो कसा भागीदारी पंग निभाया इत सशक्त रंग विकसित रंग डिजिटल भारत निर्माण माओ कसान योगदान रनु कसान जिम्मेवारी दू मनिया वैसे दुख जूता तुके जनगणना बारे हो तो कच्चा दुख शानदार दुख इत गिथंग चे मनिया।

भाई सही जो कि थैंक दो जी छे कशा सा इन पहले सुगा दो कि थैंक दो क सांदा खें दो क जानकारी से तो कशे तो कशा नू तारा देवी माता मंदिर बारे हो सान जानकारी पता से मनिया खें दो क उन मंदिरों ता कशा जगह जो चे मशहूर हो मंदिरों दो जी दोगले हुन शिमला बनो निपे कशा अगर तारा देवी मंदिर माई में आता हुआ तो थे भी शिद नहीं थे क्या शिद दो तेता तारा देवी माते माता जी दो जो दुर्गा माता वो मंदिर दो तेता मशहूर दो हदे ही दो तो शिमला जेता मंदिरों आए ले तो उसमें मशहूर मंदिरों तो उसने दो क्या कालीबाड़ी मंदिर दियो जाखू मंदिर दियो आई संकट मोचन दियो मगर दोगले ख्या जुबन ख्या ख्या तारा देवी माता मंदिर आने इत अलग ही दो पहचान दुष्ण हो दंग भीमू ही दोगने पेले कशा वाल अह भी लचित की कशा आए चाल से उसकी भाई वाल स्वर को पशे देस वाल दम दे साल बस दंग खेता डोखाऊ दन थवा दोकुन दुंग चे को चाहिए मंदिरों से दुंग डेना से नेहलो जंग क्या चाहिए शिमला शिमले आसु यार नेहलो डोका या शिमला आसु नज़ारा का वाल दम टाइम बंदी हो हरी दुक्त तारा देवी माता मंदिर जी दे माता जी देर कशानो मन्नत तो पूरा लंदी हो दहल देवी माता माँ मन्नत पूरा लंदी हो दुख खेता हिमाचल प्रदेश राजधानी ने रही दुख जो इत वाली प्रसिद्ध मंदिर धार्मिक रंग पवित्र स्थल दुष्की तारा देवी मंदिर तोष्णियों जो जानकारी के रो थो तारा देवी मंदिर हिम शिमला रंग काल का राष्ट्रीय राजमार्ग को ने रहे इत खेंदा तेक ऊंचाई दिन डोकाऊ दिन थवा दुष्णियों जो जो ऊंचाई खेंदा समुद्र तल दंग ते मैच ई हजार इस रह रहा निश्चित जाओ 100 मीटर ऊंचाई दिन जो मंदिर तो दुष्णियों जो खेंदा बीमूल पे खेंदा ओम स्मरा का तेता प्रकृति सौंदर्य रंग आध्यात्मिक शांति वो इत अद्भुत संगम प्रस्तुत है चीनो यानी कि कशा खेंता इता दंग थोड़ा भी मेरे मंदिरों भी इनपे इता नेहलो क्या क्या कशा हता मोरंग खुश हचित की भाई खुशहाली दुख हचित की भाई ताकि तदा नज़ारा का टाइम बज नेहलो वाल शरे शरे द प्रकृति जो नज़ारा का टाइम बज दो रंग साथ साथ कशा मंदिरों भी इनपे कशा नो अंतर आत्मा ने वाल शांति पर कि भाई मंदिरों दो कशा दो जो निश की चीज़ों कशा कहता है ये इपंग भी निश चीज़ों ने फायदा पड़े कि भाई मनवा इपा कशा हम सुंग या तो नज़ारा का दम नीच दंग अगर थेता चीज़ों मारी नीच या अंतर आत्मांग शांति में पड़े जंग खेद अंतर आत्मांग ले सुखंग पड़े नहीं हो तक जो चीज़ों निश्की चीज़ों जंग कशा तारा देवी मंदिरों भी जो निश्चित चीज़ों पड़े में हो टाइम बस आई जंग शिमला ने रहो तो दो टाइम दो श्रृंखला गाले आई वाल दम दम नज़ारा टाइम ची दंग आई जंग खेद श्रद्धालु का रंग पर्यटकों तय से निष्कुई वाली आकर्षण केंद्र दूसियों दूनियो जो मंदिर दुख ओम सरंग हरे खेदा दुखन अगर शिमले बब तारा देवी मंदिर माई में आता तो भी क्षेत्रों मणिया हदि तक जो दूरी हो जो मान्यता दो उसकी माता तारा देवी मंदिर शक्ति स्वरूप देवी दुर्गा इत रूप दुष्णी हो जंग जो लोक कथा नो मुताबिक खेता जो ई शत मनुख शताब्दी

का ओमसो सेन वंशिस्चु राजा गासी जुमाताओ प्रतिमापं बंगालोचक का जंग स्थापित नशिन्यो दोक जंग चुस्तान दोक के जंग स्थान शरदारंग आस्थाओ इत प्रमुख केंद्र हचिशित मनिया धारा देवी मंदिरो द्यारो वाली बोधी संख्या श्रद्धालु का दर्शन होता इस बच विशेष रूप इसके अंदर नवरात्रो बेरंग वाली बोधी भक्तों वाली बोधी मीगा जंग भक्तों बजनियो भक्त माताओं चरणों आने मनोकामना का अर्पित लंच दो रंग साथी सुखंग समिधि रंग शांति आशीर्वाद प्राप्त लन तैसी बदनियो ओम संग बधे मनंग ले सुखंग पचित जंग दुख शांति पर आई सुख समिधि ले जंग बब परिनियो दुख माता मंदिरों बीबी मनिया दुख आई तो मंदिरों केवल जो धार्मिक दृष्टि से नहीं बाकी सांस्कृतिक रंग सामाजिक दृष्टि से वाल महत्वपूर्ण दू जंग समय समय दिन के अंदर धार्मिक आयोजन लंच भजन कीर्तन दृष्टि सामुदायिक कार्यक्रम दियो आयोजन लंच जो समाज इत एकता रंग सद्भावनाओं जो रंग आई आध्यात्मिक चेतनाओं बढ़ावा लंत हो पोरित नियो जंग जो तारा देवी मंदिरों सड़कों रंग रेल निष्की वो जंग भी में यानी कि तारा देवी रेलवे स्टेशन ने तो दंग सुधो को दंग दुधा दंग छेंदे बसो भी कशा तारा देवी मंदिर संग बसो या गाड़ी हो भीम सकते हो दंग मंदिर से ही सड़क तो नहीं हो दो के जो पहाड़ों नो जंग छेंदे पवित्र जगह जो प्रेमिका रंग जो मतलब प्रकृति प्रेमिका यानी कि जो हद कशा नेचर जो कशा तो कशा जो जंगल दियो या प्रकृति जैसे सौंदर्य हो जो हत्या जो प्रेमी दियो पसंद लंचा दू दुकान तो ऐसा ही वाली दम जगा दू ऐसे श्रद्धालु तो देख ले दो जो इत श्रद्धालु गण देख ले अक्षरों के अंदर दुनियों कहते जो तारा देवी मंदिरों केवल इत धार्मिक स्थली मनी बल्कि जो इत आस्थाओं रंग संस्कृति रंग जो प्राकृतिक सौंदर्य उल्ले कशानु अनुभव प्रतीत हचो य यानी कि कशानु है मनंग या छो ने खुश हचो मनिया दंगची तो कच्चे मीगानु जंग मानसिक शांति दियो आत्मिक ऊर्जा रंग दिव्य अनुभूति अनुभव लानु तंगेस जो कशा जो मंदिरों बीतनियो तो को जो वाम थाम तो मैं कहते नशा का या वाम थामे दौलानों का तो खून चिट्टा देसी देश के हम टाइम तो यार खून खराबा देश के उन मी उन दंदोलो तो नहीं वो उन मी पेरा मो खून रिश्ता का मैं क्या दुकान उड़े तो दो तो हो दो का देखें तो कशा है दम दम मंदिरों भी दम दम जगानों भी मो मन पंग शांति लेने आस्था पंग इधर आता कशा भीम से कहते जो दे जो दे डियांग पंग छोटे भीम से देर कशा रंग साथे भी तो माओ इत नामंग भी इतनी हो दया दम किस या मरी से नाम ही भी इतनी हो तो कशा इत थू ना दम नामंग के बैंक दम शांति तो सी कशा शांति माया इपा कशा मदक्ष या शिव रंग जय मदन से आगे अनुमागता जो थी दम कम तम रख जा जो तेना अशांति सी तो जो मनंग भटके दो नहीं तो मन भटके दो अरे माँ भटके से आग दो तेईस कशा उषा सुख शांति तई से दम कम लन्ना ये दम दम जगानो भी माँ तीर्थ जगानो भी आतंक दो सुख शांति कशा से पर मैया खेता तो जो दें आई तो गिथंग लोचे कशा ठाकुर देवी रंग कोना नुका दो गिथंग लोचे कच्चा तो

किन्नौरी कार्यक्रम अभी आपने सुना, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। लोकगीत सुनिए। आरंभ में आइए सुने किशन वर्मा और साथियों की आवाज़ में ये लोकगीत।

0: लोकगीत अभी आपने सुने, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTS सेवा पर भी उपलब्ध हैं।
1: बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम।
2: इतनी भी क्या जल्दी थी?
1: अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम।
3: और ये
2: मेरी गुड़िया के नाम।
4: पर दादी, आपके नाम?
5: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो।
4: क्या
5: RBI कहता है?
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायती बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों को इलाज की सुविधा मिल रही है, वहीं जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टेंट और घुटने के प्रत्यारोपण की कीमतें कम होने से मरीजों को लाभ हुआ है। साथ ही मेडिकल कॉलेजों और उनमें सीटों की संख्या बढ़ने से डॉक्टर बनने के अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए सरकार आगे भी लगातार काम करती रहेगी। प्रदेश के सभी जिलों में कल 15 जून को आपदा प्रबंधन को लेकर मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तकनीकी सहयोग से ये मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। इसके लिए भूकंप, भूस्खलन, बादल फटने से आने वाली बाढ़ और वनों की आग जैसी घटनाओं के परिदृश्य दिए गए हैं। पूर्वाभ्यास के दौरान इन्हीं परिदृश्यों के अनुसार राहत व बचाव कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। पूर्वाभ्यास में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान शामिल होंगे, जो आपदा तैयारी में मौजूद कमियों की पहचान करने और उनके समाधान के सुझाव देंगे। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। एक बयान में उन्होंने कहा कि राजधानी शिमला में एक महिला की हत्या होना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं प्रदेश में पहले नहीं सुनी गई थी, लेकिन अब आए दिन हो रही हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और पुलिस मूक दर्शक बनकर देख रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस का काम कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना होता है, लेकिन प्रदेश पुलिस सरकार के निर्देशों पर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को परेशान करने, सत्ता समर्थित अराजक लोगों को सुरक्षा देने और भाजपा नेताओं के फोन की निगरानी करने जैसे कार्यों में व्यस्त है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार जिस तरीके से पुलिस को अपना टूल बनाकर विपक्ष को परेशान करने में जुटी है, उसके खतरनाक परिणाम सामने आएंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के 2 दिवसीय हिमाचल प्रवास ने पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा व आत्मविश्वास का संचार किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इस प्रवास ने न केवल संगठन को मजबूती प्रदान की, बल्कि कांग्रेस सरकार की विफलताओं को भी जनता के समक्ष उजागर किया है। किन्नौर जिले के प्रसिद्ध किन्नर कैलाश यात्रा इस वर्ष 1 जुलाई से 30 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। समुद्र तल से करीब 19,850 फीट की ऊंचाई पर स्थित किन्नर कैलाश शिवलिंग देश के प्रमुख धार्मिक व साहसिक तीर्थ स्थलों में से एक है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए रोजाना अधिकतम 375 श्रद्धालुओं को ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। रिकांगपियो से हमारी संवाददाता के अनुसार ये यात्रा भगवान शिव के प्रति आस्था का एक महत्व

0: महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें हर वर्ष देश विदेश से हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। नव भारत युवा संघ ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई है। संघ के अध्यक्ष भावन शर्मा ने नाहन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और नशा व खनन माफिया भी पूरी तरह सक्रिय है। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं और समाज पर बुरा असर पड़ रहा है।
1: पिछले कुछ समय से पूरे हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो बिगड़ना हुआ है, जो हिमाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई है, उसके लिए किसकी जिम्मेदारी तय होगी? हिमाचल में सरेआम माफिया राज फैल रहा है, खनन माफिया फैल रहा है, ड्रग माफिया फैल रहा है, आखिर किसकी जिम्मेदारी तय होगी? कौन इसके लिए जवाबदेह होगा? हिमाचल के आम नागरिक खुलेआम घूमने में भी डर रहे हैं। हिमाचल की माताएं बहनें आज सुरक्षित नहीं है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसे परीक्षा कर्मयोगी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य NTA परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण व निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने सहित ऑफलाइन पेन और पेपर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। इसमें नीट स्नातक पूर्व परीक्षा भी शामिल है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ क्षेत्रों में वर्षा दर्ज की गई, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में हल्का हिमपात भी हुआ है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
2: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है।
3: तो लेन देन?
2: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
3: ओ,
2: जैसे UPI से।
3: अच्छा।
2: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
3: वो क्या है मम्मी जी?
2: तुम्हारी मुँह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
3: आम भी ना मम्मी जी।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
5: हर लेन देन अब है आसान।
6: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। हिमाचली कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं बिलासपुरी कार्यक्रम।

तो देखो जी, तुम सुने लोकगीत गाए करते थे सीताराम और तिना दे साथी। तो हाँ कने कुछ खबर भी लगानियाँ। पहली खबर जी भई कांगड़े जो छड़ी कने प्रदेशा रे सभी जिले च नवनिर्वाचित प्रधान उप प्रधान जो कल यानी कि 15 जून जो शपथ जी से दिलाई जानी। संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक कांगड़े जिले रे 18 जून जो सुखविंदर सिंह सुखू होरी प्रधान उप प्रधान जो शपथ दिलानी। कल शपथ समारोह जिला स्तर पर अजय से किए जाने विधानसभा कल यानी कि 15 जून जो विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया उरी चंबे च, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री उन्ने च, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल होरी सोलन जिले च, और कृषि मंत्री चंद्र कुमार होरी जी असे कुल्लू च पद और गोपनीयता की शपथ जी से दिलानी। इसी तरीके कने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान होरी सिरमौर जिले च, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी होरी किन्नौर जिले च, और हरे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर होरी शिमला जिले च, और पंचायती राज मंत्री जी असे अनिरुद्ध सिंह होरी तिने मंडिया च, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी होरी बिलासपुरा च, जबकि आयुष मंत्री यादविंदर सिंह गोमा होरी हमीरपुरे च जे ऐसे शपथ दिलानी। इन्हां समारोह री जिहड़े जिला स्तरीय समारोह री तैयारियां जिहियां तिन्हां जो अंतिम रूप दित्या जाया करदा। अगली खबर जिहड़ी पई आयुष मंत्रालय खाते अज यूट्यूब पर आयोजित एक लाइव योग सत्रे दे जरिए नवां जे ऐसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम च तकरीबन जी असें 35,000 लोकें जी हिस्सा लीता, और जिसरे बारे च केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव यादव होरी बोलिया भई ये उपलब्धि दुनिया भरे च योगे री बढ़ती लोकप्रियता जो दसदी। तिने लोकां जो योग जो अपनी जिंदगी री रोज़मर्रा री दिनचर्या च जी असें मतलब रोज़ की एक

पे दिनचर्या हिस्सा बनाने की अपील जी से की कैं पे 21 जून जो योग दिवस जी असें मनाया जाना। तो यह तो थी खास खास खबर, तो तुम करें कुछ गल्लां बातें जी से भी मिलगा। गलबात जी करनी है वे भारत री ऋतुआ के बारे च। अस देखते पे भारत जो विविधता का देश आ, इत्थी ना सिर्फ अलग अलग संस्कृति आरे दर्शन होंगे बल्कि इत्थी जलवायु राजे आसे भी जो संस्कृति अलग अलग नहीं देखने मिलती, थ्रवा जलवायु आसे भी अलग अलग सूँ देखने मिलता। इत्थी खास तौर पर अहम जो तकरीबन 6 प्रकार के मौसम जी इसे देखने जो मिलते और इन्हां च असें देखते सब तो पहले बसंत ऋतु, फिर गर्मी, बरसात, सर्दी, हेमंत और शिशिर। ये हरे कुल मलाइक ने 6 जे से मौसम है से जहाँ अलग अलग टाइम पर देखने नू मिलते। हर ऋतु का अपना आनंद आ, अपना मज़ा और अपना महत्व आ और अपनी खूबसूरती। ये मौसम ना सिर्फ प्रकृति च बदलाव लिया बल्कि माणूरी जिंदगी खेतीबाड़ी और संस्कृति पर भी खासा असर जहाँ से पाते। सब तो पहले अं देखते बसंत।

0: गौतम जो इसी कने इजाजत दियो, नमस्कार।
1: बिलासपुरी कार्यक्रम अभी आपने सुना, हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव 387.6
2: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ। लीजिए सुनिए बिलासपुरी गीत।

अभी आपने सुना बिलासपुरी गीत 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ट्यूनिन है एफएम शिमला के साथ। एफएम शिमला पर लीजिए अब सुनिए लाहौली कार्यक्रम।

जुले नमस्ते गीस तंजनांगमो इनी हिंचिपा छाएं दो आकाशवाणी शिमला की गजेपई प्रोग्राम दो तिमरिल नंगयंपो स्वागत लिखत थनगी थे प्रोग्राम दो हिंजी हिरग्युंशी दिवस पोंठे फेके थजू फ्यस इरी मानवता यह तो लिखच नंगमीचे रुकचि जुड़ाई के ईश थनगी फ्यस विश्व रक्तदाता दिवसेश थे दिवस लो जूं चुपी जून दो मनाई लिखचियन छो इरे मीचे रो खची लेन थे ना रे रमेश गुई यतो जी लिहिंग जी हिति मछटी जुई जीवन बचाई नंग एपो लिखचट उपची इंचो रक्तदान थजु छाई लेन रुकची तिकी एपो लेन तीएश रक्तदान लो नंग राई शु घुंशी जोरो दच थे दान लिखच रो खर नोई खर्चा रे क्या मेमेश नंग खर खर नुकसान रे क्या मेमेश पर थे दान रुकची सु घुंशी मीरो नुई मीचे खुकशुज थे छाई बसल तेजी फ्यसेश द थे विश्व रक्ता दिवस खरो मनाई लिखची इंछो लो नंग विश्व स्वास्थ्य संगठन लो नंग WHO जी शुई महत्व हा गोशी लोजुम 14 जून रो विश्व रक्तदान दिवस मनाई लिखच चुकशी इंछो थे दिवस थजू मीजो सम्मान दच बोंठे मनाई लिखची इंछो सुई जी राई थस रोकची शु दची इंछो नंग हिति ग्युंशी मीजी जान बचाई लिखचिया रो योगदान दचियन छो 14 जून रुके जिखर मनाई लिखची इजलो नंग थे जा दो ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक कार्ल लैंडेस्टिनर किंजीश तालजी रक्त समूह लो नंग ब्लड ग्रुप की खोज लिखची नीज ताल की थे खोज जी आधुनिक शुई आधान लो नंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन रो सुरक्षित नंग एपो साबित लिखचीश हिंगजो शू दान लिखच खर एपो नंग ग्युंशी इजलो नंग हिंग छाई तो पता नहीं ऐश कि शू गी खर कृत्रिम विकल्प मई ऐश थनगी भक्त रो विज्ञान जी होश में प्रगति लिखशी ऐश पर प्रयोगशाला रो शू लिखच संभव मई ऐश वनुनांग शुई दान लिखच ग्युंशी ऐश नंग शुई महत्व हिंगजो हा गुश ऐश दशुई ग्युंशी इका इका रमेश लो नंग सरकांग दुर्घटना रो मीजी घायल के ही सुजो प्रसव बक्तांग लस्मी जोरो थैलेसीमिया की मरीज जोरो कैंसर के ही पैजो तेजी तेजी सर्जरी के ही सुजो जुक्स दो छुई शू तई पर नंग अनीमिया तई पजो थेठो पा भक्तो रक्तान ग्युंशी पजी तई पजी बोंठे जीवन नंग शिचुंगी बलाकुंगी अंतर ठोपाएश तिकी यूनिट शू खची मीचे एपो लिखचीश नोई मी जो पता मई जो कैन कि शुई दान ली जी खोजी शू ससा ससा घटको रो ससा ससा लिखचूश माई शू ससा प्लाज्मा प्लेटलेट्स थे जी यूनिट ती शू रोकची सुमी ससा ससा मरीज जो यतो लिखचा ठुपचीश इरी 10-15 मिनट सुई सुमी मीगी मीचे एपो नंग बचाई लिखचा ठुपचीश रक्तदान रोकची जुड़ाई की भ्रम की भूंठे फैनंग एरी समाज रो शुई दान लिखचुंगी खची किसका किसका फ्यस रिनीश खची जी तेची इन छो शुई दान लीजी जुक्स तो कमजोरी रमेश बार बार दान लीजी एरी इरंग जो सस सस जू के मिनगी गिर तेयेश खची जी शुई दान लीजी जुक्स रो शुई कोनी के मिश ती इन छो मगर चिकित्सा विज्ञान जी लोशीश गीथे छाई किसका फैसेश ती की जुक्स शेत तई मी शुई दान ली जी खोची जुक्स

इन्जी हेर सुलिक चटुक चिएसो एपोनाङ पौष्टिक जमिन सोतिनाङ एपो जुक्स आराम थिन्जी मिति एपो मिचे बिताइलिक चटुक चिएस सुइदान सुसुलिक चटुक चिएस छोलो नाङ 18 साल रोक्ची 65 लोगी मी सुई वजन 45 रोक्ची 50 किलोग्राम नीएश व थे रोक्ची नोई वजन नीएश जुक्स शेचन तेई चुजी नांग सुई जुक्स दो डीमेन होमोग्लोबिन तेईश थिछाई तेई पर जो सुई दान लिख चुपचीश सुई दान लिख चुरे जुक्स की जांच रे लिख चु व दल्ले सुई दान लिख चुश थिशु दी मी नांग थिंची चु मी निस्पेश स्वस्थ केरे बोंठे रहेश रक्तदान लिखचुम की प्रक्रिया होश में सुरक्षित नाग वैज्ञानिक नीज छाई बसल दूरे इरी स्वस्थ गी जानकारी थिंचुम व थजुखोची हेमोग्लोबिन शू नांग हिती ग्युंशी जांच लिखचुम व जांच लीजी खोची मी नुई नांग स्टरलाइज खेप की या तो जी इरी शू वंचीश थे पूरा लेन 10 रोकची 15 मिनट रो खुमजीश सुई दान लिखचुम गी छाई बसल तेजी लाभ खाएज लो नांग हिति मी की जान बचाई लिखचीश थे नांग यंपो शु दजी चुमी रो रे खची लाभ खुकशीश राय जुक्स की जानकारी खुकशुश जांच लीजी खोची युल गी मी जीबोन ठे लेन लिखचुम गी अवसर खुकशुज मानवता नांग ये तो लिखचुम गी गर्व महसूस किया मेज युल गी मी छाई दो इपो मिजुम गी लब्जा रे खुकशुज शुदान लिखचा तिकी लेन के जिमेश थे युलगी मी छाई दो सेवा लिखचा नंग सहयोग की भावना रिचा रहेश इरी युल युवा गी छाई बसल तेजी तिकी युल हेश इरी युवा जी एपो लीजी जांच लीजी शुदान लीना युल रोशुई कोनी क्या मिमेश कॉलेज विश्वविद्यालय NCC NSS नंग हिती युवा संगठन थे छाई शुदान लिखचा बोंठे जागरूक लिखचरो तेजी भूमिका निभाई लिखचुंगी ठुकचीश थन युल गी युवा जी सोशल मीडिया मनोरंजन नांग राय थस बोंठे मलिका थे शुई दान लिख चोपा हिति युल गी मी जी बोंठे नी चु योजना छाई की बोंठे जागरूक लिखचर रो लिखचुश वैश्वी की जिलोशीश की सुरक्षित शूस नांग दीमेन रक्तदान गी लिखचुम रोकची क्यमेश जब मी जी खची दबाव नांग सिरनत मकिय जी दैनंग व दल्ले शू एपो वांग्समेश नांग सुरक्षित रे केमेश थे बोंठे ही जुग्युंशी पक्त्रो के जिशु दान लिखचुमेश बल्कि बिचंग विचंग लिखचुम गी आदत लिखच ग्युंशीश विश्व रक्तदाता दिवस हिंग जो थे हित बुचर हो यतु लिखशीश कि मी जी सिरनत मकिया जी यतु लिखच छाई बसल तेजी लेनेश शुई दान तिकी सुरक्षित लोई नांग तेजी लेनेश इनी जी स्वस्थ हे नांग शु दान लिखच लथलनी हिंसाई की क्युक्सी क्युक्सी लेन रोकची सुई ग्युंशी मी गिमी चे एपो नांग लोई क्यमेश थे लप्ष नांग यंपो नीरु चांदनी थिरची लला जिसपे आंगमो परदेसी हिंकते।

ताहिंजी तिकी योजना बोंठे फेके। थे योजना योलगी युवागी भविष्य रोजगार नंग आत्मनिर्भर भारत लिक्चर रोकची जुड़ाई के नीश। तनखा योजना बोंठे फेके लोनंग प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इरी भारत युल जम्बुलेंगे तिकी तेजी युवाई युल तीश। इरी युलगी छाई बसल तेजी आबादी युवागी हिश। इरी युवा जो एपो अमसीरो एल्दे बोंठे लब्जा धनंग तो नचु फेस नंग लेंगी अवसर खुक्स नंग युवा राय मीचे के जी एपो लिक्चर टुप चुमेश बल्कि थे नंग यंपो युलगी विकास रोरे तेजी योगदान दचीश। थे मिजिस नंग यंपो भारत सरकार जी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चुकशीश। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ख हेश लो नंग थे योजना रो पीएम के वीवाई रिलोचुश। थे भारत सरकार की ते की छाई रुकची तेजी कौशल विकास योजना तीश। थे योजनाएं उद्देश्य युलगी युवा जो भंती भंती क्षेत्र रो लेन लिखचा लेची ताल जो रोजगार की बोंठे योग्य लिखचा हैश। थे योजनाएं शुरुआत लो 2015 लो लिखशीश। थे योजना रो कौशल विकास नंग उद्यमिता मंत्रालय रोकची संचालित लिखचीश। नंग राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC रोकची लागू लिखशीश। थे योजनाएं मुख्य उद्देश्य युलगी शर्बत।

nachungma bete jo su lokcha khomji len solga goin chu nangsu lokcha bichang bush thichish talju suvidha da chahish the yojnai kharu gyun shiyesh ke yesh lo nang eri yul ro kyui bakt ro lokcha matlab degree gi shugu hasilik chake zinish pathan gi lekshi chu tusto degree kukshake zi dimen mai udyog nang कंपनी जोरो अनुभव ते मी ग्युनशीनीश खचीबार मीजी कचांग पेचे ज्ञान तत नीश पल्लेन लिखचुंगी ग्युनशी कौशल मईश थे रुकची बेरोजगारी बढ़ाई क्यमेश प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना थे बल्लाकुंगी अंतर वही लिखचीश थे योजनाएं मुख्य उद्देश्य की बुनठे फेंके युलगी युवा छाई की बुनठे राई कौशल रुच्छटा नंग एपो लिखचा बोनठे रोजगार नांग सब रोजगार की अवसर दचा बेरोजगारी छुई लिखचा युवा छाई की नाना आत्मनिर्भर लिखचा उद्योग छाई दो ग्युनशी के अनुसार लेन लेचा नंग लस्मी नंग वही वही क्युक्ची क्युक्ची लिख्स की बेते जो अवसर दचा हैश थे ट्रेनिंग खा खा क्षेत्र रोकया मेजलो नंग थे योजना नाना बंती बंती क्षेत्र की लेन की ट्रेनिंग दचेंज हो आईटी कंपनी जो मनखंग पर्यटन नंग रिदांगी क्षेत्र क्यूम बिल्डिंग लिखचुमगी जगह इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस ब्यूटी पार्लर ऑटोमोबाइल फोस की हटी बैंकिंग चौकसे क्षेत्र जो थन की वक्त रो डिजिटल तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा एंट्री डिजिटल मार्केटिंग नंग ई कॉमर्स थे छाई की बोनठे ट्रेनिंग की अवसर दचिएश प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की खची ग्युनशी फेस्ते येश युवा की ट्रेनिंग की बोनठे खर डवा दचे ग्युनशी मेश थे खर्चा छाई सरकार रोकची दचिएश ट्रेनिंग लीजी खोची थे पत्र दची एंशो व थेजु पत्र युल छाई दो लेन लिखचा बोनठे ग्युनशी रमेश खची ट्रेनिंग लिखचा जगह रो लेन रे दची एंशो थे योजना रोकची युवा जो रो होश में लाभ खुशीश छाई बसलती की लाभ रोजगार गिहेश ट्रेनिंग लीजी खोची एपो लेन गि बोनठे आवेदन दचा ठुपचियन छो दरुंग सब रोजगार गि लाभ हेश खची युवा जी ट्रेनिंग लीजी खोची राय बिजनेस रे लिखचा ठुपचियेश प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान की तिकी ग्युनशी हिस्सा तीहेश एरी युलगी युवा छाई कौशल क्या नंग रोजगार खुक्षा नंग यंपू रोजगार दचा रे ठुपचीश थे युल की अर्थव्यवस्था रो रे शिचन लिखचीश कौशल विकास की तिकी विकास ती मेश बल्कि युल की विकास की रे हेश थे योजना छाई दो नुई नुई तकनीक ले चेन छो आत्मविश्वास नुई नुई लिखचूश नंग एपो भविष्य लिखचा रो रे या तो लिख चेन छो थे योजना युवा जो सशक्त लिखचा हैश थे युवा जो रो लेन दची छाई में से एपू क्यमेश सफलता डिग्री रोकची रमेमेश बल्कि ज्ञान कौशल नंग मेहनत लिखची रोकची रमेश थे आशा नंग व्यंपो थे फैस ख्या खोम गते दहिंजी जनगणना 2027 की बोंठे फेंके हिमाचल प्रदेश की क्यूमय सूची लिखचा नंग छाई की गिनती लिखचुमगी लेन 16 जून रोकची 15 जुलाई 2026 अस्तो क्यमेश स्वयं जानकारी पिंचल ओ नंग क्यूम क्यूम रो एलजी सर्वे लिखचा ठीक 15 दिन दूरे युलगी मी छाई राय जानकारी ऑनलाइन पिंचा ठुपचीन छो थे फॉरम पिंचा बोंठे मी जुसब गणना पोर्टल se.census.government.in रो एलजी राय पता दचा ठुपचीन छो थे जनगणना मोबाइल नंग हिती ऐप रुकची डिजिटल रुकची क्यमेश छाई बसल तेजी चरण दो क्युमगी हालत टबर छाई गी खुक्षी चु सुविधा नंग टबर गी संपत्ति छाई गी बोनठे 33 सवार सूचीन छो जनगणना कानून 1948 गी तहत छाई की निजी पता प्राइवेट पूछिएश थे मी छाई की जानकारी थे नाक तुमेश सरकार लेन नंग रिसर्च लिखचा बोनठे लिखचूश दहेल ललाती हिनकते ललामिन तो सेरी जान दे लला थिरचिपा सुखदास।

धनगी समाचार हिंदकते लाहौल स्पीति जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शांशा की बेटे नंगहोश में तेजी खिलाड़ी ऋषिक रायंग की चयन प्रदेश की 18 लो रुकची छुई लोगी एथलेटिक्स टीम रो के येश तालजी बिलासपुर की लुहनू मैदान रो केई राजकीय स्तरीय ट्रायल रो जेविलियन थ्रो प्रतियोगिता रो शानदार प्रदर्शन दचियेश थन विश्व रक्तदाता दिवस मनाई लिखियेश थेलो विश्व रक्तदाता दिवस की फेस मानवता गीती की बूंद रक्तदान करे जीवन बचाए बुचियेश एपोलीजी शुई ग्युनशी की बोंठे जागरूक रिचा नंग साई दमशी शुई दचे की बोंठे प्रेरित लिखचरो उद्देश्य जी लोजुम 14 जून रो विश्व रक्तदाता दिवस मनाए लिखचिंचो केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी थे अवसर रो मी छाई दो एपोलीजी शुई दान लिखचर बोंठे अपील लिखता आयुष्मान मंत्रालय जी थन यूट्यूब रो लिखशी की लाइव रुकची नुई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लिखशीश थे ऑनलाइन योगी कार्यक्रम दो 435,000 रुकची नुई मी रेजी गोइंचो केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप

जाधव जील योग नोई बसल नोई मीजी युल साई दो थस यम पोलिक चेन छुलुत तालसी मीज यो योग चा अनलिक चुम ये अपील लिखता ते अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून रो मनाई लिख चूज लुत कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी जी लो शीर्ष की सरकार वही नांगयुक्ति लिख्स जो खेल लो नांग्योर्दे बुंठे छाई दो बढ़ावा दचा बुंठे कोशिश लिखची गोइन छो सोलन जिला की अर्की अर्किरो लिखशिचू कुश्ती दंगल की कार्यक्रम के दौरान थे फेस लोता थे नांगयांपो थन की समाचार ख्या खोम गते द थे प्रोग्राम की आखिर लला हिंद कते।

ग्यागर छोसलो रंग दर्जा महिला मंडल थिरची ललत नंगयम पुथन गी गर्जपई प्रोग्राम ख्या खोम गते द गिरो इजाजत दनी जुले।

0: अभी आप सुन रहे थे लाहौली कार्यक्रम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ट्यून इन है एफएम शिमला के साथ। अब आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: Birmingham when reports last came in. Earlier, India won the toss and opted to bat first. In the FIFA World Cup 2026, Germany will take on Curacao in the Group E clash at Houston in United States tonight. The match is scheduled to begin at 10:30 p.m. Indian Standard Time. In another fixture, the Netherlands will face Japan in a Group F encounter at Dallas Stadium. The match will kick off at 1:30 a.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.
1: फ्रीक्वेंसी 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन हैं एफएम शिमला के साथ। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 का एच वेस्टर्न बर्मिंघम से क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण।
2: Which spark some sort of debate. Anyhow, next delivery of the over onto the body line, delivered on the shorter side of good length, allows Smriti to pull it towards the long leg fielder, where Sadia Iqbal moves towards her left, picks it up, hurls it back to the wicketkeeper. Whilst all that is done, a single has been taken, two overs done. 10 for 1, our team India.
3: तो कुल मिलाकर इस ओवर के दौरान मात्र 3 ही रन आए और निश्चित रूप से पाकिस्तान की तरफ से एक बढ़िया शुरुआत की जा सकती है। अब तक पहले दो ओवर में सिर्फ 10 रन दिए हैं उन्होंने भारत के तेज तरार बैटर्स को और एक विकेट बदले में हासिल कर लिया है, वो भी शेफाली वर्मा जैसी तेज तरार बैटर का। तो देखना यह है कि तीसरे ओवर में क्या कुछ हो पाता है, क्या सादिया इकबाल ही गेंदबाजी के क्रम को जारी रखेंगी या फिर फातिमा साना वहाँ पर कोई गेंदबाजी में परिवर्तन करना पसंद करेंगी। देखना निश्चित रूप से काफ़ी दिलचस्प होगा। आज यास्तिका भाटिया को टीम में जगह नहीं मिली है और उनकी जगह पर भारतीय फुलमली को टीम में रखा गया है। हालांकि यास्तिका अच्छा प्रदर्शन कर रही थी हाल फिलहाल में, लेकिन आज टीम में उनकी जगह नहीं बनी है। सादिया इकबाल गेंदबाजी के क्रम को जारी रखेंगी। बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज ओवर द विकेट, ये गेंद थोड़ा सा फ्लाइटेड ऑफ स्टंप की तरफ। स्मृति मंदाना ने फ्रंट फुट पे जाकर इस गेंद को हल्के से पुश किया ऑफ साइड में, गेंद को वहां पर फील्ड कर लिया गया बिना किसी रन के। तीसरा ओवर प्रगति पर, टॉस जीतकर पहले भारत बल्लेबाजी कर रहा है इस मुकाबले में। भारत का ये पहला मुकाबला है इस आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का और पाकिस्तान के लिए भी ये पहला मुकाबला। अगली गेंद फ्लाइटेड और इस बार इस गेंद को उठा करके खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद, डाइव करके रोकने की कोशिश जरूर की थी वहां पर आलिया रियाज ने, लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटकते हुए सीमा रेखा से बाहर चली गई 4 रनों के लिए।
4: ये लगा आभा का चौका।
3: फील्डिंग में चूक जहां पर शायद 2 रन हो सकते थे, 2 रन अतिरिक्त भारत के खाते में जोड़ते हुए 4 रनों के साथ भारत 14 एक विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई इस गेंद को फिर से गेंद की पिच के नज़दीक जाकर हल्के से पुश किया कवर क्षेत्र में 30 गज के दायरे के अंदर, गेंद फील्ड होती हुई बिना किसी रन के। स्मृति मंदाना से काफ़ी उम्मीदें हैं। यदि आप स्मृति मंदाना को देखें तो एक शतक भी उनका टी20 मैचेस में अब तक नज़र आता है। इसी बीच अगली गेंद और इस बार खूबसूरती के साथ मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद को प्लेस करते हुए गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया 4 रनों के लिए।
4: ये लगा आभा का चौका।
3: बेहतरीन अंदाज में फ्रंट फुट पे जाकर बिल्कुल गेंद की पिच के नजदीक पहुंचकर गैप को तलाशने में पूरी तरह से कामयाब रही इस अवसर पर स्मृति मंदाना, और इस ओवर में अब तक 2 चौके वो लगा चुकी हैं। कुल मिलाकर 8 रन अब तक आ चुकी हैं, दो गेंदें अभी बाकी बची हैं सादिया के इस ओवर में, जबकि स्मृति का अपना व्यक्तिगत स्कोर इन 2 चौकों की मदद से फिलहाल दोहरे अंक में 10 के व्यक्तिगत स्कोर पर। वो अगली गेंद, इस बार गेंद को पूरा सम्मान दिया, फ्रंट फुट पे जाकर गेंद को बल्ले के नीचे आकर के टकराने दिया और गेंद को वहां पर फील्ड किया गया ऑफ साइड में बिना किसी रन के। अंतिम गेंद लेकर सादिया इकबाल एक बार फिर से तैयार। 30 वर्ष की उनकी उम्र और आईसीसी रैंकिंग में पिछले कुछ समय से शीर्ष स्थान पर हैं, और जैसा कि थोड़ी देर पहले दर्पण बता रहे थे कि अब वो दूसरे स्थान पर पहुंच चुकी हैं। अगली गेंद को फिर से हल्के से ड्राइव किया था ऑफ साइड पे, लेकिन इस बार गेंद को फिर से 30 गज के दायरे के अंदर फील्ड किया गया, ओवर की समाप्ति हुई।
5: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
6: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
5: तुम हो ही भुलक्कड़।
6: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
7: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
8: आभा
7: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने

0: रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: So 18 for 1, half of the power play done, 3 overs done, 18 for 1 India at the loss of the wicket of Shefali Verma. And looks like Tasmia Rubab has now been summoned by Captain Fatima Sana. Tasmia Rubab, who's a left-arm seamer and a bit of an unknown quantity because she's today playing only her third T20I and she has played two matches before this, one in this year. The other one back in 2024. So she's a bit of an unknown quantity. Wears number 10 on her back. Runs into bowl this one from over the wicket. Full length delivery. Jemima Rodrigues drives this one towards mid-on and runs down in the search of a single which Smriti Mandhana thought was non-existent. And hence Mandhana said no. She sent Jemima back from halfway down the pitch. Jemima makes it safely home. And after that holds her hand up in apology. She had punched this one straight to mid-on and Smriti Mandhana did not see the need to run. Rodrigues says that it was her fault. However, this shows a bit of desperation. Next delivery, she goes for a big shot and completely miscues it. And the catch has been put down. No! Takes it on the second attempt. Does Natalia Parvez and India lose their second wicket? This was delivered on the fuller side of good length. It was angling away from the right-hander, not too far from the off stump. And for some reason, Jemima Rodrigues, who had faced 5 dot balls before this, that desperation was showing. She pressed forward and tried to hike it, tried to slog it. That is not her strength. She's known for playing those straight-batted shots, a technical sound player. However, she went for a slog. The ball hit the outer half of the bat, went straight up, and Natalia Parvez ran in a few steps from extra cover, settled underneath it, yet she juggled it. She did not catch it on the first attempt. The ball popped out of her hand and she grabbed it on the second attempt. The score is 18 for 2 after 3.2 overs. The start for India has not been great.
2: निश्चित रूप से भारत की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है टॉस जीतकर, जिस तरह की उम्मीद थी भारत को कि टॉस जीतने के बाद भारत एक विशाल स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहेगा और शुरुआत से ही कुछ तेज तर्रार अंदाज में रन बटोरेगा, लेकिन यहां पर भारत की शुरुआत तो ज़रूर अच्छी हुई। पहले ओवर की पहली गेंद पर शफाली वर्मा ने छक्का लगाया था, लेकिन उसके बाद उनका विकेट चटकाने में सादिया कामयाब रही थी पहले ही ओवर के दौरान। और इस समय एक और झटका भारत को चौथे ओवर के दौरान लग चुका है, चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर, जब जेमिमा रॉड्रिक्स वापस पवेलियन लौट चुकी हैं। और कहना होगा कि अब यहाँ पर थोड़ी बहुत मुश्किलें भारत के लिए बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। क्या यहाँ से भारतीय पारी को संभालने में कामयाब रहेंगी हरमनप्रीत कौर? और हालांकि बल्लेबाजी के लिए अभी काफ़ी अच्छा खासा लाइनअप है भारत के पास, लेकिन फिलहाल जो तमाम दायित्व है, जिम्मेदारी है, वो हरमनप्रीत कौर के पास है। हरमनप्रीत कौर जो कि एकमात्र ऐसी महिला खिलाड़ी जो कि 10वां विश्व कप खेल रही हैं और साथ ही साथ 5वां ऐसा अवसर जबकि वो कप्तानी कर रही हैं T20 विश्व कप में। आते ही उन्होंने अपना खाता खोला और जो एक दबाव होता है पहले रन का, उसे अपने आप को उससे पूरी तरह से मुक्त कर लिया वहां पर दर्पण।
1: वेल आई गॉट टू से दैट तास्मिया रुबाब वाज अ बिट जेनरस, डिलीवर्ड अ हाफ वॉली ऑन हर पैड्स एंड देयरफॉर हरमनप्रीत कौर वाज एबल टू टक इट टुवर्ड्स स्क्वायर लेग एंड पिक अप दैट कंफर्टेबल सिंगल। सो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन आउट देयर इन द मिडिल, रिमेंबर द इनिंग स्टार्टेड विद द फर्स्ट बॉल 6। शेफाली वर्मा टुडे बिकेम द फर्स्ट बैटर टू हिट अ फर्स्ट बॉल 6 इन अ वर्ल्ड कप मैच इन वुमेन्स T20 क्रिकेट। बट हाउएवर आफ्टर दैट Pakistan have come back well. They have dismissed Shefali. They have dismissed Jemima. India are 19 for 2 after 3.5 overs. Two fielders allowed outside the 25-yard circle in the first 6 overs. Currently, they are deep backward square leg and deep backward point. Smriti Mandhana to face. This one is delivered on a length outside the off stump. And in a very measured manner, Smriti plays it away from the body, but in a very controlled manner towards cover. She has looked steady. She has looked sturdy. She has hit a couple of boundaries already, but the important thing is that Smriti Mandhana has not looked rushed, unlike the other two batters who have gotten out. Next delivery from Tasmia delivers this one on a good length and it nips back in sharply. However, Mandhana had it covered. It finished near the middle end leg, 106 kilometers per hour, which means

0: It. Meanwhile, the next delivery, a slower one by the looks of it from Tasmia Rubab, angled away and finished outside the off stump. However, Harmanpreet was able to get her bat behind it and nudge it back towards the bowler. Fourth over done, 20 for 2, Team India.
1: So Harmanpreet ne wahan ek run banane ke saath hi 727 run bana liye hai T20 Vishw Cup mein, jo ki Bharat ki Mitali Raj ke 726 run se ab ek run aage ho gaye hain. To T20 Vishw Cup mein sabse zyada run banane ka shrey ab Harmanpreet Kaur ke naam darj ho chuka hai. Aur hamare statistician Tushar Trivedi bata rahe hain ki Jemima Rodrigues ke liye chhata avsar tha, jabki wo ek ke score par apni 127 pariyon mein ab tak out hui hain aur 37va aisa avsar jabki wo single digit mein out hui hain. To Jemima ke liye nishchit roop se ye match yaad rakhne wala nishchit roop se nahi hai, halanki hal filhal mein unhone kafi acche pradarshan kiye. Aur ओडीआई विश्व कप की बात करें तो वहां भी उनका प्रदर्शन काफी शानदार था, लेकिन आज उनका बल्ला नहीं चला. फिलहाल नए ओवर की शुरुआत होती हुई शमीम इस समय स्थान पर हैं सादिया इकबाल के, और देखना यह है कि क्या वो अपनी टीम के लिए कुछ और सफलता हासिल कर पाती हैं. शमीम तैयार. इस बार ये गेंद घुटनों के बल बैठते हुए स्वीप कर दिया. फील्डर गेंद के पीछे बहुत तेजी के साथ दौड़ रहे हैं, लेकिन क्या गेंद को रोक पाएंगे? जी नहीं. और गेंद सीमा रेखा से जाकर टकराती हुई 4 रनों के लिए.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: साहिरा जमीन ने हालांकि दौड़ तो काफी लगाई थी, लेकिन गेंद की रफ्तार उनसे काफी ज्यादा तेज थी. फ्लाइटेड गेंद थी थोड़ी सी, और उस गेंद को ऑफ स्टंप की तरफ हटते हुए स्वीप कर दिया था बहुत ही खूबसूरती के साथ. जानते थे कि वहाँ फील्डर मौजूद हैं, लेकिन उनके बगल से गेंद को निकालने में कामयाबी हासिल कर ली थी इस अवसर पर स्मृति मानधना ने. 15 के व्यक्तिगत स्कोर पर स्मृति इस चौके की मदद से.
0: Now the interesting thing, Ashish, is that Pakistan have quickly gone to Shamim, who's an off spinner. She's by no means a frontline bowler. She does bowl her off breaks, but she's considered more of a part-time option. Meanwhile, Saira Jabeen, who dived awkwardly in order to try and stop that ball, landed in a very clumsy manner and she seems to have hurt herself. The team physio for Pakistan is currently on the field and she's attending Saira Jabeen. Looks like she's good to continue. Shamim, meanwhile, prepares herself to deliver what will be the third ball of the fifth over. India 24 for 2, Smriti Mandhana facing.
1: अगली गेंद लेकर एक बार फिर से तैयार हैं शमीम, और इस बार इस गेंद को खूबसूरती के साथ खेल दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में. गेंद सीमा रेखा से बाहर दनदनाते हुए 4 रनों के लिए.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: इस चौके की मदद से भारत का स्कोर अब 28 दो विकेट के नुकसान पर 4.3 ओवर की समाप्ति के बाद, और इन 28 रनों में 4 चौके और 1 छक्का शामिल है. भारत, जैसा कि आप जानते हैं, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है एजबेस्टन पर पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी महिला T20 विश्व कप के अपने इस पहले मुकाबले में. एक बार फिर से तैयार वहाँ पर रमीन शमीम, बाएं हाथ से ऑफ स्पिनर गेंदबाज, और इस बार क्रीज के बिल्कुल कोने से ही गेंद, हल्के से गेंद को पुश किया ऑफ साइड पर, और गेंद को वहां पर पॉइंट की दिशा में इससे पहले कि फील्ड किया जा सके आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल ली. और इस एक रन की मदद से हरमनप्रीत ने अपने और अपने टीम के खाते में 1 रन का इजाफा किया, बल्कि स्मृति मंदाना थी, माफ़ कीजिए, वहाँ पर. और इस एक रन की मदद से उनका व्यक्तिगत स्कोर पहुँचा अब 20 पर. तो 14 गेंदों में 20 रन स्मृति के. हरमनप्रीत तैयार हैं इस समय अगली गेंद का सामना करने के लिए.
0: द गुड थिंग इज स्मृति हैज लुक्ड गुड. दे ब्रॉट इन द ऑफ स्पिनर प्रोबेबली टू काउंटर द लेफ्ट हैंडर, बट शी हैज लुक्ड अनहरिड एंड शी हैज ऑलरेडी स्ट्रक 2 बाउंड्रीज. नाउ ओवर टू हरमनप्रीत, हु गेट्स अ फ्लाइटी डिलीवरी व्हिच वाज डिलीवर्ड फ्रॉम ओवर द विकेट जस्ट 70 किलोमीटर्स पर आवर. सो गुड एयर गिवन देयर बाय शमीम. हाउएवर, द लेंथ अलाउड हरमनप्रीत टू गेट ऑनटू द फ्रंट फुट, पुश इट टुवर्ड्स लॉन्ग on and pick up a single. 30 on the board now for India. One ball remaining in the fifth over. Around the wicket goes Shamim and delivers this one with a round armish action. Tries to deliver the quicker one, however, once again in a very unhurried, languid manner, Smriti taps it towards extra cover. No runs to be had of that delivery. This over produced 10. 30 for 2 after 5.
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
3: तुम हो ही भुलक्कड़.
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
3: ली. लड़िए मत,
5: जानिए आभा के बारे में।
6: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं

0: और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: फातिमा सना एक बार फिर से गेंदबाजी के मोर्चे पर वहां पर नजर आ रही हैं। भारत ने पावर प्ले के पहले 5 ओवर में अब तक 30 रन बनाए हैं और 2 विकेट भारत अब तक गंवा चुका है। फातिमा सना नए ओवर की शुरुआत करते हुए दाएं हाथ से ओवर द विकेट कप्तान हरमनप्रीत के लिए, और हरमनप्रीत के लिए गेंद ऑफसम से काफ़ी ज़्यादा बाहर थी। पैर को आगे की तरफ निकाल कर उस गेंद को कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में किसी किस्म का कोई संपर्क नहीं और गेंद को वहां पर विकेटकीपर ने आसानी के साथ अपने कब्जे में कर लिया। 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर हरमनप्रीत ने 4 गेंदों का सामना किया है, 2 रन बनाए हैं। 15 गेंदों का सामना करने पर के बाद स्मृति ने अब तक 20 रन बना लिए हैं, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं। आज अपेक्षाकृत अगर देखें तो अन्य किसी भी भारतीय बैटर की अपेक्षा वो ज़्यादा बेहतर आत्मविश्वास से खेलती हुई नज़र आ रही हैं। और इसी बीच वहाँ पर तीसरे अंपायर का कॉल आता हुआ कि फातिमा साना की पिछली जो गेंद थी वो नो बॉल थी, तो यहाँ पर फ्री हिट भारत के लिए। क्या उसका भरपूर लाभ कप्तान हरमनप्रीत कौर उठा पाएंगे? दाएं हाथ से ओवर द विकेट, और इस बार ये गेंद ब्लॉक होल में डालने की कोशिश की थी और गेंद को वहां पर मोड़ दिया स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन आसानी के साथ दौड़कर पूरा कर लेंगे। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़कर के भारत का 32 2 विकेट के नुकसान पर। फातिमा साना की अच्छी गेंदबाजी, कोई अवसर नहीं दिया कि बड़ा हिट लगा सके वहां पर हरमनप्रीत।
2: राइट, फातिमा साना is turning out to be impressive, and the interesting thing was that the wicketkeeper was standing up to the stumps for Harmanpreet Kaur. We have seen in the past that when Fatima began bowling, the keeper was standing back, and now she goes back again for Smriti Mandhana, who has taken strike, delivers this one on a good length, angled away towards the imaginary fourth stump. Mandhana uses a vertical bat to tap it towards mid-off and picks up a comfortable single. Meanwhile, a good news coming from the land of Turkey, where World Cup Stage 3 of Archery is currently underway, and the good news is that in the men's recurve individual event, Dheeraj Bomadevara of India has won a gold medal. So congratulations to entire country, congratulations to all Indians, congratulations to all sports fans. We are expecting a lot from Dheeraj Bomadevara, who missed out on an Olympic medal, finished fourth in the mixed team event alongside Ankita Bhakat at the Paris Olympics. Meanwhile, back to this game, 33 for 2 India after 5.2 overs. Last over of the power play underway. Fatima Sana once again has called the keeper up to the stumps as Harmanpreet Kaur is on strike. She stands there with an open stance, good length delivery, angled in towards the middle and off stump, and Harmanpreet plays it with soft hands, just bunts it towards the front of square leg, calls for a prompt single, and Mandhana responds as promptly too. The two batters cross over, add yet another single to their account. India's score after 5.3 has moved to 34 for 2. 3 deliveries remaining in the power play. The Indian fans would want a couple more boundaries. Are we being too greedy though, Ashish?
1: निश्चित रूप से भारत को यहाँ पर कुछ बड़े शॉट्स की आवश्यकता है, या आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चाहे आप उसे ग्रीड का नाम दें या फिर ज़रूरत का, लेकिन भारत को यहाँ पर कुछ बड़े शॉट्स खेलने की आवश्यकता है। ये देखते हुए कि भारत तो 2 विकेट गंवा चुका है, रनों की औसत रफ्तार बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 6 के आसपास मंडराती हुई। 5.4 ओवर के बाद भारत ने 34 रन बनाए हैं 2 विकेट के नुकसान पर, और पिछली गेंद पर भी कोई स्कोरिंग शॉट भारत के बैटर नहीं लगा पाए। स्मृति मांधना 21 रन बनाकर 17 गेंदों का सामना करने के बाद, जिसमें 4 चौके शामिल हैं, एक बार फिर से तैयार हैं फातिमा साना की अगली गेंद का सामना करने के लिए। फील्ड प्लेसिंग में थोड़ा सा परिवर्तन वहाँ पर किया जाता हुआ उनके लिए ऑफ साइड में, और फातिमा साना काफ़ी विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ खेलने वाली पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई, इस गेंद को फ्रंट फुट पे जाकर हल्के से पुश किया ऑफ साइड में, कवर क्षेत्र में 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को फील्ड किया जाता हुआ बिना किसी रन के। पिच के मिजाज को यदि आप देखें तो इस पर घास बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है, भूरे रंग की पिच है, और बल्लेबाजी के लिए जैसा कि माना जा रहा था कि काफ़ी उपयुक्त था, और मुझे लगता है कि दर्पण यहाँ पर समय जैसे जैसे बीतेगा वैसे वैसे ये पिच स्पिनर्स के लिए शायद ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती है।
2: We hope and expect the same, because India is packed with spinners. More on that after this delivery. Next delivery has been hit uppishly, but it goes away from the outstretched right hand of Fatima.

0: Upasana and ends up hitting the boundary cushions straight down the ground. So a lovely straight drive from the bat of Smriti Mandhana marks the end of the power play. Six overs done. 38 for 2 India. Smriti Mandhana in this phase has been the top scorer. She's been elegant. She's been steady, sturdy, unhurried. And she currently wears a smile on her face. And Smriti, India will keep smiling if you stay in the middle. 25 runs off 19 balls against her name. She's joined by Harmanpreet Kaur, the captain, at the other end. 4 runs off 6 deliveries for Harmanpreet Kaur. As I said, India are 38 for 2 after 6 overs.
1: The cricket commentary will continue after a short FIFA update.
2: World Football Update from the BBC.
3: Hello, I'm Conor O'Grady at the BBC Sports Centre with the latest World Cup news. Vinicius Junior's equaliser rescued a point for Brazil in their World Cup opener with Morocco in New Jersey. 1-1 was how it finished. The five-time champions remain unbeaten in their opening World Cup match since 1934. But the former Chelsea and Tottenham midfielder Gus Poyet was disappointed with their overall performance.
4: I was surprised how bad technically they were today. I don't know if it was a pitch that was a problem, but they were missing passes, simple passes that you would expect a Brazilian player to do well.
3: Scotland atop of Group C after a 1-0 victory against Haiti. It's their first World Cup win since 1990 at their first finals since 1998. It's their former midfielder, Scott Brown.
5: It's an emotional game. For us just to get the 3 points, we're sitting top of the group, it's incredible. We didn't have the best second half performance. We've all got to be honest, but we had to grind out and we knew we were going to grind out.
3: Elsewhere, Nesroy Irinkunda became Australia's youngest World Cup goalscorer as they beat Turkey 2-0 in Vancouver. Qatar claimed their first ever point at World Cup finals with a 1-0 draw against Switzerland. And there's another 4 games on Sunday. The smallest nation ever to reach a World Cup get their campaign underway. Curaçao played Germany in Houston. They're coached by the former Sunderland boss, Dick Advocaat.
6: We have everything to win, nothing to lose, because the expectation is not that high outside us, because we think that we can still surprise somebody.
3: Elsewhere on Sunday, Netherlands play Japan, Ivory Coast face Ecuador in Philadelphia, and Sweden play Tunisia. And for more World Cup news from the BBC, go to bbc.com/football.
2: World Football Update from the BBC.
7: स्मृति मंथना और हरमनप्रीत वो दो खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं. सुजी बेट के बाद अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा रन स्मृति मंथना के हैं और उसके बाद हरमनप्रीत कौर के हैं. तो अनुभव की कोई कमी नहीं है और इस तरह की कई परिस्थितियों से उन्होंने सामना किया है, जूझते रहे हैं और उसके बाद सफलताएं उनके हाथ लगी हैं. हरमनप्रीत कौर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये उनके लिए 10वां विश्व कप है. हर विश्व कप के हर संस्करण में उन्होंने खेला है और 5वां ऐसा अवसर जबकि लगातार वो कप्तानी कर रही हैं भारतीय टीम की. तो दायित्व उनके कंधों पर बहुत बड़ा है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और उसका निर्वाह वो किस तरह से करती हैं ये एक देखने वाली बात होगी. फिलहाल 6 ओवर में 38 रन भारत के, 2 विकेट के नुकसान पर. रनों की औसत रफ्तार पावर प्ले में 6.33 की. हरमनप्रीत 4 पर खेल रहे हैं, स्मृति 25 पर. नए ओवर की शुरुआत शमीम के द्वारा. पहली गेंद ओवर द विकेट हरमनप्रीत के लिए. मिड ऑफ की दिशा में गेंद को खेला और वहां पर गेंद को इससे पहले कि आलिया रियाज फील्ड करते आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों ही बैटर्स ने एक रन के लिए छोर बदल लिया. इस एक रन के साथ अब भारत का स्कोर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर. स्मृति बाएं हाथ के बल्लेबाज, फील्ड पेसिंग में थोड़ा सा परिवर्तन. 19 गेंदों का सामना करने के बाद स्मृति ने अब तक 25 रन बना लिए हैं. पूरी एकाग्रता के साथ खेलते हुए विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप के साथ चिपके हुए और उनके लिए राउंड द विकेट आते हुए और ये गेंद फ्रंट फुट पे आके हल्के से बैक टू द बॉलर पुश किया. आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया वहां पर रमीन शमीम ने और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को समाप्त कर दिया. दर्शक अच्छी खासी संख्या में यहां पर मौजूद. अगली गेंद थोड़ा सा फ्लाइटेड मिडल और स्टंप पर. एक कदम आगे निकलकर इस गेंद को ड्राइव किया था वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में. फील्डर वहां पर नतालिया के रूप में मौजूद हैं. गेंद को उन्होंने फील्ड किया लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बैटर्स को और इस एक रन की मदद से भारत अब 40 2 विकेट के नुकसान पर. स्मृति पहुंची 26 पर 21 गेंदों का सामना करने के बाद. इसमें 5 चौके शामिल हैं. हरमनप्रीत 5 के व्यक्ति

0: स्कोर पर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार अगली गेंद का ओवर द विकेट शमीमाती हुई फ्लाइटेड गेंद एक कदम आगे निकालकर इस गेंद को हल्के से बैक टू द बॉलर पुश किया, गेंद को वहां पर अपने दाईं तरफ जाकर फील्ड किया और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को एक बार से फिर से ध्वस्त कर दिया। 40 पर अभी भी टिका हुआ भारतीय टीम का स्कोर। फील्ड प्लेसिंग का मुआयना काफी बारीकी से कप्तान हरमनप्रीत ऑन साइड पर करते हुए, क्या अगला शॉट उस दिशा में आएगा और इस बार इस गेंद को ऑफ स्टंप की तरफ हटते हुए हल्के से पुश करा ऑन साइड की तरफ, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद हैं 30 गज के दायरे के अंदर, रन बनाने का कोई प्रश्न नहीं। अंतिम गेंद का आना बाकी है रमीन शमीम की। रमीन शमीम क्या कुछ कर पाएंगी इस अपनी अंतिम गेंद पर, देखना दिलचस्प होगा। रनों की औसत रफ्तार भारत की अब 6 से लुढ़क करके 5.85 रन रह गई है। अगली गेंद और इस बार गेंद की पिच के नजदीक पहुंचकर हल्के से गेंद को पुश किया और आलिया रियाज इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड करें मिड ऑन की दिशा में, एक रन के लिए छोर बदल लिया हरमनप्रीत और जैम वहां पर स्मृति ने। इस एक रन की मदद से स्कोर भारत का बढ़कर 41 दो विकेट के नुकसान पर 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: The last over was a neat one from Pakistan's perspective, only 3 singles of it, and Tasmia Rubab, the left-arm seamer, has once again been called into the attack. She was the one who picked up the wicket of Jemima Rodrigues. She delivers this first delivery of the 8th over from over the wicket and looks like a bit of an off-cutter, pitches outside leg and then moves towards the stumps. Harmanpreet Kaur was standing deep in her crease, allowed the ball to come close to her and then swiped across the line in order to send the ball rollicking away towards deep backward square leg, and she picks up a comfortable single with that. The score moves to 42 for 2. Remember, Tasmia Rubab, as we told you before, is a bit of an unknown quantity. She last played a T20I in this year, but that was only her second T20I. The first T20I, meaning her debut match, was back in 2024. So she hasn't played a lot of international cricket. She is a bit of an unknown quantity, and therefore India will have to deal with her with care and caution. Delivers this one on a good length outside the off stump. Smriti Mandhana hangs back, allows the ball to come close to her, and then drives it with an angled face. The ball goes trickling away towards the deep backward point fielder. A comfortable single has been taken. That takes Smriti to 27 and India to 43 for 2. Now remember folks, 22 women's T20 internationals before today have been played at this particular venue. It's an iconic venue, the Edgbaston in Birmingham. More about that after this ball. Tasmia Rubab runs in to deliver this one on the shorter side of good length. The ball angled away towards the off stick. Once again, the batter hangs back and swipes across the line. That swish towards deep backward square leg produces a single for Harmanpreet Kaur, who is now on 8 of 12. 44 for 2 India after 7.3. The average score at Edgbaston in those 22 women's T20 internationals is 138. Even the match that happened in the afternoon today, according to India's time, between Bangladesh and Netherlands, saw Netherlands score 139 in the first innings. Meanwhile, a full toss which Smriti Mandhana has hit straight to the fielder. She wears a wry smile on her face because she knows that she has missed out on an opportunity. She had expected Tasmia Rubab to do something of that sort and hence shuffled towards the leg side early. Rubab went for a yorker, ended up bowling a full toss at the stumps, and then Smriti Mandhana unfurled a crisp extra cover drive, however straight to the fielder. So a dot ball after the 3 singles. Next delivery once again shuffles to the onside. That Smriti Mandhana gets followed up and hits this one aerial. The catch has been put down. Alia Riaz running back from mid-off could not grab that one, and Smriti Mandhana gets alive. India breathe a sigh of relief.
0: काफी बड़ा अवसर था पाकिस्तान के लिए स्मृति मानधना जैसी बल्लेबाज को वापस पवेलियन लौटाने का, और इस बार जैसे ही गेंद को खेला था गेंद हवा में काफी ज्यादा उछल गई थी और आलिया रियाज वहां पर मौजूद थी, गेंद तक पहुंच भी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पूर्वानुमान में कमी रह गई जिसकी वजह से गेंद उनके हाथों से फिसलती हुई सीधा जमीन को स्पर्श कर गई। तो एक सुनहरा

0: दूसरा अवसर पाकिस्तान ने गवा दिया यहां पर स्मृति को आउट करने का। फिलहाल भारत 45 दो विकेट के नुकसान पर।
1: लास्ट डिलीवरी ऑफ द ओवर डिलीवर ऑन द फुल साइड ऑफ गुड लेंथ ऑन द पैड लाइन एंड हरमनप्रीत कौर प्रेसेस फॉरवर्ड नॉक्स इट टुवर्ड्स वाइड लॉन्ग ऑन पिक्स अप अ कंफर्टेबल सिंगल दैट मार्क्स द एंड ऑफ एन ऑफ ओवर नंबर 8 व्हिच हैड अ लाइफ फॉर स्मृति मानधना। बिग मोमेंट इन द मैच। How much will that cost Pakistan and how much will India be able to cash upon it? We will find out together. 46 for 2, the score currently.
0: तो तास्मिया रुबाब जो कि मात्र 23 वर्ष की हैं, मात्र अपना तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेल रही हैं। इससे पहले कोई भी उनके नाम के आगे विकेट दर्ज नहीं था। पहला ही अंतर्राष्ट्रीय विकेट जो उन्होंने लिया वो जेमिमा रॉड्रिक्स का था और पिछले ओवर के दौरान एक सुनहरी अवसर उनके हाथ से निकल गया। अगर वो कैच लपक लेती आलिया रियाज तो स्मृति मानधना का विकेट भी उनके नाम के आगे दर्ज हो जाता और क्या शानदार मैच उनके लिए साबित हो सकता था। लेकिन निश्चित रूप से इस 23 वर्षीय खिलाड़ी ने अपनी गेंदबाजी से, अपनी ऑफ स्पिन गेंदबाजी से काफ़ी मुतासिर किया है। भारत के बैटर्स को रोकने में कहीं ना कहीं उन्होंने कामयाबी हासिल की और गेंदबाजी में एक और परिवर्तन यहां पर होता हुआ। कुल मिलाकर अब तक 4 गेंदबाज मोर्चे पर लगाए गए थे कप्तान फातिमा साना के द्वारा और अब 5वां गेंदबाज नाशरा संधू के रूप में यहां पर लाया जाता हुआ। गेंदबाजी के मोर्चे पर 46 दो विकेट के नुकसान पर 8.1 ओवर की समाप्ति के बाद हरमनप्रीत 9 के व्यक्तिगत स्कोर पर अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार हैं। रनों की औसत रफ्तार 5.63। अगली गेंद और इस बार फ्रंट फुट पे आकर इस गेंद को खूबसूरती के साथ खेल दिया। पॉइंट और कवर के बीच में से कोई मौका नहीं खिलाड़ी के पास। गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: हरमनप्रीत कौर का ये पहला चौका, ये पहला शानदार कवर ड्राइव जो उन्होंने खेला देखते ही बनता था। पॉइंट और कवर के बीच में से गैप हासिल करते हुए उन्होंने इस शॉट को खेला। 13 मीटर का फासला था बैकवर्ड पॉइंट और कवर के बीच जो खिलाड़ी हैं उनके बीच और उसका भरपूर फायदा उठाने में हरमनप्रीत कौर इस बार कामयाब रही थी। इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ करके 50 दो विकेट के नुकसान पर 8.2 ओवर की समाप्ति के बाद।
1: द फर्स्ट बाउंड्री फॉर इंडिया इन 14 डिलीवरीज।
0: जी हाँ, बिल्कुल काफ़ी देर हो गई थी दर्पण जबकि भारत को तलाश थी कुछ बड़े शॉट्स की और अंततः हरमनप्रीत, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि उनके पास खासा अनुभव है, उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है और उसका निर्वाह वो फिलहाल बखूबी करते हुए एज वेस्टर्न के मैदान पर नजर आ रही हैं। अगली गेंद हरमनप्रीत के लिए इस बार बैकफुट पर जाकर कट करने की कोशिश, लेकिन बैकफुट पॉइंट पर सीधा फील्डर के हाथों में गेंद पहुंची और रन बनाने का वहां पर कोई प्रश्न नहीं। स्कोर भारत का 50 दो विकेट के नुकसान पर। अभी भी 9 ओवर प्रगति पर। बाएं हाथ की ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज हैं नाशरा संधु और अंपायर और स्टंप के बीच में आकर ये गेंद उन्होंने की अराउंड द स्टंप्स और इस बार गेंद को खेल दिया था वहां पर स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन फील्डर एक बार फिर से वहां पर मौजूद, रन नहीं मिल पाएगा। स्कोर अभी भी 50 पर टिका हुआ। रनों की औसत रफ्तार 5.77 रन इस समय है। भारत ज़रूर यहां पर कोशिश करेगा कि रनों की रफ्तार हाल फिलहाल में बढ़ाए और दर्पण अब कहीं ना कहीं जो अगर आप आंकड़े देखें तो वो ये दर्शाते हैं कि पावर प्ले में और अंतिम जो डेथ ओवर्स होते हैं उससे भी ज़्यादा जो खेल पनपता है, जो रन बनते हैं वो मिडिल ओवर्स में बनते हैं। जो टीम मिडिल ओवर्स में अच्छी बल्लेबाजी कर ले या अच्छी गेंदबाजी कर ले वो कहीं ना कहीं विजेता साबित होती है। अगली गेंद और इस बार खेल को खूबसूरती के साथ खेल दिया हरमनप्रीत सिंह ने। मिड विकेट क्षेत्र में शानदार अंदाज में स्वीप करते हुए गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: गेंद की रफ्तार बहुत ज़्यादा नहीं थी, अपने आप को ठीक से पोजीशन किया था वहाँ पर और बेहतरीन अंदाज में इस गेंद को स्वीप शॉट खेलते हुए 4 रन बटोर लिए अपने और अपनी टीम के लिए। हालांकि गेंद काफ़ी देर तक हवा में थी लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित, कोई भी फील्डर वहाँ पर आसपास नहीं था। अगली गेंद देकर एक बार फिर से तैयार वहां पर नाशरा संधू, उनके ओवर की अंतिम गेंद। 2 चौके अब तक हरमनप्रीत लगा चुकी हैं। इस बार फ्लाइटेड गेंद बैकफुट पे जाकर कट करने का प्रयास, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर मौजूद है। 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को वहां पर फील्ड कर लिया जाएगा। ओवर की समाप्ति हुई इसी के साथ। 9 ओवर के बाद भारत 54 दो विकेट के नुकसान पर।
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
5: जानिए आभा के बारे में। आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल

0: रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं।
1: जर्नलिस्ट।
2: अभी आप सुन रहे थे आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 का एचबेंस्टन बर्मिंघम से क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप ट्यूनिंग है एफएम शिमला के साथ। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTS सेवा पर भी उपलब्ध हैं।
4: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
5: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
4: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
5: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
4: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
5: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
7: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प।
6: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
8: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं में हुआ बड़ा सुधार। प्रदेश के 11 जिलों में नवनिर्वाचित प्रधान व उप प्रधान कल लेंगे शपथ। कांगड़ा जिले में 18 जून को होगा समारोह। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य में अपराध की बढ़ती घटनाओं को बताया चिंताजनक। और आपदा प्रबंधन की तैयारियों का आकलन करने के लिए प्रदेश भर में कल होगा मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ नागरिक ही देश की सबसे बड़ी ताकत है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुँच रही है। उन्होंने कहा कि देश में एम्स की संख्या 1 से बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा ई संजीवनी, कोविन और यूविन जैसे प्लेटफॉर्म से लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल रही हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का 12 वर्ष का कार्यकाल देश के इतिहास में बेमिसाल और स्वर्णिम रहा है। मंडी में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस कार्यकाल में देश में लोक कल्याण के नए आयाम स्थापित किए गए हैं। दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क दोगुनी गति से बढ़ा है और वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों की शुरुआत हुई है। इसके अलावा उड़ान योजना के तहत छोटे शहरों में हवाई अड्डों का निर्माण कर आम नागरिक के सफर को सुगम बनाया गया है। कांगड़ा जिला को छोड़कर प्रदेश के 11 जिलों में नव निर्वाचित प्रधान व उप प्रधान को कल 15 जून को शपथ दिलाई जाएगी। संशोधित कार्य

0: कार्यक्रम के अनुसार कांगड़ा जिले में 18 जून को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रधानों व उपप्रधानों को शपथ दिलाएंगे। कल शपथ समारोह जिला स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया चंबा, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ऊना, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल सोलन और कृषि मंत्री चंद्र कुमार कुल्लू में पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इसी तरह उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सिरमौर, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी किन्नौर, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर शिमला, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह मंडी, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी बिलासपुर, जबकि आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा हमीरपुर में शपथ दिलाएंगे। जिला स्तर पर होने वाले शपथ समारोहों के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि युवाओं को खेलों से जोड़ना समय की आवश्यकता है। शिमला जिले में जुब्बल कोटखाई के मलोग में आज एक खेल प्रतियोगिता के अवसर पर उन्होंने कहा कि खेल युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखने का एक प्रभावी माध्यम है। क्षेत्र के विकास कार्यों की चर्चा करते हुए रोहित ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में करीब 176 सड़कें पास की गई हैं। उन्होंने कहा कि इलाके में हर क्षेत्र तक सड़क सुविधा पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। रोहित ठाकुर ने बताया कि टिक्कर तहसील में लोक निर्माण विभाग के तहत करीब 100 करोड़ रुपये के कार्य प्रगति पर हैं। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। एक बयान में उन्होंने कहा कि राजधानी शिमला में एक महिला की हत्या होना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं प्रदेश में पहले नहीं सुनी गई थी, लेकिन अब आए दिन हो रही हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और पुलिस मूक दर्शक बनकर देख रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस का काम कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना होता है, लेकिन प्रदेश पुलिस सरकार के निर्देशों पर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को परेशान करने, सत्ता समर्थित अराजक लोगों को सुरक्षा देने और भाजपा नेताओं के फोन की निगरानी करने जैसे कार्यों में व्यस्त है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार जिस तरीके से पुलिस को अपना टूल बनाकर विपक्ष को परेशान करने में जुटी है, उसके खतरनाक परिणाम सामने आएंगे। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के सभी जिलों में कल 15 जून को आपदा प्रबंधन को लेकर मेगा मॉकड्रिल का आयोजन किया जाएगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तकनीकी सहयोग से ये मॉकड्रिल करवाई जाएगी। इसके लिए भूकंप, भूस्खलन, बादल फटने से आने वाली बाढ़ और वनों की आग जैसी घटनाओं के परिदृश्य दिए गए हैं। पूर्वाभ्यास के दौरान इन्हीं परिदृश्यों के अनुसार राहत व बचाव कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। पूर्वाभ्यास में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान शामिल होंगे, जो आपदा तैयारी में मौजूद कमियों की पहचान करने और उनके समाधान के सुझाव देंगे। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का दूसरा चरण आज से रिकांगपियो में शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से आए 66 प्रतिभागियों का पारंपरिक खातक और किन्नर टोपी पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान ITBP के उप कमांडेंट वीरेंद्र सिंह और माई भारत हिमाचल प्रदेश के राज्य निदेशक ध्रुव डोगरा ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना, सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ करना, स्थानीय परंपराओं को समझना और विकसित व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के संकल्प को साकार करना है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के हिमाचल प्रवास ने पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा व आत्मविश्वास का संचार किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रवास ने न केवल संगठन को मजबूती दी, बल्कि कांग्रेस की विफलताओं को भी जनता के समक्ष उजागर किया है। किन्नौर जिले के प्रसिद्ध किन्नर कैलाश यात्रा इस वर्ष 1 जुलाई से 30 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। समुद्र तल से करीब 19,850 फीट की ऊंचाई पर स्थित किन्नर कैलाश शिवलिंग प्रमुख धार्मिक व साहसिक तीर्थ स्थलों में से एक है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
1: यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन अधिकतम 375 यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यात्रा से जुड़े विभिन्न विभागों, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय संगठनों के साथ विस्तृत चर्चा की गई है।

0: प्रशासनीय यात्रा मार्ग पर स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। किन्नर कैलाश यात्रा भगवान शिव के प्रति आस्था का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें देश विदेश से हजारों श्रद्धालु कठिन पर्वतीय मार्ग पार कर पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने के लिए यहां पहुंचते हैं। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
1: लाहौल स्पीति के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शांशा के एक छात्र व प्रतिभाशाली खिलाड़ी ऋषिक रायांग का चयन प्रदेश की 18 वर्ष से कम आयु वर्ग की एथलेटिक्स टीम में हुआ है। उन्होंने बिलासपुर के लुहणू मैदान में हुए राज्य स्तरीय ट्रायल में जेवेलियन थ्रो प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
2: सितंबर माह में देहरादून में होने वाली नॉर्थ जोन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले भी वे अंडर 17 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की ओर से खेल चुके हैं। ऋषिक की इस उपलब्धि पर उनके अभिभावकों, प्रशिक्षकों और क्षेत्रवासियों ने खुशी जताते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी है। उनकी सफलता को लाहौल स्पीति के युवाओं के लिए प्रेरणादायक माना जा रहा है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी ने कहा है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सोलन जिले के अर्की में विशाल दंगल कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को सम्मान व प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने पुरस्कार राशि में ऐतिहासिक वृद्धि की है। अवस्थी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने और उनके शारीरिक विकास में खेल गतिविधियाँ अहम भूमिका निभा रही हैं। ऊना जिले में पिछले 3 वर्षों में 9,393 किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं। उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जिले में किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर प्रोत्साहित करने की दिशा में तत्परता से प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्पादों की सरकारी खरीद सुनिश्चित करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य में निरंतर वृद्धि की नीति ने जिले में सकारात्मक बदलाव की नींव रखी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं में हुआ बड़ा सुधार। प्रदेश के 11 जिलों में नवनिर्वाचित प्रधान व उपप्रधान कल लेंगे शपथ। कांगड़ा जिले में 18 जून को होगा समारोह। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य में अपराध की बढ़ती घटनाओं को बताया चिंताजनक। और आपदा प्रबंधन की तैयारियों का आकलन करने के लिए प्रदेश भर में कल होगा मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। देशगान सुनिए।

0: समूह स्वरों में देश गान अभी आपने सुना। ये आकाशवाणी शिमला है। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
2: हर खुशी अब लगे
1: मस्त, चुनो मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए FM।

फ्रीक्वेंसी 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन हैं एफएम शिमला के साथ। एफएम शिमला पर आप सभी लिसनर्स के लिए आपकी अपनी रेडियो दोस्त एंड होस्ट दीपा भिक्टा लेकर हाजिर है भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। खोई हुई यादों का एक कारवां लेकर आए हैं, आज फिर हम वो सुरीला समा लेकर आए हैं। भूल ना जाना इन पुरानी धुनों को, हम आज वही पुराने नगमे और मीठे गीत लेकर आए हैं। तो करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत कटी पतंग फिल्म के गीत के साथ, जिसे गाया है किशोर कुमार ने।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम का अगला नगमा मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में सच्चा झूठा फिल्म से।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
1: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गाँव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
1: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
0: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
1: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
0: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
1: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
1: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: इस समय आप सभी लुत्फ उठा रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का 103.7 मेगाहर्ट्ज पर।

0: अनामिका फिल्म के इसी गीत के साथ भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ट्यूनिंग हैं एफएम शिमला के साथ।
1: नमस्कार, मैं दीपशिखा शर्मा, जनगणना कार्य निदेशक हिमाचल प्रदेश, आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जनगणना का

0: प्रथम चरण है यानी मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर हिमाचल में कंडक्ट किया जाएगा। और इस बार हमारा स्वगणना का प्रावधान की ऑप्शन दी गई है या विकल्प रखा गया है, आप जरूर स्वगणना पोर्टल sc.census.gov.in पर जाकर अपनी डिटेल भरें। बाद में हमारे प्रगणक आपके पास आकर उसको वेरीफाई करेंगे और फाइनली पोर्टल पर सबमिट करेंगे। मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूँ कि जो हमारा जनगणना का डाटा होता है, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, घरों की स्थिति के बारे में या फिर हमारी शिक्षा, साक्षरता और इस तरह की जो हमारी मूलभूत जानकारियां होती हैं, वह हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं उनसे हमारी नीति निर्माण और रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए आप सब अपनी जानकारी खुलकर प्रदान करें। आपके जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं यानी गणनाकार हैं, वो आप ही के आसपास के कोई भी सरकारी कर्मचारी होंगे। जब वो आपके घर आए तो आप उनका स्वागत करें और उनको जानकारी दें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, आप उनका आई कार्ड देख सकते हैं जिसपे की एक QR कोड है, उसे स्कैन करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। और आपसे किसी भी तरह का कोई भी OTP या दस्तावेज कभी भी नहीं मांगा जाएगा। आपको सिर्फ अपने 33 प्रश्नों की जानकारी जनगणना के प्रथम चरण के लिए देनी है। धन्यवाद।
1: फ्रीक्वेंसी 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन हैं FM शिमला के साथ। FM शिमला पर लीजिए, एंजॉय कीजिए फिल्म संगीत।

0: Watch for free.
1: इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं फिल्म संगीत 103.7 मेगाहर्ट्ज पर।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ।

0: राब्ता मूवी के इसी सॉन्ग के साथ फिल्म संगीत में आज के लिए इतना ही। फ्रीक्वेंसी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ट्यून इन हैं एफएम शिमला के साथ। 8:45 होने ही वाले हैं। अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र समाचार संध्या और न्यूज एट 9 के लिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों

0: के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहलें शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
0: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी

0: प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
1: The world seeks trusted and reliable partners.
2: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
1: And a scale that few can match.
0: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
3: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं और इसके चलते जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूंगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सहायता स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में

0: भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
1: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
0: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
2: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
3: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
0: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे, इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
5: गुड इवनिंग। दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron hold delegation-level talks at historic Villa.

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ट्यून इन हैं एफएम शिमला के साथ। रात्रि के 9:15 हुए हैं एफएम शिमला पर। अब आप सुनेंगे एक फिल्म से कार्यक्रम। आज की फिल्म है दिल से। तो करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

फ्रीक्वेंसी 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन हैं एफएम शिमला के साथ और एंजॉय कर रहे हैं एक फिल्म से कार्यक्रम। आज की फिल्म है दिल से। जी हाँ लिसनर्स, ये फिल्म 1998 में रिलीज हुई एक बेहतरीन रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसका निर्देशन मणि रत्नम ने किया था। ये फिल्म अपनी अनोखी कहानी और सदाबहार संगीत के लिए जानी जाती है। फिल्म में शाहरुख खान, मनीषा कोइराला और प्रीति जिंटा मुख्य भूमिकाओं में हैं। आपको बता दें, इस फिल्म से प्रीति जिंटा ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। फिल्म के गाने छैया छैया और दिल से रे आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं।

फ्रीक्वेंसी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ट्यून इन हैं एफएम शिमला के साथ। रात्रि के 9:30 हुए हैं एफएम शिमला पर। अब आप इंजॉय करेंगे ईमेल बेस्ड प्रोग्राम दिल की आवाज भी सुन। जी हाँ लिसनर्स, प्रोग्राम में अगर आप भी सुनना चाहते हैं अपनी चॉइस के सॉन्ग्स तो आप भी हमें सेंड कर सकते हैं ईमेल्स और एंजॉय कर सकते हैं अपने पसंदीदा गीत सिर्फ और सिर्फ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारा ईमेल आईडी है airfmshimlamusicmail@gmail.com। आज का प्रोग्राम आप एंजॉय करेंगे अपनी रेडियो हम सफर दीपा भिक्टा के साथ। सो डियर लिसनर्स, जब तक आपके ईमेल्स हम तक पहुंचते हैं तब तक आप सभी एंजॉय कीजिए अंदाज फिल्म का ये रोमांटिक सॉन्ग और यूं ही ट्यून इन रहिए हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
1: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुँचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।

ईमेल बेस्ड प्रोग्राम दिल की आवाज़ भी सुन आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ लिसनर्स, आपके ईमेल्स हम तक पहुंचने शुरू हो गए हैं। जो सबसे पहला ईमेल हमें मिला है वो हमें भेजा है सहेली रेडियो श्रोता संघ बापू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद खंडवा मध्य प्रदेश से शालिया डावर, हलीमा डावर, जिकरा डावर, आयशा खत्री और घूंघट रेडियो श्रोता

का संघ जिलाधार धर्मपुरी से मूसा खत्री, ईशा खत्री और जाकिर खत्री ने सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप ने कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज का हमें ईमेल मिला है और ये सुनना चाह रहे हैं कच्चे धागे फिल्म का कोई सा भी गीत। ज़िला सिरसा से राधे श्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा का हमें ईमेल मिला है। गोल्डेज रेडियो श्रोता संघ से संगराज पैलेस उत्तर प्रदेश से हमें ईमेल भेज रहे हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा और कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकत पूरा मऊ से मुन्ना भाई, पिंकी, अयान, कृष्णा और पीहू। सदर बाजार कुरवाली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, वनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा का हमें ईमेल मिला है। जलादाबाद वेस्ट से सुरेश, पूनम, विशाल, दिशानी और नमित अहूजा हमें ईमेल कर रहे हैं। महाराष्ट्र से विजय चौहान और तेजस्वी चौहान, इनके साथ ही बेबी शौर्या और श्रेयस, अंकिता और अनिकेत चौहान भी है। मेरठ से अनिल जैन और जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और जिव्यम जैन हमें ईमेल कर रहे हैं। तो लीजिए आप सभी लिसनर्स के लिए हम प्ले कर रहे हैं कच्चे धागे फिल्म का ये सॉन्ग। एंजॉय कीजिए और यूं ही बने रहिए हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ईमेल बेस्ड प्रोग्राम दिल की आवाज़ भी सुन आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रोग्राम में अब हम जो ईमेल शामिल करने जा रहे हैं वो हमें भेजा है कुलभूषण कॉटेज सुनाम पंजाब से, विरोचन पुरी, भारती पुरी, डॉक्टर के आर पुरी, शोभा पुरी, सरोज बाला, डॉक्टर सौरभ ज्योति, इताश, पर्णिका, रिद्धि पुरी और विहान पुरी ने, और ये सुनना चाह रहे हैं दिल लगी फिल्म का कोई सा भी गीत। इसी फिल्म का गीत सुनने के लिए हमें एक और फरमाइश लिखकर भेजी है बगावत उत्तर प्रदेश से, भेजने वाले हैं संजय डिंगिया, अमन डिंगिया, अपा डिंगिया। छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश वर्मा का हमें ईमेल मिला है। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर, नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन, प्रजापति, किरण ठाकुर और जग्गी का हमें ईमेल मिला है। एमपी से हसीना बी मंसूरी, आमिना बी मंसूरी, मोहम्मद रफ़ी और हुसना कमला का हमें ईमेल मिला है। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना का हमें ईमेल मिला है। मुरादाबाद से हमें ईमेल कर रहे हैं। राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षिता, खुशी गोस्वामी हमें ईमेल कर रहे हैं। तो आप सभी लिसनर्स के लिए हम प्ले कर रहे हैं दिल लगी फिल्म का ये सॉन्ग। एंजॉय कीजिए और यूं ही बने रहिए हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

सिर्फ तुम फिल्म का सॉन्ग सुनने के लिए हमें ईमेल सेंड किया है आदर्श नगर मलाउट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, नवीन शर्मा, सौरभ शर्मा और मैंडी शर्मा ने, पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, बीटिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा छत्तीसगढ़ से, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखे लाल वर्मा का हमें ईमेल मिला है, राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश कमलेश, गन्नूलाल रजक और मुरली क्षत्रिय, गांव वैटागर नमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसविंदर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर का हमें ईमेल मिला है। तो लीजिए आप सभी एंजॉय कीजिए सिर्फ तुम मूवी का ये सॉन्ग और यूं ही बने रहिए हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

सिर्फ तुम मूवी के इसी सॉन्ग के साथ ईमेल बेस्ड प्रोग्राम दिल की आवाज़ भी सुन में आज के लिए इतना ही। फ्रीक्वेंसी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ट्यून इन हैं एफएम शिमला के साथ। रात्रि के 10 बजे हैं, एफएम शिमला पर अब आप सुनेंगे गज़लें।

0: यदि आप अपनी लेटेस्ट ज्वेलरी या कपड़ों के डिजाइन या कपड़ों के व्यवसाय को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी से सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कर लाभ उठा सकते हैं।
1: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी, यह है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।

इस समय आप सभी लुत्फ उठा रहे हैं गजलों का 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम की अगली गजल मुन्नी बेगम की आवाज में।

फ्रीक्वेंसी 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन है एफएम शिमला के साथ। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में चाइम हुआ है रात्रि के 10:30 और एफएम शिमला पर अब आप सुनेंगे सदाबहार नगमे।

0: अगर आप उस जन जन तक पहुंचना चाहते हैं और अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी पर सस्ते दामों पर अपना विज्ञापन प्रसारित करवाएं।
1: आपका थोड़ा सा प्रयास आपके सपनों को पूरा कर सकता है।
0: आकाशवाणी के माध्यम से आप न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।

अभी आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाज़ में द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का गीत। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत जानी दुश्मन फिल्म से।

0: मॉर्निंग गेस्ट मूवी के इसी सॉन्ग के साथ सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। वन जीरो 3.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन हैं एफएम शिमला के साथ। रात्रि के 11 बजने को है, अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र हिंदी और अंग्रेजी समाचार के लिए। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन तक के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस

0: को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ऑपरेशन ओशन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए थे। बीते दिनों इसराइल ने बेरूत के इलाकों पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर हमले किए। बर्मिंगम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi concluded his visit to Nice, France today after holding extensive discussions with French President Emmanuel Macron and participating in a series of engagements aimed at deepening the India-France Special Global Strategic Partnership. More from our correspondent.
3: The visit witnessed several important outcomes across technology, innovation and economic cooperation. The most significant was the adoption of the India-France Innovation Roadmap 2030, providing a framework for collaboration in artificial intelligence, startups, research, skilling and innovation ecosystems. Prime Minister Modi and President Macron also jointly inaugurated Bharat Innovate, bringing together more than 120 Indian startups, leading academic institutions, investors and technology leaders. The two countries announced the creation of a joint India-France AI Working Group on AI Governance, launched an economic security dialogue focusing on critical technologies and resilient supply chains, and agreed to establish a high-level annual mechanism to pursue the goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. Another key outcome was the establishment of a National Center of Excellence for Skilling in Aeronautics and Allied Sectors at NSPI Kanpur, aimed at strengthening workforce readiness in aviation and aerospace. Beyond innovation and technology, the leaders reviewed cooperation in defense, space, civil nuclear energy, connectivity and global affairs, reaffirming their shared commitment to a future-oriented partnership. The visit underscored the growing strategic convergence between India and France and their common vision for innovation-led growth and global stability. Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
2: The Ministry of External Affairs conducted a special briefing in Nice on the outcomes of Prime Minister Modi's visit to Nice and his discussions with French President Emmanuel Macron.